सुप्रभात, आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 27, तदनुसार 18 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:49 होने ही वाले हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी ये प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: ओ 10 वर्षीय बालक, एकटा पुस्तक, संभवतः डैनियल डिफोक लिखल रॉबिन्सन क्रूसो वा एसपक फेबल आनक हेतु घर सँ 20 किलोमीटर दूर अपन परिचितक ओतय जा रहल छल। पुस्तक किनक लेल ओकरा पास धन नहि छलैक, तैं ओ माँगि चाँगि कऽ पुस्तक पढ़ै छल। विद्यालय जेबाक तऽ ओकरा सेहन्ते लागल रहलै, कारण ओकरा पिताक पास धन नहि रहैक। ओ सर्वथा साधनहीन छल आ परिवार बेस नमहर छलैक, जकर पालनक गुरुतर भार पिता पर छलैक। भरि दिन ओ अल्पवयस्क बालक पिताक संग शारीरिक श्रम करै छल, कखनो नदीमे लकड़ी घिचबामे, कखनो तमाकुलक खेतक पटौनी करबामे, तऽ कखनो बरदक हेजके हाँकबामे। साँझमे पलखित भेटै तऽ कोनो ने कोनो पुस्तक लऽ कऽ अध्ययन करै। ओतहु प्रकाशक कोनो व्यवस्था नहि, धधकैत आगिक प्रकाशे ओकरा लेल दीप छलैक। देवाल पर कोयलासँ लिख लिख ओ गणित सीखल करै, व्याकरणक ज्ञान सेहो ओ तहिना प्राप्त कयलक। 9 वर्षक अवस्थामे ओकरा माताक देहांत भऽ गेल रहैक। माताक स्नेहसँ वंचित, कठोर श्रममे रत ओ परिवार पालनक भार वहन करैत स्वाध्याय द्वारा आत्मोन्नतिमे लागल रहै छल। स्वाध्याय आ कठोर परिश्रम अपन चमत्कार देखौलक आ 27 वर्षक अवस्थामे ओ कानूनक परीक्षा पास कयलक। ओकालति आरम्भ कयलक, किछुए वर्षमे अपन न्यायपरायणता आ विद्वत्ताक बदौलत सम्पूर्ण अमेरिकामे विख्यात भऽ गेल। ततबे नहि, ओजस्वी वक्ताक रूपमे तो विख्यात छले, व्यक्तिगत स्वतंत्रताक सेहो ओ समर्थक छल आ दास प्रथाक प्रबल विरोधी सेहो। अमेरिकामे मानवाधिकारक ओ अपना समयक सबसँ प्रबल समर्थक छल। एहि गुण सभक बल पर ओ संयुक्त राज्य अमेरिकाक सर्वोच्च पद पर पहुँचबामे समर्थ भेल। हाँ, ओ व्यक्ति छल अब्राहम लिंकन। निर्धन कृषकक पुत्र, जकरा ने कोनो औपचारिक शिक्षा भेटलैक, न पारिवारिक स्नेह आ न भविष्यक लेल मार्गदर्शन, ओ उच्चताक शिखर पर पहुँचबामे समर्थ भेल मात्र अपन ऊहि, अध्यवसाय आ परिश्रमक बल पर। अब्राहम लिंकन सिद्ध कऽ देलनि जे जँ इच्छा शक्ति प्रबल हो, संकल्प दृढ़ हो आ अनवरत रूपे परिश्रम कयल जाय, तऽ साधनक सर्वथा अभाव रहितहुँ व्यक्ति लक्ष्य सिद्धि में समर्थ भऽ सकै छै। जीवन में सफल हेबाक लेल साधन संपन्नताक नहि, कर्मठताक प्रयोजन होइ छै। वस्तुतः मनस्वीक लेल इच्छा शक्तिये साधन बनि जाइ छै, जे ओकरा साध्य दिस अग्रसर करबै छै आ सिद्ध प्रदान करबै छै।
0: श्रोता सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय सुबह के 5:55 होने वाले हैं। अब समय हो चला है किसान भाइयों के लिए कुछ जरूरी बातों का।

0: जी हाँ, लीजिए सुनिए कृषि चर्चा।
1: नमस्कार, आजुक कृषि चर्चाक संग हम छी देवनारायण यादव। किसान श्रोता लोकनि, आजुक कृषि चर्चा में चर्च करब तिल की उन्नत खेती पर। किसान श्रोता लोकनि, तिल एकटा नकदी फसिल अछि। एकर मांग सदखन हाट बाजार में ता होते रहत अछि, संग संग शुभ सन काज में, चाहे ओ शादी विवाह हुए बा मुंडन, जनौ पावन त्यौहार सन एकर मांग होत रहत अछि। ओतबे नहि, तिल के तेलक मूल्य सेहो उचगरे रहत अछि। जँ एते तरहक लाभ हमरा लोकन के तिल सँ भेट रहल अछि, ता किएक नहि एकर खेती बेसी सँ बेसी कऽ हाट बाजार के मांग आपूर्ति के संतुलन करी। तऽ आउ, तिल के खेती करबा सँ पहिने एकर उन्नत प्रभेद के चुनाव करी। किसान श्रोता लोकन, तिलक उन्नत प्रभेद के जो गप करी तऽ एकर उन्नत प्रभेद अछि कृष्णा काला, काके सफेद, कालका, प्रगति, जकरा MT75 सेहो कहल जात अछि। किसान श्रोता लोकन, कृष्णा काला तिल के जो गप करी तऽ एकर औसतन उपज क्षमता 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर अछि। फसिल तैयार हेबाक अवधि 85 से 90 दिन में बुझू जे तैयार भऽ जायत अछि। तेलक मात्रा के जँ गप करी तऽ 40% खेती करबाक जे क्षेत्र अछि ओ अछि उत्तरी और दक्षिणी बिहार। खरीफ आ गर्मा दुनू टा मौसम में कयल जा सकत अछि। ओनाही जँ काके सफेद प्रभेद के गप करी तऽ उपज क्षमता 5.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, फसिल तैयार हेबाक अवधि 105 से 110 दिन। तेलक मात्रा 50%, खेती दक्षिण बिहार में कर कयल जा सकत अछि। आब गप करी कालका प्रभेद के। कालका प्रभेदक उपज क्षमता 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, फसिल तैयार हेबाक अवधि 90 दिन, तेलक मात्रा 48%। ओनाही प्रगति MT75 सफेद तिल के गप करी ता ई एकटा नवका प्रभेद अछि। एकर उपज क्षमता 7.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, फसिल तैयार हेबाक अवधि 80 से 85 दिन, तेलक मात्रा 50%। एकरा संपूर्ण बिहार में कयल जा सकत अछि। किसान श्रोता लोकन, तिलक बाग विधि के सेहो हमरा लोकन के ध्यान रखबाक चाही। ओहि लेल बिया दर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, खरीफ लेल काला तिल मध्य जून सँ मध्य जुलाई धरि, सफेद तिल मध्य जून सँ जून के अंत धरि। गर्मा तिल के जँ गप करी ता 25 फरवरी सँ 10 मार्च धरि एकर खेती कयल जा सकत अछि। किसान श्रोता लोकनि, हमरा लोकन के बीजोपचार लेल सेहो ध्यान रखबाक चाही। ओहि लेल 2 ग्राम थीरम सँ प्रति किलोग्राम बिया के उपचारित करबाक चाही। बाग काल दूरी 30 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर सँ 15 सेंटीमीटर रखबाक चाही। खाद उर्वरक में सेहो हमरा लोकन के ध्यान रखी। ओहि लेल कम्पोस्ट 60 क्विंटल बाग सँ 20 से 30 दिन पहिने खेत में दऽ देबाक चाही। एकर उपरांत 40 किलोग्राम नेत्रजन, 20 किलोग्राम स्फूर आ 20 किलोग्राम पोटास के संपूर्ण मात्रा आ नेत्रजनक आधा मात्रा के अंतिम जोताई काल में खेत में मिला देबाक चाही। नेत्रजनक शेष आधा मात्रा के बाग के 30 दिन बाद कतार से कतार के बीच उपरिवेशन करबाक चाही। किसान श्रोता लोकन, एकरे संग कृषि चर्चा संपन्न भेल। आप देवनानी यादव के आज्ञा देल जाओ। नमस्कार।
0: किसान श्रोता सुन रहे थे कृषि चर्चा। आज विषय था तिल की उन्नत खेती। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे देव नारायण यादव। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। सुबह के 6 होने ही वाले हैं। अब

पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिसे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
1: स्वास्थ्य चर्चा के इस अंक में हम हाजिर हैं डॉक्टर रमन कुमार वर्मा जी के साथ, जो प्रख्यात नेत्र रोग चिकित्सक हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो उसका उपचार वो कैसे करे। डॉक्टर साहब,
2: देखा जाए मोतियाबिंद का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दवा से संभव नहीं हो पाया है, हालांकि दावे किए जाते हैं लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। मोतियाबिंद जब मरीज को होने लगे या हो गया है और मरीज को अपना काम करने में कठिनाई हो और चश्मे से आँखों की रोशनी दृष्टि उतनी न बढ़े जिससे कि वो देख पाए, तो उसे नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए और ऐसी स्थिति में ऑपरेशन ही उपचार रह जाता है, चाहे मोतियाबिंद कच्चा हो या पका हो। ये पुराना कंसेप्ट है कि जब मोतियाबिंद पूरी तरह पक जाए तभी उसका ऑपरेशन कराना चाहिए।
1: यानी कि चश्मा आपके काम लायक नहीं रह गया, कितना भी पावर बढ़ा लो आपकी दृष्टि अगर नहीं आ रही है, आप चीजों को सही ढंग से नहीं देख रहे हो, तो आप तय मानो कि आपका ऑपरेशन कराना ही एकमात्र विकल्प आपके पास बचता है मोतियाबिंद का।
2: जी हाँ, पकने तक इंतजार नहीं करना चाहिए और अब तो यह ऑपरेशन बहुत ही सुरक्षित हो गया है।
1: क्या इसमें मौसम का भी कुछ असर होता है? कुछ लोग कहते हैं जाड़े में ऑपरेशन कराना चाहिए या गर्मी में नहीं कराना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
2: नहीं, वैसी बात नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन 12 महीने हो सकता है, लेकिन हाँ, चूंकि मरीजों को हिदायत दी जाती है, सभी मरीजों को, मोतियाबिंद के मरीजों को, कि ऑपरेशन के बाद 10-15 दिन सर से न नहाएं। इसलिए कुछ मरीज कठिनाई अनुभव करते हैं और उनकी मंशा होती है कि जाड़े में ही ऑपरेशन कराएं, लेकिन ये कोई मोतियाबिंद के ऑपरेशन को टालने का कारण नहीं है कि सिर्फ जाड़े में ही इसका ऑपरेशन कराया जा सके।
1: आजकल लेंस वगैरह प्रत्यारोपित किया जाता है, उससे क्या आंखों को नई दृष्टि मिल जाती है?
2: हाँ बिल्कुल, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है विगत 2-3 दशकों से, और अब लेंस प्रत्यारोपण के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन होता है और इसके साथ ही एक नए विजुअल वर्ल्ड की शुरुआत हो जाती है मरीज के लिए। पहले जो ऑपरेशन होता था उसमें मरीज को मोटा चश्मा लगाना पड़ता था, बाएं दाएं देखने के लिए उसे सर घुमाना पड़ता था, हर चीज़ें बड़ी नज़र आती थी, लेकिन अब जो ऑपरेशन हो रहा है लेंस प्रत्यारोपण के साथ उसमें ऐसी बात नहीं रह गई है। लेंस प्रत्यारोपण में हमारे देश में, हमारे राज्य में लगभग सभी जिला और अनुमंडल स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा यह ऑपरेशन बहुत ही कुशलता से और सफलता के साथ हो रहा है, और उसमें भी एक नई पद्धति आ गई है जिसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो है फेको इमल्सिफिकेशन पद्धति। ये नवीनतम पद्धति है लेंस प्रत्यारोपण का।
1: इसमें क्या होता है?
2: इसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन में चीरा जो लगाते हैं इंसिजन, वो बहुत छोटा लगाने की जरूरत होती है, 2 या 3 मिलीमीटर, और ऑपरेशन के बाद टांके की जरूरत नहीं पड़ती। एक बहुत ही पतला 1 मिलीमीटर का टिटेनियम नीडल होता है जिसमें प्रति सेकंड 40,000 कंपन पैदा होते हैं, इसके द्वारा ही यह ऑपरेशन संपन्न किया जाता है। अंदर से कॉर्टिकल मैटर न्यूक्लियस निकाल देने के बाद फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं, मरीज को 2 घंटे के बाद घर भेज दिया जाता है, मरीज को कोई कठिनाई नहीं होती है, इसमें समय भी पहले के मुकाबले कम लगता है और रोगी का पहला रिहैबिलिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है।
1: और कुछ क्या ऑपरेशन के पहले या बाद में कोई सावधानी बरतनी पड़ती है क्या?
2: जी हाँ, ऑपरेशन के बाद हम लोग आमतौर पे रोगियों को हिदायत देते हैं कि उन्हें काला चश्मा पहनना है और जो दवाई विशेषज्ञ उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें आँख में अवश्य डालना चाहिए, आँखों को कभी नहीं मलना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए कि आँखों में चोट न लगे। ऑपरेशन किए गए आँख की तरफ करवट लेकर 2 या 3 सप्ताह तक सोने से हम लोग मना करते हैं और भारी वजन उठाने से भी हम लोग मरीज को रोकते हैं।
1: तो अभी आपने डॉक्टर आर के वर्मा से सुना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर आप कराते हैं तो क्या क्या सावधानी रखें, और इस ऑपरेशन की जो नवीनतम तकनीक है वो भी हमारे पास अब उपलब्ध है। सबसे अच्छी बात यह है कि अनुमंडल स्तर तक इसके विशेषज्ञ जो कृत्रिम लेंस है उसका प्रत्यारोपण करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोता सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, आज विषय था मोतियाबिंद।

बचाव और निदान। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रमन कुमार वर्मा। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हुए हैं। समय हो चला है भक्ति संगीत के हमारे इस कार्यक्रम वंदना का। आइए इस कार्यक्रम का आरंभ समूह स्वर में गाए इस देश वंदना से।

समूह स्वर में आप सुन रहे थे ये देश वंदना। भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना। कहते हैं जिस तरह सुबह सूर्य के प्रकाश के निकलते ही अंधकार स्वतः दूर भाग जाता है, वैसे ही हमारे मन में विकार रूपी अंधकार प्रभु नाम के प्रकाश से प्रकाशित होते ही स्वतः दूर हो जाते हैं। भगवान का नाम उस सूर्य की प्रकाश की तरह होता है जिसके जपने मात्र से ही विकार रूपी ये अंधकार

से दूर हो जाते हैं। आइए ना भगवान के इन प्यारे नामों का गुणगान करें। ये नाम हमारे कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है।

कहते हैं इस अस्थाई दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है, मगर सब कुछ अस्थाई करने के लिए हम दिन रात भागते रहते हैं। माया रूपे संसार में माया को ही हम अपना सब कुछ समझ लेते हैं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि ये रूप, यौवन, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा सब आनी जानी है, कुछ भी अस्थाई नहीं। एक भगवान का नाम ही वो सहारा है जो हमें भव सागर से पार उतारता है। सच में राम कृष्ण ये केवल नाम नहीं, वो औषधि है जो हमारे मन के विकारों को दूर करती है, हमारे मन को निर्मल बनाती है। भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

कहते हैं जिनके नाम लेने से ही हमारे रोग शोक और कष्टों का नाश हो जाए, वे कोई और नहीं, राम भक्त माँ अंजनी के लाल वीर हनुमान ही तो है। अष्ट चिरंजीवियों में सबसे प्रमुख वीर हनुमान भक्तों के कल्याण के लिए सदा उपलब्ध रहते हैं। धर्म की ध्वजा को हाथ में संभाले, भक्तों की रक्षा के लिए ये तत्पर रहते हैं। आइए ना ऐसे दयालु कृपालु वीर हनुमान की हम सब मिलकर आराधना करें।

0: जानकीनाथ सहाय। श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ दिन की शुरुआत। भक्ति संगीत का हमारे ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे, वंदना। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR हमारे इस ऐप पर। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन एक साथ, सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान,
1: एपिसोड 32, 3-2।

शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमाचल कन्या उमा की हजारों वर्ष की तपस्या पूरी हुई। उधर जब से सती ने शरीर त्याग किया था, तब से ही शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पृथ्वी पर विचरण करते हुए कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुणों का वर्णन करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब स्वयं भगवान राम ने उन्हें पार्वती के जन्म की कथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे जाकर शैल कुमारी से विवाह करें। माता पिता गुरु और स्वामी की बात बिना विचारे ही शुभ समझकर माननी चाहिए, ऐसा मानकर शिव जी ने भगवान राम की आज्ञा मान ली और सप्तर्षियों को उमा के निर्णय की परीक्षा लेने हेतु भेजा। ऋषिगण ने कई प्रकार से नारद जी की दूसरों का घर उजाड़ने वाली आदत का वर्णन करके उमा को शिवजी से विमुख करने की चेष्टा की, किंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थीं।

सोच नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन

अभी आप सुन रहे थे सिप्रा बोस और राम कृष्ण चंदेश्वरी के स्वर में रामचरित मानस गान, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम।

सूचना शिक्षा और मनोरंजन एक साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा। श्रोताओं जानकारी प्राप्त कीजिए आज हमारे इस केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। आज की हमारी सभा में अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। सुबह 10:00 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा और सुबह 10:30 पर आज आप सुनेंगे भक्ति संगीत। नारी संसार महिलाओं के लिए हमारा ये कार्यक्रम होगा अपने निर्धारित समय दोपहर 12:30 से। दोपहर 1:10 ये समय होगा देशभक्ति गीतों का। अपनी पसंद के चिट्ठियों पर आधारित पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आज आप सुनेंगे दोपहर 1:15 पर। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं अपनी पसंद के फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम आपकी पसंद में तो इसके लिए लिख भेजिए हमें अपनी पसंद के फिल्म का नाम, गीत के बोल, गायक कलाकार का नाम और भेज दीजिए हमें हमारे इस पते पर कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। पिन कोड नंबर है 8460004।

अपराह्न 3 बजे आज आप सुनेंगे प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ मराठी लोकगीत। आज की हमारी सांतकालीन सभा में शाम 5 बजे युवा श्रोताओं के लिए हमारा कार्यक्रम होगा तरुण कुसुम। महाकवि की रचनाएं विद्यापति केत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा खेती गृहस्थी अपने निर्धारित समय शाम 7 बजे से। और शाम 6:30 पर ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम होगा गांव घर। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे झरोखा। आज रात 8:15 पर श्रोता सुनेंगे विज्ञान कार्यक्रम। रात 9:23 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र भारती, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। और श्रोताओं आज है शनिवार, आज रात 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। समय याद रखें रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में।

0: इस समय सुबह के 6:55 होने ही वाले हैं। अब संस्कृत
1: में समाचार प्रसारित होंगे, उसके बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः सायंकाले पंजाबस्य जालंधर नगरात् आभासीय माध्यमेन देशस्य 20 राज्येषु पुनर्विकसितानां 75 रेलस्थानकानां उद्घाटनम् अकरोत्। एतेषां स्थानकानां अमृत भारत स्थानक

0: योजनायाः अन्तर्गतम् आधुनिकीकरणं जातम्। एषा योजना विश्वस्य बृहत्तमासु स्थानक पुनर्विकास योजनासु अन्यतमा अस्ति। प्रायः 70.5 लाख कोटि रूप्यकाणां व्ययेन विकसितानि एतानि स्थानकानि यात्रिसौविध्यैः समलंकृतानि सन्ति। पुनर्विकसितेषु स्थानकेषु पंजाबस्य जालंधर कैंट, SAS नगरम, श्री मुक्तसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब इत्येतेषां स्थानकानां समावेशः अस्ति। तद् अतिरिक्तं गुजरात, ओडिशा, दक्षिण रेल क्षेत्राणां अनेकानि स्थानकानि अपि अत्र सम्मिलितानि सन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री करटोली अम्बाला रेलसेवां, अमृतसर वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस चेत्येताभ्यां हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। ह्यः जालंधरे प्रधानमंत्रिणा लोकार्पितानि राष्ट्राय समर्पितानि च एतानि पुनर्विकसितानि स्थानकानि एते द्वे रेलसेवे च रेलमार्गावसंरचना परियोजनानां भागाः सन्ति। एतासां परियोजनानां व्ययः 70.4 लाख कोटि रूप्यकाधिकः अस्ति। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमंत्री अवदत् यत् 75 पुनर्विकसित रेलस्थानकानां उद्घाटनं भारतीय रेल विभागस्य विगतेषु कतिपय वर्षेषु अभवत्, तीव्र परिवर्तनस्य द्योतकं च अस्ति।
1: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: पूर्वान्ने एव प्रधानमंत्री हरियाणा राज्यस्य जिंद रेल स्थानकात् भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन इत्यनेन चालित रेलयानाय अपि हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतत् रेलयानं जिंद सोनीपत रेलस्थानकयोः मध्ये संचरिष्यति, अथ 91 किलोमीटर मिता दूरता प्रायः द्विहोरायां पूर्णं करिष्यति। वाणिज्य उद्योगमंत्री पीयूष गोयलः ह्यः एस्टोनिया देशस्य राजधान्यां ताल्लिन नगरे तत्रत्य विदेशमंत्रिणा मार्गुत साह्यकना इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्याम नेतृभ्याम भारत एस्टोनिया देशयोः मध्ये व्यापार, निवेश, अंकिकीय परिवर्तन, साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी चेत्येषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य सुदृढीकरण विषये विचार विमर्शः कृतः। अनन्तरं साख्यकना इत्यस्य उपस्थितौ मन्त्रिणा भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चम् अपि अभिसंबोधितम्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः गतरात्रौ पश्चिमबंगालराज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां सिलिगुडी इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। सिलिगुडीनगरस्य बागडोगरा विमानस्थानके आगमनावधौ पश्चिमबंगालस्य मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा तस्य स्वागतं विहितम्। श्रीशाहः अद्य जुमागाछ नगरस्य सीमाचौकी इत्यत्र VSF इत्यस्य 18वां बटालियन इत्यस्य भ्रमणं करिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका तथा द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः अद्य प्रातः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपांत्य चक्रीय स्पर्धायां चीन देशस्य चेन युफेई सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे

0: मिशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर चेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए हमारा ये कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला। नमस्कार मिथिला सुनिहार समस्त श्रोतागण के आजुक अइ अंक में हम प्रवीण हमरा संग में प्रतिभा प्रीति जी सा स्नेह नमस्कार करै छी।
1: नमस्कार प्रवीण जी, साथ ही समस्त श्रोताओं को प्रतिभा प्रीति का स्नेह भरा नमस्कार। और प्रवीण जी, हर दिन हम सभी अपने इस कार्यक्रम में लेके आते हैं सुविचार। तो आज संत कबीरदास जी की वाणी है, कहते हैं, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। अर्थात हमें हमेशा ऐसी मधुर और मीठी भाषा बोलनी चाहिए जो मन के अहंकार और कटुता को मिटा दे। मीठी वाणी बोलने से सुनने वालों को शांति, आनंद और शीतलता की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही खुद बोलने वाले के मन को भी सुकून और प्रसन्नता पहुंचाती है।
0: सत्य कहलो काटी सत्यज वाणी यानी हमर भाषा हमर बाजब अही पर सब किछु निर्भर छै। कहै छै जे कौआ जहन काउ काउ करै छै तऽ ढेला लऽ कऽ ओकरा लोक भगा दै छै डंडा लऽ कऽ, आओर वएह कोयल अबै छै तऽ ओकर कूक जहन पसरै छै तऽ मंत्रमुग्ध हो कऽ आदमी ओकरा सुनैत जाइए कखनो नहि अघाइए। इएह वाणीके फेरा छै, यानि कर्कश आवाज आ एकटा मधुर, तऽ दुनूमे निश्चित रूपसँ सब किछु हमरा वाणिएमे निर्भर अछि। सरस्वती ओहीपर निर्भर छै। नीको काजके अहाँके वाणी, अहाँके बोलचाल भाषा बिगाड़ि सकै छै, आओर बिगड़लो काज यदि अहाँके सौम्यता अइ, भाषामे नम्रता अइ आओर मधुरता अइ, तऽ केहनो आदमी छथि ओ निश्चित रूपसँ दू मिनटके लिए ई कहता नहि ठीक छथि, हिनकर काज कऽ देबाक चाही। इएह अन्तर होइ छै। तैँ कखनो केहनो परिस्थितिमे अपन भाषाके कखनो खराब नहि करी। जखन बाजी प्रिय बाजी, मधुर बाजी, सत्य बाजी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रिय बोलिए, मधुर बोलिए और सत्य बोलिए। तो भाषा पे, वाणी पे बहुत कुछ निर्भर होता है, हमारे दैनिक दिनचर्या की, हमारे परिवार के लोगों के साथ संबंधों की बात हो या फिर हमारे समाज में हमारी पहचान हो, भाषा पे ही बहुत कुछ निर्भर करती है। और बात करते हैं हम आज के दिन के इतिहास की। तो आज के दिन अर्थात 18 जुलाई 1857 को बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यह भारत के पहले 3 विश्वविद्यालयों में से एक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को आज ही के दिन 1947 में ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज कस्टम की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 18 जुलाई 1947 को यह कानून आधिकारिक रूप से लागू हुआ था। गजल सम्राट के नाम से जाने वाले मेहदी हसन का जन्म 18 जुलाई 1927 को हुआ था। उनकी गायकी की विशेषता मधुर आवाज, शास्त्रीय संगीत पर गहरी पकड़ और भावपूर्ण प्रस्तुति थी। दक्षिण अफ्रीका के महान नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला का जन्म आज ही के दिन अर्थात 18 जुलाई 1918 को हुआ था। इसलिए 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला को मानवता, शांति और सामाजिक न्याय के प्रति सेवाओं के लिए उनके सम्मान में मनाया जाता है, जिसका कि उद्देश्य होता है हर व्यक्ति समाज के लिए सकारात्मक बदलाव ला सके। और बात करें 18 जुलाई 1980 की, तो भारत ने अपना पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन LLV-3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जिसके माध्यम से रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। तो ये थे आज के दिन का इतिहास। क्यों है आज का दिन इतिहास के आईने में खास?
0: जी, इतिहास में तो हर पल लिखाइत अछि और हम सब मात्र किछु अंश अहाँ सबके सुनबै छी सब दिन। आओ कार्यक्रम के आगा बढ़बै छी। आप सुनै छी एकटा सुमधुर मैथिली गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को हालचाल के माध्यम से हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो हालचाल लेकर उपस्थित हैं प्रवीण कुमार झा। आइए सुनते हैं प्रवीण से हालचाल।
3: नमस्कार,

हाल चाल संग हम प्रवीण कुमार। बिहार राज्य के 581,000 सँ अधिक शिक्षक गण के तबादला प्रक्रिया आरंभ भ गेल। शिक्षा विभाग शुक्र दिन बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के स्थानांतरण के विस्तृत अधिसूचना द देलक। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से स्थानांतरण सूचना देल गेल अछि। 29 जुलाई एहि महीना से पोर्टल खुलत। 5 अगस्त तक ऑनलाइन में आवेदन लेल जायत। ओहि के बाद ओकर निर्णय फेर होयत, पुनः तबादला होयत। बिहार में विश्वविद्यालय सबसे अलग होयत डिग्री महाविद्यालय। मानसून सत्र में आबि सकैत अछि 9 बिल। यूजी महाविद्यालय होयत राज्य सरकार के अधीन और पीजी आ विश्वविद्यालय सब के संचालन लोक भवन से होयत।

0: पुनः तबादला होयत। बिहार में विश्वविद्यालय सबसे अलग होयत डिग्री महाविद्यालय। मानसून सत्र में आ सकत अच नव बिल। यूजी महाविद्यालय होयत राज्य सरकार के अधीन और पीजी आ विश्वविद्यालय सबके संचालन लोक भवन से होयत। महाविद्यालय सब पर उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रण होयत। सब जिला में एकटा उच्च शिक्षा पदाधिकारी राखल जायत। नव सत्र में ई बिल राज्य सरकार आनी रहल अछि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा परिसर में लागत डॉपलर वेदर राडार। 18 महीना में आरंभ होयत एकर फंक्शन। ऐसा जे लाभ हेटत से एहि प्रकार अछि। सटीक और ससमय मौसम पूर्वानुमान भेट सकैत अछि। ठनका गिरबाक सँ 30 से 45 मिनट पहले सटीक लोकेशन के जानकारी सेहो दो देल जायत। अचानक बिहाड़ बसात या पाथर गिरवा के चेतावनी पहले से दो देल जायत। किसान सब के खेती लेल पहले सूचना भेटत जे कखन कौन फसल करी, कखन कौन फसल के कटनी करी, कखन कीटनाशक दवाई छीटी आ कखन खाद देवा के बेर आयल अछि। दरभंगा जिला में चीनी मिल सबके स्थापना के पहल तेज भेल। एहि से जुड़ल अधिकारीगण रैयाम सकरी क्षेत्र के निरीक्षण कयलनि और एहि से जुड़ल जमीन और जगह के निरीक्षण करैत कहलनि जे किसान सब यदि कुसियार के खेती बेसी से बेसी करता तो चीनी जे मिल अछि से सुचारू ढंग से चल सकैत अछि। ई हालचाल एखन आकाशवाणी दरभंगा से सुनि रहल छी।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: नमस्कार, एक बार हालचाल में पुनः स्वागत है। डीएमसीएच में अत्याधुनिक यूआरएस मशीन से एंडोस्कोपिक पथरी सर्जरी आरंभ भेल। आब एहि से जुड़ल रोगी सबके डीएमसीएच में भेटत अत्याधुनिक इलाज उपचार। मधुबनी जिला राजनगर प्रखंड में 16 जून से 17 जुलाई तक 30 दिवसीय नाट्य कार्यशाला चलल। एकर अंतिम दिन यानी काल्हि छात्र छात्रा सब मौन नाटक प्रस्तुत कयलनि जे सफल रहलनि। ओहि संगे किलकारी दरभंगा के छात्र छात्रा सब रविभूषण मुकुल के निर्देशन में राजा का न्याय नाटक प्रस्तुत कयलनि जे खूब सराहनीय रहल। दर्शक सब हुनका खूब पसंद कयलनि जे दर्शक सबके नीको लागल। ओना कहल गेल अछि जे साहित्य कला समाजक आईना होइत अछि। रंगकर्मी कला के माध्यम सँ ओकरा संवाहक के काज करै छथि। एकर संचालन लोकहित रंगपीठ सेवा संस्थान मधुबनी द्वारा कयल गेल। दरभंगा जिला में लागत लोक अदालत आई। दरभंगा के बेनीपुर बिरौल न्यायालय परिसर में अलग अलग बेंच के लोक अदालत लागत। आमजन से आह्वान अछि या अपन कोनो तरहक समस्या लोक अदालत में लाओ आ तत्काल निष्पादन ओकरा कऽ सकै छी। आइ लागत लोक अदालत। बिहार से नीट यूजी में 45% छात्र छात्रा सफल भेला। चारि गोट छात्र टॉप 138 में अपन स्थान अनलनि। 22 जुलाई से

0: अनुभव भऽ सकैत अछि एकर काउंसलिंग। दरभंगा एम्स निर्माण स्थल पर माटि भरबा आरंभ भऽ गेल, एकर निर्माण शीघ्र भयत। एहि संग हालचाल संपन्न।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आब मौसम के किछ पूर्वानुमान प्रीति सँ।
3: मौसम की जानकारी साझा करते हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी 18 से 22 जुलाई 2026 तक के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित अवधि के दौरान उत्तर बिहार के बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, सारण, वैशाली, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में 19 से 20 जुलाई के आसपास मेघ गर्जन, वज्रपात तथा तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है तथा आकाश पूर्णतः बादलों से आच्छादित रह सकता है। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। 19-20 जुलाई छोड़कर पूर्वानुमानित अवधि के अन्य दिनों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इस अवधि में तापमान को यदि देखा जाए तो अधिक उतार चढ़ाव के साथ अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सुबह में सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 85% तथा दोपहर में सापेक्षिक आर्द्रता 65 से 70% के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान हवा मुख्यतः दक्षिण पूर्वी दिशा से 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है।
0: इचल मौसम पूर्वान और कार्यक्रम के आगे बढ़े आप किस हम सब गपशप कोली।
3: देखिए बातचीत हम सभी तो हर दिन ही करते हैं प्रवीण जी, अपने इस कार्यक्रम नमस्कार मिथिला की गरिमा कह सकते हैं, विशेषता कह सकते हैं यही है कि हम सभी हर दिन कुछ न कुछ अपने श्रोताओं के साथ बातचीत करते हैं, उनके समक्ष रखते हैं अपने विचार को, अपनी भावनाओं को और सुनवाते हैं उन्हें, फिल्म संगीत मनोरंजित करवाते हैं गीत संगीत से। मैथिली गीत तो हमने पहले ही उन्हें सुनवाया है और हाल चाल से अवगत करवाते हैं जो कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पे निर्धारित है। तो हम सभी यह सोच के कि पहले ही बात किए हैं कि वाणी हमारी कैसी होनी चाहिए, वाणी में मिठास जो है वो बहुत ही आवश्यक है हमारे व्यवहार के लिए, हमारे जो आपसी संबंध है चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या फिर हम कहीं भी हैं किसी कार्यस्थल पे कार्य कर रहे होते हैं।
0: सत्य कहना देखियो मिथिला में लोगों को बड़ सुंदर सुनल जाए यह मुँह पान खुआ दे आ यह मुँह नहीं कहब चाहिए लेकिन जूतो खुआ दे।
3: देखिए जो इस तरह के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं जैसे कि हमने आज कबीरदास संत कबीरदास जी की वाणी को प्रस्तुत किया है, तो इस तरह के जो व्यक्तित्व वाले मिठास भरे वाणी वाले लोग होते हैं, वाणी में जिनकी मधुरता होती है, उनकी बातों में जो कह सकते हैं कि सीख भरी होती है, वो प्रेरक कह सकते हैं उससे हम सभी हर दिन प्रेरणा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके कहे गए शब्दों को ध्यान में रखते हुए अपने दैनिक दिनचर्या को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ें, उनसे अनमोल सीख हम ले पाते हैं।
0: सच कह लो, एकदम सत्य कह लो। देखो कोनो व्यक्ति वही नाम है ओकरा स्वर्णाक्षर में इतिहास में दर्ज नाम भ जाए छे, ओकर चरित्र ओकर वाणी ओकर विचार अमर रहे छे, ओ कहियो नहीं मरे छे। व्यक्ति के शरीर चल जाए छे लेकिन विचार ओकर ओकर जे शब्द छे से अमर छे, अमर रहे छे और ओ एकटा प्रेरक होइ छे।

0: সমাজকে লেল। ও একটা দর্পণকে কাজ করেই সাহিত্যকে, ও একটা মার্গকে কাজ করেই বাট দেখবই নব সমাজকে। আর কোনো তরহ বিচার যে দেই সে ওহিনা নেই দেই হুনকা অকাগুড় অধ্যয়ন হই সামাজিকতাকে, আর ওই সঙ্গে হুনকর জীবনমে যে সারতত্ত্ব বোঝে ও হুনকা বাণীমে অবৈ ছেন। তাই এহেন তরহ প্রেরক নেতৃত্ব যে হই সে হামরা সবকে অনমোল ধরোহর ছ, হুনকর বিচার সদা অমর হইত। ও বিচারসব প্রেরিত ভক হমসব বহুতো কিছু পাবই ছি আর পাবিত রহ। তাই আপনা আপকে কখনো এহেন ঢাঁচামে ঢালি যে কাল অহুকে নামকে বিচার চলে, অহুকে বিচার সমাজ বুঝে আর আহকে অনমোল ধরোহর বুঝে। তাই হমেশা রাষ্ট্রীয়তামে ডুবল রহবাক চাই, সামাজিকতামে ডুবল রহবাক চাই, নিক ইয়া বিজয়কে জ্ঞান অবশ্য দিই সমাজমে। আর যদি নিক বিচার সমাজমে দেবে তো ওইসব সামাজিক বিকাশ তো হইতে ছে, সঙ্গ সঙ্গ সামাজিক চেতনা সেও আগু অবৈ ছে। আর যত সমাজ জাগরুক হই ছে ওইঠামকা নাগরিক অবশ্য জাগরুক হই ছে। তাই সমাজকো ইয়া দায়িত্ব ছে।
1: দেখিও हम सभी हर दिन जो सुविचार लेके आते हैं, किन्हीं महान व्यक्तित्व की प्रेरणा लेते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं, जीवन के आदर्शों को जानते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी को की बात ले लें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बात ले लें, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही बात ले लें, तो इन जैसे महान व्यक्तित्व प्रेरक नेतृत्व के भी उत्कृष्ट उदाहरण हैं ये सभी, जिन्होंने अपने विचारों, कर्मों और समर्पण के से समाज को नई दिशा दी है। आवश्यकता है प्रवीण जी की इस गूढ़ विषय को समझ कर इस पर अमल करने की। देखिए, नेतृत्व केवल पद या अधिकार को ही हम सभी नहीं कह सकते हैं, बल्कि नेतृत्व तो वह क्षमता है जो लोगों को सही दिशा में प्रेरित करके सामूहिक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उत्साहित करती है। एक सच्चा नेता अपने आचरण से ही दूसरों का विश्वास जीतता है और स्वयं एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रवीण जी, यदि हम बात करें प्रेरक नेतृत्व की, तो नेतृत्व पहली सीख है इसकी कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। यदि आप ईमानदार होते हैं, आप सबसे पहले खुद ही सही रास्ते पे यदि नहीं चलते हैं, तो फिर आपका जो नेतृत्व है वो सही नहीं माना जाता है। जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले लोगों का विश्वास जीता है, वही सामूहिक उपकार के लक्ष्य तक पहुंच पाता है। खुद अपने सिद्धांत पे आप अडिग नहीं रहिएगा, आज कुछ बोलिएगा, यानी कथनी और करनी में यदि आपका फर्क हो जाता है तो आपको आपके सुनने वाले क्यों आपका महत्व देंगे।
0: सच कहलूँ, एकदम सच कहलूँ, हाँ एकदम निश्चित रूप से हमारे जे कहै छी कोनो विचार यदि रखै छी तो ओकरा जवाबदेही इहो बनैत अछि जे ओहि विचारके स्वतः हम पालन करै छी कि नहि, कि हम दोसरे लए कहै छी केवल। आओर जखन अपन भीड़ अबैए तखन कोनो बात नहि छै, चलते नहि, एहन नहि होइ छै। होइ छै जे कोनो तरहक यदि सामाजिक जागरूकताके विचार अहाँ दै छी तऽ स्वतः छै सबसँ पहिले ओकरा अपना ऊपर आनू, पहले ओकरा अपन आदर्श मानू ओकरा, आ ओहि अनुसार यदि अहाँ कहबै, क्रिया करबै तऽ निश्चित रूप से अहाँके अनुकरण समाजो करत, बुझबो करत। आ आइ तक के इतिहास इएह कहै छै जे महान विभूति सब जे भेला हमर देश के या विदेश में, से सब अपन विचार जे देलखिन हैं ओकर मंथन एखनो तक समाज करैए, आ बहुत किछु ओहिसँ पबैए। किया तऽ एक एकटा सुविचार होइ या कोनो लोकोक्ति होइ, ओहिमे गूढ़ रहस्य छुपल छै, जीवन के सार छुपल होइ छै, ओतहि ओकरा विचारऽ पड़ै छै, ओकरा गहनतासँ ओहिपर सोचऽ पड़ै छै, तखने ओकर शाब्दिक अर्थ बिल्कुल लगा सकते हैं।
1: और प्रेरक नेतृत्व की जहाँ तक बात है, तो इसमें सहानुभूतिक जो व्यवहार है, शब्द है, इसे भूला नहीं जा सकता। एक अच्छा नेता अपने साथियों की समस्याओं को समझता है, उनकी भावनाओं का सम्मान करता है। और एक बात यदि बताएं इसकी सीख के बारे में बात करें, तो वह है दूरदर्शिता, वर्तमान के साथ भविष्य की समस्याओं पर भी ध्यान देना, अमल करना। और इसका एक महत्वपूर्ण जो विषय है वो निर्णय लेने का साहस, अर्थात कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विवेक से लिया गया निर्णय सच्चे नेतृत्व की पहचान होती है। और प्रेरक नेतृत्व की यदि बात करें, तो सबसे बड़ा यह एक विषय है कि आपके कर्म आपके शब्दों से अधिक

0: व्यवहार डालते हैं, आपका कैसा बर्ताव है, आपका क्या व्यवहार है, ये सब। और कठिन समय में आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, विवेकपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। और इसके साथ ही सभी का सम्मान करना चाहिए, अपने टीम पर विश्वास करें करनी चाहिए, और निरंतर सीखते रहना भी एक महत्वपूर्ण विषय है। एक श्रेष्ठ नेता स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हम सभी हर दिन हर उम्र में कुछ न कुछ सीख देते हैं, सीखते रहना चाहिए। साथ ही सकारात्मक सोच अपनाना चाहिए। प्रवीण जी, सकारात्मक दृष्टिकोण कठिनाइयों को भी सरल बना देता है। किसी भी काम को आप यदि बोझ बना के चलते हैं कि ये कैसे होगा, ये तो अब हो नहीं सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आपके पास बहुत अधिक काम है तो आप उसे योजनाबद्ध बनाते हैं, सूचीबद्ध उसे कर लेते हैं पहले, और फिर सकारात्मक सोच के साथ यदि आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या कहने, आपके काम बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित हो पाते हैं। इसके साथ सेवा की भावना, सच्चा नेतृत्व दूसरों के हित और विकास को प्राथमिकता देता है। नेतृत्व पद से नहीं होता है प्रवीण जी, बल्कि चरित्र, सेवा, जिम्मेदारी और प्रेरणा से पहचाना जाता है, जो स्वयं को आगे बढ़ाते हुए दूसरे को भी आगे बढ़ने का अवसर देता है, वही सच्चा नेता कहलाता है।
1: सच्चे कहलाऊं और जीवन धारा छे, एमे हमरा जे सबटा जे चाहवे गुणे गुण छे त शरीर में अवगुणो रहे छे, तई लोग के जरूरत होइ छे कि जीवन क्रम में सिंहावलोकन हेबाक चाहिए। अहाँ की केलहुँ हैं, कते तक सफल भेलहुँ हैं, कतेक बाकी है काज, ओहि पर विचार अवश्य करी। और कहलहुँ हैं अवसाद अभिषाद दोनों मन में अबै छै, नीक विचार सेहो आयत आधला सेहो आयत, अहाँके पर निर्भर करैए जे अहाँ ओकरा ककरा आत्मसात करऽ चाहै छी, कोन मूडमे अहाँ रहऽ चाहै छी, कि अहाँ सदगति में सुविचार संगे रह चाहे छी या दुर्गति में दुर्विचार संगे जीव चाहे छी। ये बहुत किछ चरित्र पर निर्भर करै छी, और चरित्र वह महान होइ छै, प्रेरक होइ छै, जकर में लक्षण ई होय जे लोक के लऽ कऽ, सामूहिक लोक के लऽ कऽ आगू बढ़े, और ओकर जे कमी छै ओकरा दूर करे। ई नहि कि कहल है किछ और करल है किछ, ई नहि होइ छै।
0: और प्रवीण जी, हम सभी पहले ही कह चुके हैं कि अपने इस कार्यक्रम में सुनवाते हैं आप सभी को गीत संगीत, तो फिल्म संगीत की तरफ ले चलते हैं अपने श्रोताओं को और करते हैं उन्हें आनंदित एक गीत सुनवाकर।

0: आ जा रे परदेसी। सचमुच में जो गीत संगीत हो
1: और बात की थी प्रवीण जी आपने अवसाद की, तो गीत संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम कितना भी कुछ भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं, अवसाद में तो जाना ही नहीं चाहिए, पर यदि बार बार एक ही चीज़ को आप सोचते रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं अवसाद आपको घेर ही लेता है। तो उससे निकलने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है, अच्छा साधन कह सकते हैं कि गीत संगीत है। गीत संगीत सुनते हुए आप कितने भी कठिन कार्य को कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता कि कब आपका काम ख़त्म हो गया। और कितने बच्चे की भी आदत होती है कि वो गीत संगीत कम आवाज़ में सुनते हुए पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। सुबह का समय है, हमारे घर में जब भजन गीत संगीत के माध्यम से भजन गूंजता है तो फिर क्या कहने हैं, घर का वातावरण पूरा सुगंधित सा हो जाता है।
0: और आकाशवाणी एहन माध्यम होते हैं जे अहाँ रेडियो खोल दिया और आराम से गीतों सुनू, अपन काजो करू, कोनो तरह के बाधा नहीं हुई एक दूसरे के।
1: और मैं तो देखती हूँ प्रवीण जी कि घर में महिलाएं जो हमारे जो आस पड़ोस में जो महिलाएं होती हैं, घर की कार्य करते हुए भी वो रसोई घर में काम कर रही होती हैं और गीत संगीत सुनती रहती हैं। तो उनका कहना होता है कि जब मैं गीत संगीत सुन के काम करती हूँ तो फिर मेरा काम कब हो जाता है, किस कैसे हो जाता है, किस तरह से संपन्न मैं कर लेती हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता है। क्योंकि देखिए ना, खास करके महिलाओं की यदि बात करें और घर की बात की है, तो घर में उन्हें बहुत कुछ काम करना होता है। उन्हें खाना बनाने की ही बात नहीं कहते हैं, साफ सफाई की भी ध्यान देनी होती है, बहुत तरह के कार्य होते हैं। बच्चे को स्कूल भेजना है, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल करनी है, या घर में जो पुरुष वर्ग हैं उन्हें अपने काम पे जाना है तो उन्हें भेजना होता है। तो हर तरह की जिम्मेदारी उनके पास होती है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो खाना ही नहीं बनाए, भोजन ही नहीं बनाए, भोजन में पोषण कहाँ है, पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा, इन सब चीज़ों पे भी उन्हें बहुत ही गौर करने की बात होती है, ध्यान देने की बात होती है। तो इस तरह से वो जब वही जब अवसाद में आ जाएंगी, तनावग्रस्त हो जाएंगी, किसी तरह से परेशानियों में रहेंगी, तो फिर कहने क्या कि किस तरह से काम हो पाएगा, भोजन कैसे बन पाएगा। भोजन तो बन जाएगा, रोटी सब्जी आपके थाली में तो आ ही सकते हैं, लेकिन उसमें क्या पोषक तत्व है कि नहीं, पोषण है कि नहीं, हमारे बच्चों को जो ज़रूरी है अभी के लिए, या फिर हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए क्या आवश्यक पोषक तत्व है, वो हमारी थाली में पहुंच पाए कि नहीं, ये सब निर्भर करती है बात की, घर की महिलाओं के मन खुश रहने पे।
0: सत्य कहलो, सत्य कहलो, सत्य कहलो। देखो घर

0: पर होइ छै गृहिणी के, गृहिणी के परिवार ओही से बनै छै, आ परिवार से समाज बनै छै, समाज से राज्य आ राष्ट्र बनै छै। तै महत्व सबसे पहले जड़ के लोक दै छै, यानी कहै छै जड़ बौआ जते मजबूत हेतौ भवन उतबे नीक लगतौ आर मजबूत सेहो रहतौ। तै दुआरे सबसे पहले हम अबै छी गृहिणी पर, अहाँ चर्चा केलहुँ हँ निश्चित रूपसँ, जहाँ अहाँ परिवार चलबै छी तऽ अहाँके नीक या बेजाय सब तरहक अनुभूति हैत। आब छै जे अहाँ कोन परिस्थितिमे छी, आओर भोजनके बात केलहुँ अहाँ, ठीक छै, कोनो गृहिणीके यदि मोन ठीक नहि छनि, मोन व्याकुल छनि, आकुल छनि, तऽ हुनका यदि एक चम्मच नून देबाक छनि तऽ ओहिके बदलामे डेढ़ो चम्मच दूओ चम्मच दऽ देथिन, केओ केओ दोबारो दऽ दै छथिन, किएक तऽ मोन तऽ हुनकर बोटल छनि, तऽ फेर ओहिमे पौष्टिक आहार कतऽसँ। लेकिन ओहिके लेल होइ छै शांत चित्त, तैँ जीवनमे जे काज करी ओ सहजतासँ करी, शान्त मनसँ करी, आ भोजनोमे यदि पौष्टिकता बचै छै तऽ शान्ते मनसँ अहाँ भोजन बनेबै तखने बजै छै। जेना तरकारीके यदि तेलसँ तर आ मसालासँ कारी कऽ कऽ खेबै तऽ जीके तऽ स्वाद खूब भेटत, लेकिन तरकारीके जे गुण छै ओहि गुणके तऽ पहिले अहाँ भुजि देलियै तेलमे आ मसालामे, तऽ ओ गुणपर आघात पहुँचै छै।
1: बिल्कुल, देखिए हम कहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमारा आहार और व्यवहार सही होना चाहिए। स्वस्थ मानसिकता के लिए व्यवहार सही होने की आवश्यकता है, रखने की आवश्यकता है, और स्वास्थ्य सही रखने के लिए स्वस्थ और पोषण युक्त आहार लेना चाहिए। आपने कहा कि तेल और मसाले का प्रयोग, तो सही बात है, यदि हम बहुत अधिक प्रयोग करते हैं तो उसका दुष्परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। इसके लिए अपनी दिनचर्या में खान पान का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है प्रवीण जी, जिससे हम स्वस्थ रह सके। पोषण युक्त आहार के लिए हमें हमारे घर की रसोई में छिपा पोषण विज्ञान को समझना होगा। घर में बस रोटी सब्जी दाल चावल बनाना ही एक कला नहीं है, हमारे रसोई में, घर के रसोई में ही क्या कुछ पोषण विज्ञान है, इसे हमें जानने की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है, खास करके हम महिलाओं को। हमारे घर की रसोई केवल भोजन बनाने की एक जगह नहीं होती है, बल्कि पोषण विज्ञान का एक जीवन प्रयोगशाला भी होता है। हम सभी प्रयोगशाला में काम, ऐसे तो विज्ञान की प्रयोगशाला में काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो रसोई घर है वो एक जो पोषण का, पोषण विज्ञान का प्रयोगशाला है, ये तो आप सबको मानना ही होगा। हमारे रसोई घर में मौजूद हर मसाला, अनाज, दाल, सब्जी और फलों के अंदर स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक विशेषताएँ भरे होते हैं प्रवीण जी। आवश्यकता है कि सही समझ और संतुलन के साथ जब इन सब का प्रयोग किया जाता है तो भोजन के द्वारा शरीर की ऊर्जा भी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें या इसके साथ मानसिक रूप से भी ताजगी बनी रहती है। आज की भागदौड़ में जो जीवन है हमारी, उसमें जंक फूड का, खास करके बच्चों की बात यदि करें तो अत्यधिक जंक फूड या फिर चीनी, नमक और तले हुए खाद्य सामग्री का सेवन बढ़ गया है, जिससे मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे, या फिर कहें हृदय रोग, इन सब समस्याओं से बहुत अधिक लोग पीड़ित होते हैं और वो ये जान नहीं पाते हैं कि इस समस्या का जड़ कहाँ है।
0: एकटा कहावत छै, जेहने आहार तेहने व्यवहार, आ सचमुच में यदि अहाँ भोजन पौष्टिक आहार पूर्ण करै छी तऽ सबसे पहले तऽ स्वास्थ्य अहाँके एकदम ठीक रहत। आओर यदि एखन युग आबि गेल छै चटर पटर वाला, यानि पैकेट सिस्टम, ओहिमे आब बहुत किछु छै, हम नाम कते के लिए, बच्चा सब ओहि पर बेसी जोर अछि। जनै छी आजुक बच्चा सब सब्जी नहि खाय चाहत, तरकारी नहि खायत, ओहिसँ मुँह कान टेढ़ करत, आ जखने कहबै चाउमिन खेमे, मोमो खेमे, तो तुरंत कहत या तो बनाओ या मंगाओ। जी एहन चीज अछि जकरा जतेक दौड़ेबै ततेक स्वाद ओ लेनाइ शुरू करै छै, आ जते ओकरा साधि कऽ रखबै तते वो सधाई। तो
1: देखिए, दो मिनट में तैयार होने वाली, कहते हैं ना दो मिनट में मैगी तैयार, या कुछ भी इस तरह का है जो जो जंक फूड है वो, तो इस तरह के जो भोजन होते हैं जो तुरंत तैयार हो जाता है, तुरंत हम उसे बना लेते हैं, या फिर कुछ तो अपने पैकेट बंद की बात की है तो बहुत सारी ऐसी है जो बना हुआ ही आता है, पहले से रखा हुआ बना हुआ, तो इन सब की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित तो हुआ ही है। इसमें कहीं ना कहीं हम सभी जो हमारे घर के जो हम बड़े हैं वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं उन्हें नहीं पता है कि ये खाने में कैसा लगेगा, मोमो कैसा होता है खाने में, मोमोज़ का क्या स्वाद है या नूडल्स का क्या स्वाद है। हम उन्हें उनके सामने परोसते हैं, बना के उन्हें देते हैं खाने के लिए, और जल्दी से बनने वाली चीज है तो हम भी फ्री हो।

0: जाते हैं, जल्दी से बना के दे देते हैं बच्चों को, ये ध्यान रखने से चले जाते हैं कि इसमें पौष्टिकता क्या है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पे इसका दुष्परिणाम होगा या फिर अच्छा परिणाम होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम कहीं ना कहीं खुद भी जिम्मेदार होते हैं। जब हमारे बच्चों की जीभ को आदत सी हो जाती है चटकदार खाने की, तो वो फिर क्यों कर खाएगा साग सब्जी, हरी सब्जी को क्यों पसंद करेगा, क्योंकि उसके सामने तो हमने पहले ही रख दिया है चटकदार भोजन।
1: और एहि युग में देख रहल छी जे छोट छोट बच्चा के फैटी लिवर या अन्य अन्य तरह मधुमेह त जना एहना पसरे रहल अछि घरे घर। ओकर कारण अछि हमर सबके दिनचर्या और भोजन दुइटा यदि हम सब ठीक क ली त ई सब जे व्याधि है एकरा हम दूर क सकै छी अपना समाज से अपना घर से। लेकिन हम सब आलसी प्रवृत्ति के भल जा रहल छी, मेहनत से कनी भागै छी। अहाँ ठीक को कहलहुँ हैं कि अपन समस्या के दूर कर के लेल चट मंगनी पट बियाह वाला बात तुरंत मनाओ और दो मिनट में बच्चा खाओ, हमू निश्चिंत बचो निश्चिंत। ई यदि सोच हो जत रहै छे ओत व्याधि कोना नहीं एते।
0: देखिए घर के रसोई में बने ताजे संतुलित और स्वच्छ भोजन का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया आजकल। देखिए ना, आज के ऐसी बात नहीं है कि सब कोई तले छने भोजन को ही खाना पसंद करते हैं। आजकल बहुत से लोगों के आज का जो पीढ़ी है वो जो अब जो बड़ा हुआ है वो सब कहेगा कि चीनी नहीं खाना है, ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करना है, मीठे से परहेज। तो देख सकते हैं कि हमारे रसोई में अनेक खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से पौष्टिक हैं। तरह तरह की दाल है, चना है, राजमा है, सोयाबीन है, या पनीर है, प्रोटीन के रूप में पनीर जो है वो अच्छा स्रोत है ऐसा मानना है सभी का। वहीं गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार और रागी हमारे शरीर को ऊर्जा के साथ साथ अनेक पोषक तत्व भी देते हैं। इन सब चीज़ों की तरफ आज के पीढ़ी का ध्यान आकर्षित हुआ, हम सभी भी जान रहे हैं। पहले के समय में रागी का बहुत अधिक प्रयोग होता था,
1: खासकर रोटी का नाम ही है।
0: जी बिल्कुल। तो पहले इस तरह का सोच था कि नहीं है गेहूं इनके पास तो रागी का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर कोई कोई ही खा पाते थे जिनके पास गेहूं रहता था, गेहूं के आटे का जो व्यवस्था उनके पास है तो भी। और आजकल हम सभी बहुत ही महंगे, बहुत ही ऊंचे दामों पर इसे मंगवा रहे हैं, खरीद रहे हैं, या फिर ऑनलाइन मंगवाएं, या फिर अपने शहर में गांव में व्यवस्थित करके मंगवाएं, खा रहे हैं, क्योंकि हमने इसका जो महत्व है, पौष्टिकता है इसमें, इसे समझ लिया है।
1: और पौष्टिकता के समझ कर यदि भोजन बने और खाल जाए तो निश्चित रूप से गृहिणी सब सबके स्वस्थ रखतीन और गृहिणी के हाथ में सब किछ रहै छै। चर्चा आगू करो, आप सुनै छी
0: एकटा चर्चा, तो इस बात पे कभी समाप्त होने वाली है नहीं, किंतु हमारे कार्यक्रम का जो समय है वो समापन की ओर है। तो चलते चलते सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं को।

0: मैं न जाऊंगी गीत में हमने एक पंक्ति सुनी है, लेकिन हम सभी को जाना पड़ेगा आपसे विदा लेकर। तो फिर अगले अंक में उपस्थित होंगे आप सबके साथ, तब तक के लिए प्रतिभा प्रीति को
1: प्रवीण के दिया
0: दीजिए विदा। नमस्कार मिथिला।

आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम।

0: हम एक हैं। भारत नेपाल मैत्रीपूर्ण संबंध जिसके तहत नागरिक बेरोक टोक इन दोनों ही देशों के बीच आवाजाही करते हैं। सीमा क्षेत्र के रहने वाले कभी घूमने निकल पड़ते हैं एक दूसरी ओर,
1: जनकपुर जाने के लिए आए,
0: कभी खरीदारी भी करते हैं। सामाजिक ताना बाना ऐसा कि इधर के लोग उधर या फिर उधर के लोग इधर करते हैं शादियाँ।
1: मैं चाहता हूँ कि मेरा शादी भी नेपाल में हो।
0: रहते हैं एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक।
2: एम्बुलेंस को फोन करते तुरंत आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, दोनों पार के आदमी समस्या को सॉल्व करते हैं।
0: इन्हीं मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आकाशवाणी दरभंगा लेकर आता है कार्यक्रम हम एक हैं, प्रत्येक महीने के चौथे गुरुवार को रात 10:30 बजे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
3: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
4: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।
5: भोर होते उठ जाओ कि एकता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल लेल।
6: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
7: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जो नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
8: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
9: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी

0: बारिश के इन दिनों में अपने घर के छोटे बच्चों का विशेष ख्याल रखें। उन्हें वैसी जगह खेलने जाने से मना करें जहां पानी से भरे हुए गड्ढे हो। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। सुबह के 8 होने ही वाले हैं। अब समाचार प्रभात।
1: इजी समाचार और उर्दू समाचार भी आप सुनेंगे।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्ट
4: को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार

0: परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं ये कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's...
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ. हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था तो मैं वापस गया अपने कमरे में। जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाए।
1: प्रकृति की बात।

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
2: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
3: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मॉनसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम संजय मट्टू। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off 2 new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. In Japan Open Badminton, PV Sindhu faces Chen Yufei of China in semi-final of women's singles in Tokyo, and in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been

0: will begin nationwide coaching and officiating education pathway workshops from today to strengthen hockey's development ecosystem across the country. Designed to deliver internationally recognized learning opportunities, these workshops will equip participants with the latest coaching methodologies, technical knowledge, and officiating standards. The initiative aims to enhance the knowledge and skill of coaches and technical officials while promoting structured hockey education across India. The India Meteorological Department has issued red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjeev Kaur.
1: Thank you, Sanjay. Prime Minister Narendra Modi's visit to Haryana and Punjab are prominently noticed on the front pages of all national dailies. On his visit to Jind in Haryana, the statesman notes, PM launches India's first hydrogen train. Highlighting his visit to Punjab, the front page lead in the Tribune states, PM slams up over law and order, graft, attack on Akalis, signals solo poll run. The Times of India's front page lead quotes the Supreme Court as saying, Election Commission can delete doubtful voters, can't decide citizenship. The Hindustan Times carries a story on the Joint Parliamentary Committee reviewing the bill to automatically remove ministers, chief ministers and prime ministers arrested for over 30 days. The paper writes, Parliamentary panel on PM, CM's removal bill defers draft report. Drawing attention to possible plans to introduce plastic currency in India, the Times of India reports, in step towards plastic notes, RBI floats expression of interest for polymer substrates. And finally, the passing away of legendary cricketer Sir Garfield Sobers is widely noticed in the press. The Indian Express writes in its obituary, legendary all-rounder with many firsts. He didn't know how special he was. And with that, it's back to you, Sanjay.
0: Thank you, Sarabjeet. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 75 redeveloped railway stations across the country under Amrit Bharat scheme. Also flags off two new train services. Home Minister Amit Shah to visit BSF border outpost in West Bengal today to review security and launch development initiatives. UN Human Rights Agency voices concern over wave of unrest in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Calls for probe into deaths of protesters. PV Sindhu enters into final of Japan Open Badminton Tournament. And in FIFA World Cup, France and England to lock horns for third place at Miami tonight. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा आदाब खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है वज़ीर-ए-आज़म ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया वजीर दाखला अमित शाह आज مغربی بنگال میں بی ایس ایف کی باہری سرحدی چوکی کا دورہ کریں گے وہ حفاظت انتظامات کا جائزہ لیں گے اور ترقیاتی اقدامات کا آغاز کریں گے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق ایجنسی نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پائی جانے والی بے چینی پر تشویش ظاہر کی ہے اس نے مظاہرین کی اموات کی تفتیش کے لیے آواز اٹھائی ہے ٹوکیو میں जापान बैडमिंटन ओपन में पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्लेऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा अब खबरें तफसील से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम पंजाब के शहर जालंधर से 20 रियासतों के 75 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम एबीएसएस के तहत जदीद बनाया गया है यह प्रोग्राम स्टेशनों को जदीद बनाए जाने के दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्रामों में शामिल है मुसाफिरों की सहूलतों के लिए की गई इन स्टेशनों की जदीदकारी पर तकरीबन 1570 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इन स्टेशनों को विरासत भी विकास भी के जज्बे के साथ नए सिरे से तैयार किया गया है और इस अमल में مقامی ثقافت विरासत और फन-ए-तामीर का

0: तौर पर ख्याल रखा गया है। इस मौके पर जनाब मोदी ने करतौली अंबाला ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राबते में इजाफा होगा। वजीर आजम ने अमृतसर और वाराणसी के दरमियान संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसकी वजह से भारत के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम रूहानी और सकाफती दो मराकज के दरमियान बराह रास्त रेल खिदमात शुरू हो गई हैं। वजीर आजम ने चार लेन वाले ग्रीन फील्ड दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के 30.9 किलोमीटर के छठे पैकेज का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर जनाब मोदी ने कहा कि इन 75 तजदीद शुदा रेलवे स्टेशनों से भारतीय रेलवे के जरिए पिछले कुछ बरसों में की गई अक्सर तब्दीली की अक्कासी होती है।
1: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। साथियों, जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले दिन में वजीर आजम मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन जिंद और सोनीपत रेलवे स्टेशन के दरमियान चलेगी और 79 किलोमीटर का फासला महज 2 घंटे में तय कर लेगी। जनाब मोदी ने जिंद में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए के बहुत से कौमी तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और उन्हें मुल्क के लिए वक्फ किया। वजीर आजम ने चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के तरक्याती कामों का आगाज किया, जिसमें हिफ्जान सेहत, तालीम और सड़क बुनियादी ढांचा शामिल है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज मगरबी बंगाल के जुमागच इलाके में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। ये चौकी भारत बांग्लादेश सरहद के करीब वाक है। वो बीएसएफ से मुतालिक बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर दाखला सिलीगुड़ी में एक मीटिंग की सदारत भी करेंगे, जिसमें रियासत में सरहद पर बंदोबस्त और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात का जायजा लिया जाएगा। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: जनाब अमित शाह मगरबी बंगाल के 3 रोजा दौरे के लिए कल रात बागडोगरा पहुंचे। आज वो शुमाली बंगाल में सरहदी हिफाजी दस्तों के 2 कैंपों का दौरा करेंगे और एक प्रहरी सम्मेलन से खिताब करेंगे। शुमाली बंगाल के सरहदी इलाकों से मुतालिक मामलात पर उत्तराखंड में कई मीटिंगों का इनेकाद करेंगे। वजी अला सुरिंदो अधिकारी और रियासती सरकार के सीनियर अफसरान इन मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब शाह आज शाम कोलकाता चले जाएंगे। कल वो सीनियर पुलिस अफसरान के साथ एक मीटिंग में रियासत में नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल का जायजा लेंगे। वो कौमी लाइब्रेरी में एक तकरीब में शिरकत करेंगे और बिस्वा बंगला कन्वेंशन सेंटर से धौलागढ़ में अमूल डेयरी प्लांट की संग बुनियाद रखे जाने की एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। कोलकाता से संदीप उन्नास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कल टेलिन में एस्टोनिया के खारजी उमूर के वजीर मार्गस सखना से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल तब्दीली, साइबर सलामती और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों के शोबों में भारत एस्टोनिया इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत यूरोपीय यूनियन आजादाना तिजारती माहिरे से मुतालिक बातचीत के कामयाब इख्तिताम के बाद नए मौके पैदा करने के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया। जनाब सखना की मौजूदगी में भारत एस्टोनिया कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भारत की डिजिटल सलाहियतों और आलमी दर्जे की मैन्युफैक्चरिंग के इम्तिजाज को भारत यूरोपीय यूनियन आजादाना तिजारती माहिदा फ्रेमवर्क की मदद मिलने से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग मिल सकता है और भारत यूरोपीय यूनियन साझेदारी मजबूत हो सकती है। जनाब गोयल ने एस्टोनिया के कारोबारियों को भारत में सरमायाकारी करने की दावत दी और इस बात को नुमाया किया कि भारत की इस्लाहात, शफाफ, मुस्तहकम और मसादकत पर मबनी कारोबारी माहौल तश्कील देने पर मरकूज हैं। स्काई रूट एरोस्पेस आज सुबह विक्रम 1 को पहली बार इसके मदार में पहुंचाएगा। प्राइवेट कंपनी के जरिए तैयार किया गया ये भारत का पहला रॉकेट है जो सैयारचों को खला में ले जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मिशन को भारत के खलाई सफर में एक तारीखी नया बाब करार दिया। उन्होंने कहा कि 4 सतहों वाले इस रॉकेट को तेज रफ्तार से और मांग किए जाने पर सैयारों को खला में ले जाने की खिदमात फराहम करने के मकसद से तैयार किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि इस मिशन से मुल्क के नौजवानों की सलाहियत, अज्म और कारोबारी जज्बे की अक्कासी होती है। साथ ही साथ इससे

0: फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी चीन की शेन यूफी को शिकस्त दी। सिंधु कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की साबिक आलमी चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के दस्तबरदार होने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची थीं। फीफा आलमी कप में आज रात मायामी स्टेडियम में यूरोपीय हरीफ फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा मुकाम हासिल करने के लिए प्लेऑफ मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 2:30 बजे शुरू होगा। तीसरे मुकाम के लिए प्लेऑफ मैच को आलमी कप के हिस्से के तौर पर साल 1934 में टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन में शामिल किया गया था। इसके बाद से सिर्फ साल 1950 के एडिशन में ये मैच नहीं हो सका था। इस दौरान कल रात न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा आलमी कप का फाइनल मैच होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। हॉकी इंडिया आज से मुल्क भर में मुल्कगीर सतह पर कोचिंग और इंतजामी उमूर के तौर तरीकों से मुतालिक वर्कशॉप का आगाज करेगा, ताकि मुल्की सतह पर हॉकी के फरोग के लिए इको निज़ाम को मुस्तहकम किया जा सके। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग।
1: शुक्रिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। ये ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत तक चलेगी। फॉरेस्ट सर्विस के अफसरान महज जंगलात के मुंतजिम नहीं है, बल्कि कुदरती वरसे के भी मुहाफिज हैं। इस बात का इजहार ख्याल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ट्रेनी अफसरान से मुलाकात के दौरान किया। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने पहले सफे पर जगह दी है। सतीश गोलछा की जगह अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की खबर को रोजनामा इनकलाब समेत दीगर अखबारों ने खसूसी तौर पर शाये किया है। खबरों के मुताबिक वजारत दाखिला का हुक्म जारी होते ही उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, जबकि रोजनामा इनकलाब ने अमरीका और ईरान की तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर हमले जारी रहने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्कीम के तहत पूरे मुल्क में 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनकी हाल ही में जदीदकारी की गई है। वजीर आजम ने दो नई रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर दाखिला अमित शाह आज मगरबी बंगाल में बीएसएफ की बाहरी सरहदी चौकी का दौरा करेंगे। वो हिफाजत इंतजाम का जायजा लेंगे और तरक्याती इकदाम का आगाज करेंगे। अकवाम मुतहदा की इंसानी हकूक से मुतलिक एजेंसी ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली बेचैनी पर तशवीश जाहिर की है। उसने मुजाहिरीन की अमवात की तफ्तीश के लिए आवाज उठाई है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। और फीफा आलमी कप में आज रात मायामी में तीसरे मुकाम के प्लेऑफ मैच में फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोगों से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
4: इसके लिए वर्षा ऋतु के दौरान कुछ अपनाने योग्य बातों का ध्यान रखें। बारिश से पहले पशुओं की पशुशाला के छत की मरम्मत कर दें, ताकि पानी न टपके। पशुशाला की खिड़कियों को खुली रखें तथा गर्मी और उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें।
3: नियमित अंतराल पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें। जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट न होने दें और बार बार धूप में न लाएं।
4: कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पे करें। संक्रामक रोगों के विरुद्ध अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें।
5: डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित बिहार के शिवनारायणपुर समेत देश भर के 75 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पर बिहार सरकार से आपत्ति जताई। प्रवर्तन निदेशालय ने बांका में अवैध बालू खनन से जुड़े धन शोधन के मामले में एक निजी कंपनी के बिहार, दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित बिहार के शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन समेत देश भर के 75 रेलवे स्टेशन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन भागलपुर साहेबगंज रेलखंड पर स्थित है। हरियाणा के जिंद में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शिवनारायणपुर स्टेशन के आधुनिकीकरण से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति बिहारवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पर बिहार सरकार से आपत्ति जताई है। गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा कि जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों का स्थानांतरण अभियान को प्रभावित कर सकता है। मंत्रालय ने कहा कि 11 मार्च 2026 से ऐसे अधिकारियों के तबादले पर रोक के निर्देश हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में नामित शिक्षकों तथा अन्य कर्मियों का दूसरे चरण से पहले स्थानांतरण जनगणना कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। गौरतलब है कि बिहार की जनगणना निदेशक रंजिता ने भी जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पर आपत्ति जताई थी। बिहार विधान परिषद के 8 सदस्यों ने प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सदस्यों ने किसी भी संरचनात्मक बदलाव से पहले सभी हितधारकों से व्यापक विमर्श करने और विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की है। गौरतलब है कि राज्य सरकार विधानमंडल के आगामी मॉनसून सत्र में नया उच्च शिक्षा विधेयक लाने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के अनुसार सरकारी डिग्री कॉलेजों को विश्वविद्यालयों से अलग कर सीधे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाएगा, जबकि स्नातकोत्तर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का संचालन एक स्वायत्त निकाय के माध्यम से होगा।

0: राज्य सरकार ने दरभंगा, समस्तीपुर और गोपालगंज में 4 बाईपास सड़कों के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार इन परियोजनाओं पर 288 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। तकनीकी स्वीकृति के बाद जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग के अनुसार ये परियोजनाएं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं का हिस्सा है। राज्य सरकार ने दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर मोटर वाहन कर में वृद्धि लागू कर दी है। परिवहन विभाग ने मंत्रिमंडल के फैसले की अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत 1,00,000 रुपए तक की कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए 9% और 1,00,000 रुपए से अधिक कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 10% कर लिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार दोपहिया वाहनों पर कर की दर में 1% की वृद्धि की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम को 15 अगस्त तक पूरा करने का निर्देश दिया है। विभागीय सचिव जय सिंह ने समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को 31 जुलाई तक सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में किसानों को बीज से बाजार तक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग और गूगल के बीच सहयोग की दिशा में पहल की गई है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नई दिल्ली में गूगल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर डिजिटल तकनीक, फार्मर आईडी और तकनीक आधारित कृषि सेवाओं पर चर्चा की। मंत्री ने कहा कि विभाग गूगल के तकनीकी मॉडल का अध्ययन कर आवश्यकताओं के अनुरूप आगे की कार्य योजना तैयार करेगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर और रोजगार प्रदाता बनाना सरकार की प्राथमिकता है। हाजीपुर में जीविका की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक और ई कॉमर्स के माध्यम से महिलाओं की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कार्यशाला में 250 से अधिक जीविका दीदियों को विशेषज्ञों ने ऑनलाइन विपणन, डिजिटल मार्केटिंग और उत्पाद सूचीकरण का प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 के तहत पटना जॉयराइड का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम अपराह्न 3 बजे स्टेट हैंगर पटना में आयोजित होगा। वहीं मुख्यमंत्री आज पटना में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में विश्वविद्यालय के सफल विद्यार्थियों को उपाधियां और टॉपर छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बांका जिले में अवैध बालू खनन से जुड़े लगभग 131 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में बिहार, दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना और बांका में छापेमारी हुई है। ईडी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2022-23 के बीच बड़े पैमाने पर अवैध खनन किए जाने के आरोपों की जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान कई डिजिटल दस्तावेज जब्त किए गए। जांच एक निजी कंपनी और उससे जुड़े लोगों की भूमिका पर केंद्रित है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज औरंगाबाद, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और बारिश का पूर्वानुमान है।
1: राज्य

0: के पश्चिमी एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने चलने की संभावना है।
1: बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने संविदा आधारित सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। 6 विषयों के लिए 40,000 से अधिक आवेदनों में से स्क्रीनिंग के बाद 8,034 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। साक्षात्कार 20 जुलाई से पटना के विभिन्न केंद्रों पर शुरू होंगे। 6 विषयों में कुल 2,532 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। राजद अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को कल शाम तबीयत बिगड़ने पर पटना के IGIMS में भर्ती कराया गया। अस्पताल के अनुसार उनका रक्तचाप अस्थिर हो गया था, जिसके बाद उन्हें एहतियातन कार्डियोलॉजी विभाग में ले जाकर आवश्यक जांच की गई। लगभग 3 घंटे के बाद उनकी स्थिति सामान्य होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुजफ्फरपुर के मुशरी प्रखंड में नाला निर्माण के दौरान PNG पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से गैस रिसाव की घटना में 7 छात्राएं और 2 शिक्षिकाएं बेहोश हो गईं। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर किया गया। प्रशासन के अनुसार सभी की स्थिति अब स्थिर है। तकनीकी टीम ने पाइपलाइन की मरम्मत कर गैस रिसाव पर नियंत्रण पा लिया है। गया की MP MLA अदालत ने वर्ष 2013 के चर्चित जदयू नेता सुमिरक यादव हत्याकांड में राजद के पूर्व विधायक रंजीत यादव सहित 3 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में पूर्व विधायक कुंती देवी को पहले ही दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई जा चुकी है। राज्य की साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई ने साइबर ठगी की रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेश भेजने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पटना से गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने और आपत्तिजनक पोस्ट के मामलों में 1 मई से 14 जुलाई तक 102 मामले दर्ज कर 130 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इन सभी मामलों में 40 हथियार जब्त किए गए हैं। मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक सब इंस्पेक्टर और चौकीदार से लूटपाट का प्रयास किया। विरोध करने पर अपराधियों ने सब इंस्पेक्टर रूपक कुमार पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर में बाघ ने एक बछड़े का शिकार कर लिया। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। खगड़िया सदर प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी दीपक कुमार भारद्वाज को लखीसराय में शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। नालंदा जिले के पेना थाना क्षेत्र में बिहार शरीफ बख्तियारपुर मार्ग पर सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार दंपति की मौत हो गई। वहीं सहरसा में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। अरवल में 20 जुलाई को जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा। समाहरणालय परिसर स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित रोजगार मेले में 20 से 25 नियोजक भाग लेंगे और लगभग 900 रिक्त पदों पर नियुक्ति के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शिक्षक तबादले के लिए आवेदन 29 से 3 चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया, पहले चरण में 5 अगस्त तक आवेदन का मौका। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, मतदाता सूची से नाम हटाने से खत्म नहीं होती है नागरिकता। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं। प्रभात खबर की सुर्खी है, जरूरत के हिसाब से बिहार बनाएगा अपना स्वदेशी AI मॉडल, CM। राष्ट्रीय सागर के

0: हैं हरियाणा के जिंद से दौड़ी देश की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन। आज अखबार लिखता है पढ़ाई में और आगे निकला बिहार, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का खुलासा, सूबे का स्कोर 507 से बढ़कर हुआ 564.8। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित बिहार के शिवनारायणपुर समेत देश भर के 75 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों के तबादले पर बिहार सरकार से आपत्ति जताई। प्रवर्तन निदेशालय ने बांका में अवैध बालू खनन से जुड़े धन शोधन के मामले में एक निजी कंपनी के बिहार, दिल्ली और राजस्थान के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। और मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: यार वोट देना तो है लेकिन मतदान केंद्र कहाँ है?
2: मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं कैसे पता चलेगा?
1: और मुझे मतदान से जुड़ी जानकारी चाहिए।
2: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
1: 1950?
2: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता, हर सवाल का जवाब एक नंबर पर।
3: मतलब जानकारी भी मार्गदर्शन भी?
2: बिल्कुल, 182 बाकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
1: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
2: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कोई मतदाता ना छूटे।
4: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
5: गन्ने की खेती अब सिर्फ फसल नहीं, बनेगी आपकी नई पहचान और बेहतर कमाई का आधार।
6: बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग की बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत अब गुड़ उत्पादन इकाई की स्थापना पर मिलेगा पूंजीगत लागत का 50% तक अनुदान।
5: क्षमता के अनुसार 6 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का लाभ उठाइए।
6: आज ही कीन केयर पोर्टल ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि है 25 जुलाई 2026। गन्ना उद्योग विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

रखा होता है तो वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। ये हम सब इंसानों की जिम्मेदारी बनती है कि पानी का सही इस्तेमाल करते हुए उसकी हिफाजत भी करें, ताकि इंसानों और हैवानात को भी साफ और सही मकदार में उनकी जरूरत पूरी होते हुए पानी हमेशा मिलता रहे। सामीन, हमारी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। आइए एक प्यारी सी गजल से आपको महजूज करते हैं।

के साथ। दोस्तों, सेहतमंद जिस्म और जिंदगी के लिए पानी का दुरुस्त इस्तेमाल बेहद जरूरी है। सेहतमंद जिस्म के लिए कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। पानी पीने के वक्त कोशिश करें कि पानी 3 सांसों में और बैठकर पिया जाए, क्योंकि ये पानी पीने का तरीका सेहत का बायस बनता है। खाना खाने के दौरान या बीच में ज्यादा पानी पीने से गुरेज करें ताकि आपका हाजमा सुस्त या खराब ना हो। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना ज्यादा बेहतर है। कहते हैं कि जो खाना हम खाते हैं उसे अगर सही तरीके से हजम होने का वक्त देना है तो कोशिश करिए कि खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पिए। सामिन, पानी पर हमारी गुफ्तगू चलती रहेगी। फिलहाल आज की खास पेशकश उर्दू ड्रामा रूह का रिश्ता समाप्त करने का वक्त हुआ जाता है। आइए रुख करते हैं उर्दू ड्रामा की जानिब। तहरीर नुमान हाशमी और पेशकश कमाल जाफरी की है।

आमीन। शानदार ड्रामा जिसका उन्वान रूह का रिश्ता है, पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। तहरीर है नोमान हाशमी की और शुरका हैं एम एच रेहान, रुखसाना सिद्दीकी, अशफाक अहमद, सुनील कुमार सिन्हा और अर्चना सोनी।

0: हैंडसम।
1: हाय स्वीटी, कहो कैसी हो?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो?
1: बिल्कुल फर्स्ट क्लास।
0: फर्स्ट क्लास तो तुम हर इम्तिहान में लाती ही हो।
1: लेकिन तुम तो टॉप क्लास हो।
0: सब समझती हूँ, क्या मैं वाकई तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
1: अरे ये किसने कहा, तुम तो कयामत हो, कयामत।
0: और तुम कयामत से डरते हो क्यों?
1: तुम जैसी हसीन कयामत से डरना क्या?
0: तो फिर इस कयामत को गले क्यों नहीं लगा लेते?
1: जाने मन, झुलस जाने का डर है।
0: दिल को करना है अगर सोजे मोहब्बत में कबाब, करवटी आग के बिस्तर पे बदलना सीखो।
1: हाँ अच्छा शेर है।
0: सच कहती हूँ डियर, तुम्हारे बगैर जिंदगी अधूरी लगती है।
1: हाँ रोजी, जिंदगी तो शादी के बाद ही मुकम्मल होती है।
0: तो तुम अपनी और मेरी जिंदगी कम मुकम्मल बना रहे हो।
1: जब हमारी शादी हो जाएगी।
0: यही तो जानना चाहती हूँ कि कब तुम मुझसे शादी कर रहे हो।
1: तुम मुझसे शादी करोगी तो उस बेचारे दिलबर का क्या होगा, वो तो बेमौत मर जाएगा।
0: मरने दो, बहुत घमंडी है।
1: तुम पर तो बहुत लोग मरते हैं।
0: लेकिन मैं तो तुम पर मरती हूँ।
1: मुझे फांसी दिलवाओगी क्या? अच्छा मैं लाइब्रेरी चलता हूँ, बाय।
0: तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।
1: अरे बाबा वक्त आने पर दे दूंगा,
0: कहीं ना वक्त ना हो जाए।
2: हाय हैंडसम।
1: हाय हीरो।
2: अब मैं हीरो कहाँ रहा भाई, मैं तो जीरो बन गया हूँ।
1: यार जीरो की भी बड़ी अहमियत होती है, एक पर जीरो लगा दो तो दस बन जाए और दस पर जीरो लगा दो तो सौ बन जाए।
2: मैं हिंसे के दाएं नहीं बाएं वाला जीरो हूं। आजकल तुम्हारा और रोजी का रोमांस तो शबाब पर है।
1: रोमांस शबाब पर नहीं है, आताब शबाब पर है।
2: रोजी अभी यही नहीं तय कर पा रही है कि उसे कैसे लड़के से शादी करनी है।
1: ओह, इसीलिए वो अभी तक सिर्फ लड़कों को परखती फिर रही है।
2: अगर वो लड़कों को सिर्फ परखती फिरती तो कोई बात नहीं थी भाई, वो तो लड़कों को चखती फिर रही है।
1: क्यों?

0: तुम्हें भी चखा होगा?
1: मुझे तो सिर्फ चखा ही नहीं बल्कि चट कर गई है। जरा उससे बचकर रहना, वो सिर्फ जख्म लगाना जानती है, मरहम नहीं।
0: जबकि वो एक डॉक्टर की बेटी है।
1: भाई डॉक्टर तो नहीं है ना।
0: अच्छा दिलबर, मैं जरा लाइब्रेरी जा रहा हूं।
1: मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तुम और भी जाओगे कहां? बाय द वे, तुम्हारी मंसूब का क्या हुआ जो तुम्हारी खालाजात बहन से चल रही थी?
0: तरक्की पजीर है।
1: मुबारक हो, मुबारक हो।
0: घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे और रोजी के दरमियान से हट जाऊंगा।
1: वो तुम्हें हटने देगी जब ना?
0: देखते जाओ, वो खुद ब खुद हट जाएगी।
1: हाँ मैं भी देखूंगा।
2: आई हैंडसम।
0: हाय स्वीटी, कैसी हो?
2: जिंदा हूँ। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही थी।
0: ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम।
2: इतना गुरूर अच्छा नहीं आफाक।
0: तौबा तौबा, मैं और गुरूर, खुदा ना करे। मैं लाइब्रेरी में था और तुम्हें लाइब्रेरी से बैर है।
2: मुझे हर उस चीज से बैर है जो हमारे और तुम्हारे मिलने में हायल होती है।
0: ये भी अच्छी रही।
2: चलो कॉफी पीते हैं।
0: कहाँ?
2: कैंटीन में। और कहाँ?
0: वो भी कोई जगह है बैठने की?
2: फिर तुम जहाँ ले चलो।
0: हाँ आओ, उस दरख्त के नीचे बैठे, पेड़ की नाजुक डालियां हमें पंखे झलेंगी।
2: और मैं तुम्हारे कंधे पर सर रख के सो जाऊंगी।
0: अरे तो क्या मैं रात भर यहीं बैठा रहूंगा?
2: सुना है तुम्हारी शादी तुम्हारी खालाजात बहन से हो रही है।
0: बात चल रही है।
2: तुम्हें पसंद है क्या?
0: इसमें मेरी पसंद को कोई दखल नहीं है।
2: वो मुझसे

0: तुम इन्हें नहीं जानती?
1: वही तो नहीं जो अखबारों में पेशेंट गोइयां किया करते हैं?
0: हाँ वही।
1: तुम्हें उनसे क्या काम?
0: सुना है ये हाथ की लकीरें देखकर मुस्तकबिल की सही बातें बता देते हैं।
1: तो
0: ये डार्लिंग कि हम उनसे अपनी शादी के बारे में पूछेंगे।
1: गुड आइडिया, चलो चलते हैं।
0: आदाब शास्त्री जी।
1: आदाब।
2: आदाब आदाब, आइए पधारिए।
0: शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
2: फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
0: हम अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं।
2: जरा हाथ तो दिखाइए।
0: रोजी, पहले तुम हाथ दिखाओ।
1: नहीं, पहले तुम हाथ दिखाओ।
2: आप दोनों पति पत्नी हैं?
0: अभी तक तो नहीं है,
1: लेकिन जल्द ही हो जाएंगे।
2: बहुत खूब बहुत खूब, अपना हाथ दिखाइए।
1: पहले आप आपका हाथ देखिए प्लीज।
0: नो नहीं, लेडीज फर्स्ट।
2: अब तो हाथ बढ़ा ही दीजिए मिस।
1: ठीक है, लेकिन आप माजी के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, सिर्फ मुस्तकबिल, वो भी शादी के बारे में।
2: जैसे आपकी इच्छा। हाथ की रेखाएं तो बड़ी अच्छी है, आपका वैवाहिक जीवन तो बड़ा ही सुखमय रहेगा, संतान भी 4-5 होंगे।
0: हाँ, शादी के बाद तो लाइन लगती ही है, वैसे इनकी शादी कब तक होगी?
2: अगले बरस के अंत तक।
1: और कुछ पहले नहीं हो सकती?
2: रेखाएं मैं नहीं बनाता मिस, कुछ और पूछना है तो पूछिए।
1: जी कुछ नहीं।
2: आप अपना हाथ तो बढ़ाइए शर्मान।
0: एक के हाथ से काम नहीं चल जाएगा।
2: बिल्कुल नहीं चलेगा श्रीमान, बिल्कुल नहीं। लाइए आपका हाथ देखूं।
0: हाँ लीजिए।
2: मैडम कृपया आप जरा कमरे के बाहर बैठेंगी?
1: क्यों?
2: बस यूं ही, जरा इनसे खास बात बतानी है।
1: शादी ही से मुतल्लिक ना?
2: जी हाँ, विवाह के ही संबंध में।
1: तो फिर मैं भी सुनूंगी।
0: हाँ हाँ, इन्हें रहने दीजिए।
2: जैसी आप लोगों की इच्छा।
0: शादी से मुताल्लिक कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं।
2: हाथ की रेखाएं बताती हैं कि आपकी 2 शादी होगी।
0: नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
2: ऐसा ही है श्रीमान।
1: जरा गौर से देखिए शास्त्री जी।
2: बहुत गौर से देखने के बाद ही बताता हूँ मिस
1: रोजी।
2: हाँ हाँ, मिस रोजी।
1: आफाक, क्या तुम शादीशुदा हो?
0: बिल्कुल नहीं भाई, खांटी कुंवारा हूँ।
1: फिर 2 शादी की वजह?
0: ये शास्त्री जी ही बताएंगे।
2: आपके हाथ की रेखाओं के अनुसार आपकी पहली पत्नी विवाह के 1 बरस के अंदर देहांत कर जाएगी।
1: ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता
0: शास्त्री जी, रेखाएं बदल भी तो सकती हैं।
2: अभी इसकी संभावना नहीं है श्रीमान।
0: मैं इन रेखाओं को खुरच कर मिटा दूंगा।
2: इससे रेखाओं का प्रभाव तो समाप्त नहीं हो जाएगा श्रीमान।
0: मैं ये हाथ ही कटवा दूंगा।
2: यह आपके हाथ की रेखाएं नहीं बताती हैं।
0: काश मैं यहां आता ही नहीं।
1: ऐसा न कहो, अगर हम यहां नहीं आते तो हमारा मुस्तकबिल अंधेरे में ही रहता।
0: जान लेने के बाद तो अंधेरा और भी गहरा गया है।
1: चलो चलते हैं।
0: हाँ चलो। कितने पैसे हुए शास्त्री जी?
2: मात्र 200 रुपए।
0: ये लीजिए।
2: धन्यवाद।

0: क्या सोच रहे हो आफाक?
1: यही कि मुझे किसी से शादी करनी ही नहीं चाहिए।
0: क्यों?
1: मैं शादी करके किसी की मौत की वजह नहीं बनना चाहता।
0: इंसान अपनी मौत आप मरता है, दूसरा उसकी मौत की वजह नहीं बनता।
1: फिर भी मेरा जहीर गवारा नहीं करता।
0: नहीं, तुम्हें शादी करनी ही होगी और जरूर करनी होगी।
1: क्या अब भी तुम उससे शादी करने को तैयार हो?
0: मैं अपनी बात थोड़ी ही कर रही हूँ।
1: इसका मतलब है तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती?
0: नहीं नहीं, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, लेकिन एक साल बाद।
1: अभी क्यों नहीं?
0: बात दरअसल ये है आफाक कि मैं तुम्हारे साथ

0: एक लंबी उम्र गुजारना चाहती हूँ।
1: साफ क्यों नहीं कहती कि तुम इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती?
0: ये भी सही है।
1: वसल के चंद लम्हात हिजर की लंबी उम्र से कहीं बेहतर होते हैं।
0: बस एक ही साल की तो बात है, फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे।
1: मैंने तुम्हारा मतलब नहीं समझा।
0: तुम ऐसा करो, अपनी खालाजाद बहन से शादी कर लो। वो तो एक साल के बाद मर ही जाएगी, इसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी।
1: ओह, तो ये बात है।
0: तुम उसे पसंद भी नहीं करते, इस तरह वालदैन की बात भी रह जाएगी और हमारा काम भी बन जाएगा।
1: ख्याल तो अच्छा है।
0: शादी मुबारक हो आप।
1: शुक्रिया, तुम्हें भी मुबारक हो।
0: अपनी बेगम से नहीं मिलवाओगी?
1: मेरी होने वाली बेगम तो तुम ही हो।
0: मैं होने वाली की नहीं, जो हो चुकी उसकी बात कर रही हूँ।
1: ओ अच्छा अच्छा, जब चाहो तुम्हारा घर है।
0: बुलाओगी नहीं?
1: आज ही आ जाओ, मैं शाम की चाय पर इंतजार करूंगा।
0: ओके, बाय हैंडसम।
1: बाय स्वीटी। शबनम, शबनम कहाँ हो डार्लिंग?
2: क्यों इतने जोर जोर से डार्लिंग डार्लिंग पुकार रहे? और लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे?
1: अरे कुछ दिन तो डार्लिंग डार्लिंग पुकार लूं, फिर तो मुन्ने की अम्मा या मुन्नी की अम्मा कहकर पुकारना ही पड़ेगा। सुनो, आज मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त तुमसे मिलने आ रही है।
2: प्यारी दोस्त या सिर्फ प्यारी?
1: और अच्छे नाश्ते का इंतजाम कर लोगी?
2: ठीक है, और कुछ?
1: जरा अच्छा सा मेकअप भी कर लोगी?
2: मेकअप कर लेने से मैं खूबसूरत हो जाऊंगी।
1: ये भी तुमने सही कहा, भला शबनम को मेकअप की क्या जरूरत? वो तो जिस चीज पर गिरती है उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देती है।
2: मैं गिरने वाली शबनम नहीं हूँ।
1: हाँ भाई, तुम तो गिराने वाली शबनम हो।
2: अब तक कितनों को गिराया है मैंने?
1: क्या पता, जिसने भी तुम्हें देखा होगा वही दिल थाम कर उलट गया होगा।
2: लेकिन तुम तो अभी तक सीधे हो।
1: कौन?
0: मैं रोजी।
1: आओ भाई अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा ही राह देख रहा था।
0: शुक्रिया।
1: शबनम, ओ शबनम, आओ देखो कौन आया है।
2: कौन आया है?
1: भाई जिनका इंतजार था।
2: अभी आई।
0: आवाज तो बड़ी मीठी है।
1: बस आवाज ही मीठी है।
2: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: इनसे मिलो, यही मेरी सबसे प्यारी दोस्त रोजी हैं, और ये मेरी बेगम शबनम।
2: बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आप वाकई बड़ी प्यारी हैं।
0: शुक्रिया, लेकिन आपके हुस्न ने तो शबनम की तबना की है।
2: और आपके हुस्न में शोले की तमाजत।
0: आप तो बड़ी प्यारी बातें करती हैं।
2: जब मुकाबिल कोई प्यारा इंसान हो तो प्यारी बातें ही निकल जाती है। आप दोनों बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ।
0: पहले ये मामूली सा तोहफा तो कबूल कीजिए, शादी मुबारक हो।
2: इस तोहफे की क्या जरूरत थी, आपकी दुआ ही काफी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अरे भाई जरा इसे खोल कर तो देखो।
2: प्यारे इंसान का तोहफा भी प्यारा ही होगा।
0: ऐसी कोई बात नहीं।
1: हाथ कंगन को आरसी क्या?
2: आप खुद ही खोल कर देखिए ना।
1: लाओ। अरे वाह, नई शादीशुदा जोड़े की मूर्ति, बहुत खूब बहुत खूब।
2: मैंने गलत नहीं कहा था?
1: वाह वाह, इसके नीचे जो शेर लिखा है इसने तो इस मूर्ति की अहमियत और भी बढ़ा दी है।
2: कौन सा शेर?
1: बुत परस्ती गुनाह है लेकिन फन परस्ती कोई गुनाह नहीं।
2: बुत परस्ती गुनाह है लेकिन फन परस्ती कोई गुनाह नहीं। वाह वाह, वाकई बहुत अच्छा शेर है। सिर्फ इस शेर की वजह से इस तोहफे के कदर कीमत में इजाफा हो गया है।
1: ये तुम्हारा शेर है रोजी?
0: अरे नहीं, मैं शायरी कहाँ करती हूँ।

0: अच्छा, अब मैं चाय लाने जा रही हूँ।
1: तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था आफा?
2: मैं और झूठ? कैसी बातें कर रही हूँ?
1: और नहीं तो क्या, किस कतर हसीन है तुम्हारी शबनम।
2: तुमसे ज्यादा तो नहीं?
1: नहीं, मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है।
2: मेरी नजर में तो तुमसे ज्यादा कोई खूबसूरत है ही नहीं।
1: मैं सब समझती हूँ।
0: क्या समझती है रोजी बहन?
1: अरे कुछ भी नहीं, बस यूं ही।
2: भाई ये तुम्हारे हुस्न की तारीफ कर रही हैं।
0: मेरा तो हुस्न से दूर का भी वास्ता नहीं है। हाँ, रोजी बहन के अंग अंग से हुस्न टपक रहा है।
1: बिल्कुल गलत। अगर मेरे अंग अंग से हुस्न टपकता होता तो मेरे पैरों के पास की जमीन गीली नहीं हो जाती।
0: नाश्ता आपके दस्ते मुबारक का मुंतजिर है।
2: बाप रे, मुझे तो तुम लोगों की गुफ्तगु समझने के लिए लोगत लेकर बैठना पड़ेगा।
1: वाह, क्या शानदार नाश्ता बनाया है आपने।
0: शायद इसीलिए आपने कुछ खाया ही नहीं।
1: पेट तो आपकी बातों ही से भर चुका था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ।
2: फिर आना?
1: एक बार तो आना ही पड़ेगा।
0: क्या मतलब?
2: अरे ये मजाक कर रही हैं।
1: जब आपके यहाँ नया मेहमान आएगा।
0: अभी तो एक नई मेहमान आप ही आई हुई है।

0: कैसी तबीयत है शबनम की?
1: अभी तक खतरे से बाहर नहीं।
0: और वो डॉक्टर ने क्या कहा?
1: खून की बहुत कमी है, बच्चा भी पेट में उलट गया है।
0: यानी अब हमारी किस्मत पलटने वाली है।
1: क्या कहा? मैंने कुछ समझा नहीं।
0: जल्दी समझ जाओगी।
1: अभी मैं बहुत परेशान हूँ रोजी।
0: चंद ही दिनों की परेशानी है, फिर तो तुम्हारी चांदनी ही चांदनी होगी।
1: खुदा मालूम चांदनी होगी या अंधेरी रात, मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आता।
0: क्या वाकई कुछ नजर नहीं आता?
1: हाँ, सिर्फ दिन में तारे नजर आते हैं।
0: शबनम को जैसे ही कुछ हो जाए मुझे फौरन खबर करना।

0: ये आपकी स्वीटी कौन है जनाब?
1: तुम उससे मिल चुकी हो।
0: कौन? वही रोजी?
1: हाँ वही।
0: आपको बहुत पसंद है?
1: पसंद थी।
0: झूठ मत बोलिए, आप अब भी उसे पसंद करते हैं?
1: मेरी बात का यकीन करो।
0: जब आप उसे पसंद करते थे तो उससे शादी क्यों नहीं की?
1: एक शास्त्री जी ने मुझे रोजी की मौजूदगी में मेरा हाथ देखकर बताया कि मेरी पहली बीवी शादी के एक साल के अंदर इंतकाल कर जाएगी।
0: तो आपने इसलिए मुझसे शादी की कि एक साल के अंदर मेरे मर जाने के बाद आप दोनों शादी रचा लेंगे?
1: मैं नहीं, सिर्फ रोजी।
0: रोजी क्या दीवार से शादी करेगी? मैं सब समझती हूँ।
1: अरे बाबा, अब रो क्यों रही हो? एक साल तो गुजर चुका है।
0: और मैं अब तक नहीं मरी, इसी बात का दुख है ना आप लोगों को? मेरा गला क्यों नहीं घोट देते? या फिर दवा में ही जहर मिलाकर पिला दीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
1: हाँ, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा।

0: हेलो
1: हेलो स्वीटी, कहो कैसी हो?
0: हाय हैंडसम, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे इंतजार में अब तक जिंदा हूँ।
1: अब इंतजार की घड़ियां जल्द ही खत्म होने वाली हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ रोजी, आकर शबनम का आखिरी दीदार कर लो।
0: अल्लाह का शुक्र है, आखिर पुतिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार बरसों से था। अभी आई हैंडसम।
2: आप रोजी को मुझे मारने के लिए बुला रहे हैं? अब कब में ही आराम मुझे मिलेगा? मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेंगे?
1: कहो।
2: अगर मारना ही है तो आप अपने हाथों से मारिएगा, मैं आपके हाथों से मरना चाहती हूँ।
1: बस, और कोई ख्वाहिश हो तो बता दो।
2: हाँ, मेरे मुन्ना को मेरी कमी महसूस

0: होने दीजिएगा।
1: कौन? अभी आता हूं। हाय स्वीटी, आओ आओ।
2: शबनम खत्म हो गई क्या?
1: नहीं, हमें उसे खत्म करना है।
2: कैसे?
1: तुम उसका गला घोंटकर मार डालोगी।
2: नहीं नहीं, उसे एक काम नहीं होगा।
1: तो ठीक है, जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहो, शबनम अभी मरने वाली नहीं है।
2: ऐसा न कहो, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती।
1: फिर मैं क्या करूं?
2: उसकी दवा में जहर क्यों नहीं मिला देते?
1: अब इस वक्त जहर कहां से लाऊं?
2: रात में उसकी दवा में जहर मिला के पिला देना, वो सोई की सोई रह जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा।
1: नहीं, नहीं। मैं इस कश्मकश को अभी इसी वक्त खत्म करना चाहता हूं।
2: फिर तो तुम्हें शबनम का गला घोटना होगा।
1: ठीक है, आओ शबनम के कमरे में चलते हैं, तुम मेरी मदद करना।
2: चलो।
0: आप लोग क्यों आए हैं?
1: रोजी तुम्हें देखने आई है।
0: मैं सब समझती हूँ, आप लोग मुझे मारने आए हैं।
1: तुम डरो नहीं, तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होगी। मुझे अफसोस है शबनम, पर क्या करूं, दो में से किसी एक का गला तो घोटना ही पड़ेगा, या तो मोहब्बत का या बीवी का।
0: मुझे खुशी है कि मैं आपकी खुशी के लिए आप ही के हाथों मर रही हूं। आप
1: अरे शबनम, शबनम, अरे आंखें खोलो शबनम, मेरी प्यारी शबनम, ये तो बेहोश हो गई।
2: अरे यही अच्छा मौका है, गला घोट दो उसका।
1: खबरदार, अगर शबनम मर गई तो मैं तुम्हारा भी गला घोट दूंगा।
2: क्या कहा?
1: हाँ, जल्दी से पानी लाओ।
2: पानी टेबल पर है, लो।
0: मैं कहाँ हूँ?
1: मेरी बहू में।
0: आप ही मर गए?
1: नहीं शबनम, हम दोनों जिंदा हैं।
0: आपने मुझे नहीं मारा?
1: पागल हुई हो? कोई अपनी जिंदगी को मारता है? तुम तो मेरी जिंदगी हो शबनम,
0: मेरे अच्छे अफा।
1: ना शबनम ना, अब हंस दो, हंस दो, शाबाश शाबाश।
0: मुझे गुदगुदी लग रही है।
1: रुको रोजी,
3: बंदगी में
2: अब मेरा यहाँ क्या
1: है? रोजी,
0: हाँ रोजी बहन, रुक जाइए,
1: आओ बैठो रोजी,
3: हम तो
1: तुमसे कुछ कहना है।
2: अब कहने को रखा ही क्या है अफा,
1: अभी तो हकीकत बयान करनी है।
3: देखते आ रहे हैं।
1: मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था
3: और हमेशा ही,
1: और तुमसे शादी भी करना चाहता था,
3: काम है,
1: लेकिन तुमने शास्त्र की बातों में आकर शादी करने से इनकार कर दिया। मेरी शादी शबनम से हो गई।
0: लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? मैं तो मरने के लिए तैयार थी।
1: तुमसे शादी के बाद शबनम, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ जिस्मों का नहीं बल्कि रूहों का बन चुका है। हाँ रोजी, अगर मैं जिस्म हूं तो शबनम मेरी रूह है, और शबनम जिस्म है तो मैं उसकी रूह हूं।
0: क्या सच?
1: हाँ शबनम, अगर तुम मर जाती तो मेरे जिस्म से रूह निकल जाती और मैं भी मर जाता।
2: तुम शबनम को इतना चाहने लगे हो?
1: हाँ रोसी, हर शौहर अपनी बीवी को इतना ही चाहता है। तुम भी शादी करके देख लो,
2: अब मैं
1: तुम्हारा शौहर भी इससे कम नहीं चाहेगा।
2: अब मैं किससे शादी करूंगी?
4: मोहब्बत है अगर इल्जाम तो इल्जाम लिख लेना, तुम अपने चाहने वालों में मेरा नाम लिख लेना।
1: लो, तुम्हारा दिल भर आ गया।

दोस्तों, पानी का सही इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि जब कभी भी पानी का इस्तेमाल के लिए आप नल या टैप को खोलें तो उसे हल्का खोलें ताकि पानी ज़ाया ना होने पाए। शावर की बजाय बाल्टी और मग का इस्तेमाल करिए ताकि बड़ी मकदार में पानी की बचत हो सके। घरेलू काम जैसे बर्तन कपड़े की साफ सफाई करते वक्त नल को बिला वजह खुला ना छोड़ें। जो घर के किसी नल और पाइप कहीं से लीक हो रही है वो तो उसे जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश की जाए ताकि एक कतरा पानी भी ज़ाया ना होने पाए। पानी का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि कहीं भी और कभी भी पानी ज़ाया ना हो, ख्वाह वह घरों की सफाई मरम्मत या बाग बगीचे में पानी डालने का ही क्यों ना काम हो। जितनी ज़रूरत हो पानी के लिए उतना ही पानी लीजिए। गिलास भरकर पानी लेना और उसे ज़ाया करना ये गलत आदत में शामिल है। इससे बचना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। इसके साथ ही सामिन हजरात, आज के अंजुमन यही खत्म।

इस गजल के साथ ही सामीन हजरात आज की अंजुमनी ही खत्म पजीर होती है। शगुफ्ता को दीजिए इजाजत, रखिए सबका ख्याल और हम सबको रखिए दुआओं में याद। खुदा हाफिज़।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज, साथ ही न्यूज ऑन AIR इस ऐप पर। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। आकाशवाणी दरभंगा से ये समय फिल्म संगीत का। आइए फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का ये पहला गाना आपको सुनवाते हैं। SP बालासुब्रमण्यम का गाया हुआ, फिल्म का नाम है सागर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। प्यार भरे फिल्मी गीतों का हमारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद अजीज का गाया ये प्यारा सा गीत फिल्म नगीना में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम

0: फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: Story, but everybody will sing with me.
2: Okay.
1: Ready? Come on. One, two, three, four.

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इस छोटे से अंतराल से पहले हम आपको सुनवा रहे थे इस जानकी और मोहम्मद अजीज का गाया वो प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म आखिरी रास्ता से। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दरभंगा। प्यार भरे फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। एक बार फिर आपके साथ है आपका ये रेडियो हम सफर। अपने सुनने वालों को हम याद दिला दे आज अपनी पसंद की चिट्ठियों पर आधारित फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम।

क्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे दोपहर 1:15 से। लीजिए श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज का गाया हुआ। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम खुदा गवाह।

खुदा गवाह फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे थे, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति का गाया हुआ। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आज की हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। श्रोताओं, आज है शनिवार और अब समय हो चला है भक्ति संगीत का।

राम से बड़ा राम का नाम, भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर, और आप सुन रहे हैं आज की हमारी पहली सभा। श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग यमन में बांसुरी वादन पंडित राजेंद्र प्रसन्ना के द्वारा।

अभी आप सुन रहे थे हमारा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। राजेंद्र प्रसन्ना के द्वारा आप सुन रहे थे बांसुरी वादन राग यमन और राग मारवा में। अब वक्त हो रहा है हमारे मधुर फिल्म संगीत का, तो आइए आनंद लेते हैं नए पुराने फिल्म संगीत का।

फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बाजीगर से विनोद राठौर और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

फिल्म जाल का ये गीत अभी आप सुन रहे थे विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म निगाहें से लिए गए इस गीत को अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में।

हंस राज हंस और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म कच्चे धागे का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बरसात से, सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

फिल्म राजा हिंदुस्तानी का एक गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी सपना अवस्थी, अलका याग्निक और उदित नारायण की। तो श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। और अब वक्त हो रहा है हमारे श्रोता बहनों के कार्यक्रम नारी संसार का। तो चलिए मिलते हैं कार्यक्रम नारी संसार में आपकी रेडियो सखी श्वेता से।

नारी संसार सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज शनिवार है और हमेशा की तरह आज भी हम विभिन्न विषयों पर चर्चा तो करेंगे ही, चर्चा के साथ साथ आपको सुनवाएंगे कुछ नए पुराने भूले बिसरे गीत और हर दिन कुछ खास में होगा कुछ खास आपके लिए। बहनों, जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं तो केवल उनका जीवन ही नहीं बदलता बल्कि पूरे परिवार और समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। स्वरोजगार महिलाओं को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और नए अवसर प्रदान करता है। तो चलिए बात करते हैं इसी पर। विषय है स्वरोजगार योजनाओं के साथ बढ़ती नारी शक्ति। बहनों, आज की महिला केवल परिवार की जिम्मेदारियां निभाने तक सीमित नहीं है, वो अपने ज्ञान कौशल और आत्मविश्वास के बल पर रोजगार सृजित कर रही है, दूसरों को रोजगार दे रही है और देश की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे रही है। भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और उद्यम स्थापित करने के अवसर उपलब्ध कराता है। इसी क्रम में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना जमानत के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अनेक महिलाओं ने इस योजना का लाभ लेकर सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, स्टेशनरी और अन्य छोटे व्यवसाय सफलतापूर्वक शुरू किए हैं। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को बचत, बैंक ऋण, प्रशिक्षण और सामूहिक

उद्यमों से जोड़ा जाता है। आज देश के अनेक गांवों में महिलाएं मसाले, अचार, पापड़, अगरबत्ती, मशरूम, डेयरी, मधुमक्खी पालन और हस्तशिल्प जैसे कार्यों से अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। पारंपरिक कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी महत्वपूर्ण है। इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को कौशल उन्नयन, आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता तथा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इससे पारंपरिक शिल्प से जुड़ी महिला कारीगरों को भी अपने हुनर को नए बाजार तक पहुंचाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के इच्छुक पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा कौशल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, खाद संस्करण, हस्तशिल्प, पैकेजिंग और अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वो अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार स्वरोजगार शुरू कर सके। बहनों, किसी भी योजना का लाभ तभी मिलता है जब हमें उसकी सही जानकारी प्राप्त हो। इसलिए यदि आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं तो निकटतम बैंक, जिला उद्योग केंद्र, स्वयं सहायता समूह, आजीविका मिशन कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें और पात्रता के अनुसार आवेदन करें। याद रखिए, छोटा व्यवसाय भी बड़े सपनों की शुरुआत बन सकता है। तो चलिए बहनों, बातें आगे और भी होंगी, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में इस प्यारे से गीत के साथ आइए आपको सुनवाते हैं एक छोटी मुलाकात के अंतर्गत वार्ता। विषय है महिलाओं के लिए रोजगार के आसान टिप्स। तो चलिए सुनते हैं इस वार्ता को मेरी खुद की आवाज में। आज की टॉपिक भी यही है, तो जानते हैं कि कौन से ऐसे टिप्स को हम लोग ले सकते हैं जिसके लिए रोजगार के बहुआयामी रास्ते खुले। नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महिलाओं के लिए स्वरोजगार के कुछ आसान और उपयोगी टिप्स। मैं हूं आपके साथ आपकी श्वेता। तो चलिए बात करते हैं इसी पर। यदि आप घर बैठे अपनी आय बढ़ाना चाहती हैं या अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रही हैं, तो ये सुझाव आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सबसे पहले तो अपनी रुचि और हुनर को पहचानिए। ये तय करें कि आप किस काम में अच्छी हैं, जैसे कि सिलाई, पढ़ाई, खाना बनाना, ब्यूटी पार्लर, हस्तशिल्प, ऑनलाइन बिक्री या फिर कोई अन्य कला। जिस काम में रुचि होगी, सफलता उसी में मिलने की संभावना अधिक होगी। इसके बाद छोटी शुरुआत करें, बड़े निवेश का इंतजार बिल्कुल भी ना करें। कम पूंजी से शुरुआत करें और जैसे जैसे अनुभव और ग्राहक बढ़े, अपने काम का विस्तार करें। आप अपने उत्पाद या सेवा की अच्छी गुणवत्ता ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी और ग्राहक दोबारा भी आपके पास आएंगे, इसलिए गुणवत्ता से कभी भी समझौता ना करें। कितनी लागत लगी, कितनी बिक्री हुई और कितना लाभ हुआ, इसका नियमित रिकॉर्ड रखें। इससे व्यवसाय को सही दिशा मिलती है, इसलिए हमेशा हिसाब किताब लिखने की आदत डालें। नई चीजों को सीखते रहें, समय समय पर प्रशिक्षण लें, नए डिजाइन, नई तकनीक और बाजार की मांग को समझें। सीखना कभी भी बंद ना करें। डिजिटल तकनीक को अपनाइए, मोबाइल से डिजिटल भुगतान लेना, सोशल मीडिया पर अपने उत्पाद की जानकारी देना और ऑनलाइन ग्राहकों से जुड़ना आज के समय की सबसे बड़ी ताकत है और इस सभी के साथ आत्मविश्वास बनाकर रखिए। शुरुआत में कई बार कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन

0: धैर्य और निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो श्रोता बहनों, याद रखिए, स्वरोजगार केवल कमाई का साधन नहीं बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का मार्ग भी है। आज उठाया गया आपका एक छोटा कदम कल आपकी बड़ी सफलता की कहानी बन सकता है। तो चलिए, इसी संदेश के साथ लेती हूँ मैं विदा। मिलेंगे किसी दूसरे अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।
1: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
2: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनाने का। 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

बहनों, हमारी अगली चर्चा का विषय है मानव अधिकार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका। मानव अधिकार का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार। वही सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर व्यक्ति को समान अवसर, समान अधिकार और समान न्याय मिलना। इन दोनों उद्देश्यों को साकार करने में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज महिलाएं केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, बल्कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की आवाज भी बन रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल संरक्षण, महिला सुरक्षा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, लैंगिक समानता और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में उनका योगदान उल्लेखनीय है। गांवों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक बदलाव की भी वाहक बनी हैं। वो बेटियों की शिक्षा, स्वच्छता, पोषण और महिलाओं के अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक कर रही हैं। बहनों, सामाजिक न्याय केवल सरकार या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का दायित्व है कि घर और समाज में महिलाओं और पुरुषों को समान सम्मान दें, भेदभाव का विरोध करें और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का आदर करें। तो चलिए बहनों, फिर से एक बार आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं फिल्म एक दूजे के लिए, फिल्म से ये गीत।

बहनों, अब वक्त हो चला है हर दिन कुछ खास का। इसमें हम जानेंगे कुछ टिप्स वजन कम करने के लिए। हम महिलाओं के लिए वजन का बढ़ना सबसे बड़ी समस्या होती है। एक तो बीमारियों का डर हो जाता है और उससे भी ज्यादा बिडौल शरीर सौंदर्य को प्रभावित करती है। मैंने वजन कम करने के लिए अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन जैसे कि दाल, अंडे, पनीर, इन सभी को जरूर से शामिल करें। तली भुनी चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स और चीनी से पूरी तरह से परहेज करें। रोजाना 30 से 40 मिनट तक जरूर टहलें और प्राणायाम करें। इसके साथ ही दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। अपने भोजन में फाइबर युक्त चीजें शामिल करें जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहे। सुबह कोशिश करें कि आप गुनगुने पानी का सेवन करें और उसमें थोड़ा सा शहद और नींबू भी डालकर पी सकती हैं। रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। मीठे का सेवन कम कर दें। इसके साथ ही 1 चम्मच जीरे को रात भर 1 गिलास पानी में भिगोकर रखें और सुबह इसे छानकर पी लें। यह फैट को घटाने का काफी कारगर एक रास्ता है। और इसके अलावा आप

कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके उतना टहलें और घर के बने हुए कम घी तेल के भोजन को आप खाएं। मैंने कोई भी ड्रिंक जादुई तरीके से अकेले वजन कम नहीं कर सकता। इसके साथ कैलोरी को नियंत्रित करना, नियंत्रित डाइट लेना और रोजाना कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी होता है। तो बहनों, आपके पास भी अगर किसी तरह के सुझाव हैं कार्यक्रम संबंधी, तो आप अपने पत्रों के माध्यम से हमें लिखकर भेज सकती हैं। हमारा पता है कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी दरभंगा। आप अपने संदेश हमें ईमेल के माध्यम से भी भेज सकती हैं। हमारा ईमेल का पता है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो चलिए बहनों, बातें बहुत हुई लेकिन बातों के साथ साथ कुछ रिलैक्स होना भी जरूरी होता है। इसके लिए लेकर चलते हैं आपको एक बार फिर से मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

कभी अलविदा ना कहना। जी हाँ श्रोता बहनों, किशोर कुमार के इस प्यारे से गीत में यही संदेश छुपा है कि कभी हम लोग एक दूसरे को अलविदा ना कहें और ये खूबसूरत साथ यूं ही बना रहे। तो दीजिए इसी गीत के साथ विदा श्रोता को, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार बस कुछ ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं, बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नीति को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में 3रे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला

0: मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। अब से कुछ ही देर में दोपहर के 1:15 पर आप फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद सुनेंगे। दोपहर के 2 बजे हमारे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रस्तुत किया जाएगा और दोपहर के 2:05 पर हमारे पटना केंद्र से ही इलाकाई खबरों का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर के 2:10 पर हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से आप सुनेंगे रोजगार संबंधित सूचना और दोपहर के 2:15 पर देश दुनिया की खबरें आप सुन सकते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित दोपहर समाचार में।

दोपहर के 2:30 पर आप फिर से एक बार आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। और दोपहर के 3 बजे आप सुनेंगे मराठी गीत अजीत कड़कड़े की आवाज में।

हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम में शाम 5 बजे हम फिर से हाजिर होंगे कार्यक्रमों के साथ, और हमारा कार्यक्रम होगा युववाणी। आज चर्चा का विषय होगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। शाम 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत, और शाम 6:30 पर हमारे ग्रामीण श्रोता भाइयों का कार्यक्रम प्रसारण किया जाएगा गाम घर। चर्चा का विषय होगा मिथिलांचल के प्रमुख दर्शनीय स्थल। शाम 7 बजे हमारे किसान भाइयों के कार्यक्रम का प्रसारण होगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। आज चर्चा का विषय है अच्छी उपज के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक।

रात्रि के 8 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान और रात्रि के 8:15 पर विज्ञान संबंधित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं।

रात्रि के 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित चित्र भारती का प्रसारण आप सुनेंगे और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि के 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से ही प्रसारण किया जाएगा।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक कई क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स छन छन केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। अब वक्त हो रहा है हमारे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो चलिए अब आनंद लेते हैं इस सुरीले सफर का आपके रेडियो दोस्त चंदना के साथ।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए हमारे केंद्र से अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। हर शनिवार की तरह ढेरों पसंदीदा गीतों की चिट्ठियां मैं लेकर आ गई हूं। हर शनिवार हजारों हजारों की संख्या में हमारे श्रोता भाई बहन अपने पसंदीदा गीतों की फरमाइशें यहां भेजते हैं और मैं आपको सुनवाती हूं इस कार्यक्रम में आपके पसंदीदा गीतों को। दिल से चाहती हूं कि हर पत्र को शामिल कर सकूं, मगर वक्त की पाबंदी के कारण वजह से इस ख्वाहिश को पूरी मैं नहीं कर पाती हूं। तो चलिए श्रोताओं, आज मौसम बहुत ही सुहाना है और इस मौसम में घर के अंदर रह के रेडियो पर अपने पसंदीदा गीतों को सुनने में एक अलग ही मजा आनंद आता है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस पहली पसंद के साथ, जो कि आई है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर विरक, जैतक विरक और मिक्का विरक। बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 3 से संतोष कुमार मुखिया, रानी मीता राज, गरिमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार अमरेंद्र और वंश प्रसाद। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरव शर्मा। साथ ही साथ आदर्श नगर मलोट पंजाब से एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना, परी गणेश मराठा, कार्तिक भाव मराठा, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता खर्चे, नारायण भाव खर्चे। और साथ ही साथ नरहन स्टेट फुटानी चौक से भाई फटफटिया झा, फुलेश्वरी देवी, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या और ललन मिश्रा। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म गोपी किशन से लिए गए इस गीत को।

आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बरसात से अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में। इस गीत को सुनना चाह रहे हैं झंझारपुर लंगड़ा चौक से हरेराम पासवान, जय शकर पासवान, काजल कुमारी और रानी कुमारी। इसी गीत को सुनना पसंद किया है बिजासन माता रोड भोला नाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, कुमारी देवी का, कार्तिक भाऊ, ललिता नारायण खर्चे, सोनू वाणी, मोनू वाणी। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं सेक्टर मोहाली से, सेक्टर 67 मोहाली से, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमरदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। इसी गीत को सुनना पसंद किया है पुणे से पंकज बोर्ते से आर्या, प्रियंका, बीटी बोर्ते और

बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म बरसात से अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सुरीले सफर में और बारिश की बूंदों के साथ। तो चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म संग्राम से कुमार शानू और प्रिय सुनंदा की आवाज में। इस गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम शाबिर राही, मेराज जहां। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विकी, स्वाति प्रयाग चौधरी। और साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद किया है जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना राज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख, मोहम्मद वकील राही और चांदनी नाज। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म संग्राम से।

ये फिल्म है फिल्म पाप की दुनिया, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। और इस गीत को सुनना पसंद किया था नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, अरीज़ वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख, चीना शेख, कुआत बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, नूर महल महसूल से हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अहिबा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजबिल बाबू। साथ ही साथ इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे थे नामट टोल भगवतीपुर बिहार से नूतन सहनी, त्रिपुरारी सहनी, कंचन बबीता, कोमल, नव्या, सुधा सहनी, विभा ज्योति, पार्वती सहनी और संतोष कुमार सहनी, त्रिपुरारी सहनी, रासो देवी, रिंकू देवी, रिचू कुमारी, निशु कुमारी और एस के सहनी। इसी गीत को सुनना पसंद किए थे ग्राम महेशवाड़ी तहसील मलकालपुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोटकर। और इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे थे मोहम्मद कलीम दीवाना, मोहम्मद दानिश बाबू, मोहम्मद अमन बाबू, मोहम्मद सरफराज, सोनी बेगम, खुशी परवीन, शास्त्र परवीन, डॉली परवीन, मेहरा परवीन। और ये हैं लाल पोखर नाका नंबर 5 दरभंगा से। चलिए आगे

सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म जिंदगी एक जुआ से, और इस गीत को सुनना चाह रहे हैं इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वली वल्ला नूरजहां, बुलंदशहर से बद्रुवली अंसारी, फर्जुवली अंसारी, फर्जीवली अंसारी, लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत अदीबा कौर, बठिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, और दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, और इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं। ये हैं विनय रंजन, नेहा रंजन, बेला गार्डन, वार्ड नंबर 3 से दरभंगा बिहार से। तो चलिए सुनते हैं ये गीत फिल्म जिंदगी एक जुआ।

फिल्म माँ से ही इस गीत को लिया जा रहा है और इस गीत को सुनना चाह रहे हैं ग्राम पंचायत बैठना से पलकरण अंजनी वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चौटदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहाद्र वर्मा, आयुषी और कृति वर्मा। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं मेरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंगवाकर राही, सरिता गंगवाकर, एकांश गंगवाकर, आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से शैलेश, श्रीमती वैशाली गंगवाकर, श्वेता सुमित गंगवाकर और कुमारी ध्वनि उर्फ परी। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं गौरव, विवेक, गौतम, आरव, शाश्वत, गोल्डी, अंशु और परिवार के सभी सदस्य। ये हैं वार्ड पुरानी बाजार वार्ड नंबर 9 से झंझारपुर से। और इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं कल और आइए ये गीत सुनना पसंद किया है ताजपुर मोरबा से भाईकारी रायकारी, श्रीमती मीनाकारी, पुंज राजारे, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिकी, रिंकी, नीतू, माधुर, फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सत्ता से जयंत कुमार बैरागी। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म माँ से कुमार शानू की आवाज।

तो श्रोताओं, वक्त की पाबंदी, जैसा मैंने पहले ही कहा था, उस पाबंदी की वजह से मुझे अब घड़ी की सुई ये कह रही है कि अब अपने श्रोताओं से, अपने बंधुओं से तुम इजाजत मांग लो। तो इजाजत मांगने से पहले आप सभी श्रोताओं को दिल से धन्यवाद कि आप ढेरों पत्र हमें भेजते हैं और अपने पसंदीदा गीतों को सुनवाने के लिए। इससे हमारा और आपका एक रिश्ता गहरा बनता गया है और हमें आप यूं ही याद करते हैं। तो और याद करने के लिए आप हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्रीय निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड 8460004। तो इसी गीत के साथ दीजिए अपनी इस रेडियो हमसफर चंदना को इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन, इसी समय, इसी रेडियो सेट पर फिर से हाजिर हो जाऊंगी आपके ढेरों पसंदीदा गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, शबा खैर।

0: से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 के तहत पटना जॉय राइड का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम अपराह्न 3 बजे स्टेट हैंगर में आयोजित होगा। वहीं मुख्यमंत्री पटना में बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। समारोह में विश्वविद्यालय के सफल विद्यार्थियों को उपाधियां और टॉपर छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने सभी विधायकों और विधान पार्षदों को पत्र लिखकर विकास कार्यों में तेजी लाने की अपील की है। श्री कुशवाहा ने विधानमंडल सदस्यों से क्षेत्रीय विकास योजनाओं के तहत अपने अपने जिले की योजनाओं को लेकर अनुशंसा प्रस्ताव भेजने को कहा है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और सभी जिलों को राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि सदस्यों से अनुशंसा शीघ्र प्राप्त होने पर योजनाओं का क्रियान्वयन भी जल्द हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना पहुंचे। श्री नवीन पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष मंडल अध्यक्षों और पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। गौरतलब है कि उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर बढ़ गया है। भाजपा द्वारा जारी स्टार प्रचारकों की सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन का नाम सबसे ऊपर है। राज्य सरकार ने दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर मोटर वाहन कर में वृद्धि लागू कर दी है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। नई व्यवस्था के तहत 1,00,000 रुपए तक की कीमत वाले दो पहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए 9% और 1,00,000 रुपए से अधिक कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर 10% कर लिया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार दोपहिया वाहनों पर कर की दर में 1% की वृद्धि की गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को गलत बताया है जिनमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निवेश प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इन दावों में कहा गया है कि 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर नागरिकों को हर महीने 25,00,000 रुपए की कमाई की गारंटी दी जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये वीडियो फर्जी है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज औरंगाबाद, कैमूर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास और सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश हो सकती है। राज्य के अन्य जिलों में भी तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और बारिश का पूर्वानुमान है। पश्चिम चंपारण जिला समाहरणालय में आज ऊर्जा विभाग की बैठक में जिले में 3 नए ग्रिड की स्थापना किए जाने को मंजूरी मिली है। बैठक में स्थानीय सांसद संजय जायसवाल और राज्य के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंदकिशोर राम समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। दरभंगा जिले के फेकला थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलिया पोखर के पास सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। भागलपुर जिले में मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन पर गनगनिया रेलवे स्टेशन के पास एक हाईवा और पिकअप वैन की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर जिले के बिहिया नगर परिषद क्षेत्र में 4 दीवारी गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय दोनों बच्चे दीवार के पास खेल रहे थे। बेगूसराय जिले के विभिन्न स्कूलों में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अब तक 1,00,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। मुंगेर जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर टीबी की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार इस दौरान संभावित लक्षणों वाले 30 लोगों की पहचान की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक

0: हुआ, अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला सम्राट चौधरी आज पटना में वजीर आला बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विस मंसूबा 2026 के तहत पटना जॉय राइड का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम से पहर 3 बजे स्टेट हैंगर पटना में मुनाकिद होगा। वहीं वजीर आला आज पटना में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के 3rd कन्वोकेशन प्रोग्राम में शामिल होंगे। प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के कामयाब तलबा को सनद और टॉपर तलबा व तालबात को गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। वजीर तरक्यात व मनसूबा भगवान सिंह कुशवाहा ने सभी एयरकान असम्बली और एयरकान कानून साज कौंसिल को मकतूब लिखकर तरक्याती कामों में तेजी लाने की अपील की है। जनाब कुशवाहा ने एयरकान कानून साजिया से इलाकाई तरक्याती मनसूबों के तहत अपने अपने जिला के मनसूबों के मद्देनजर सफारिशी तजवीज भेजने को कहा है। वजीर ने कहा कि वजीर आला सम्राट चौधरी की क्यादत में रियासत में तरक्याती काम तेजी से किए जा रहे हैं और सभी अजला को रकम अलॉट कराई गई है। उन्होंने कहा कि इराकीन से सिफारिश जल्द मौसूल होने पर मंसूबों का निफाज भी जल्द हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन आज पटना पहुंचे। जनाब नवीन पार्टी के बूथ सतह के कारकुनान के साथ मीटिंग करके बांकीपुर असेंबली जिमनी इंतखाब के पेश नजर पॉलिसियों पर गौर खोज करेंगे। भाजपा सदर डिविजनल सुदूर और पार्टी के सीनियर ओहदेदारान के साथ भी मीटिंग करेंगे। गौरतलब है कि जिमनी इंतखाब के पेश नजर तशहीर बढ़ गई है। भाजपा के जरिए जारी स्टार कंपेनरों की फहरिस्त में कौमी सदर जनाब नवीन का नाम सरे फहरिस्त है। रियासती हुकूमत ने दो पहिया और तीन पहिया गाड़ियों पर मोटर गाड़ी टैक्स में इजाफा नाफिज कर दिया है। महकमे ट्रांसपोर्ट ने काबीना के फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए निजाम के तहत 1,00,000 रुपए तक कीमत वाली दो पहियों वाली गाड़ियों पर 15 सालों के लिए 9% और 1,00,000 से ज्यादा रुपए की कीमत वाली दो पहिया गाड़ियों पर 10% टैक्स दिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक दो पहिया गाड़ियों पर टैक्स की शरह में 1% का इजाफा किया गया है। मरकजी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को गलत बताया है जिनमें कहा जा रहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक सरमायाकारी प्लेटफॉर्म को फरोग दे रहे हैं। इन दावों में कहा गया है कि 22,000 रुपए के शुरुआती सरमायाकारी पर शहरियों को हर माह 25,00,000 रुपए की कमाई की गारंटी दी जा रही है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की जांच यूनिट ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया है। रियासत के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की सरगर्मी से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक आज औरंगाबाद, कैमूर, मशरकी चंपारण, मगरबी चंपारण, गोपालगंज, रोहतास और सीतामढ़ी जिला में भारी बारिश हो सकती है। रियासत के दीगर अजला में भी तेज हवा के साथ बादल गरजने और बारिश की पेशगोई की गई है। मगरबी चंपारण जिला कलेक्ट्रेट में आज महकमा तवानाई की मीटिंग में जिला में 3 नए ग्रिड कायम करने की मंजूरी दी गई है। मीटिंग में मकामी रुकन पार्लियामेंट संजय जायसवाल और रियासत के मवेशी परवरी और माहीगिरी के वसायल के वजीर नंद किशोर राम समेत कई मुअज्जिज शख्सियात मौजूद थीं। दरभंगा जिला के फेकला थाना इलाके के तहत तलैया पोखर के पास सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों की मौत हो गई। भागलपुर जिला में मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन पर गनगनिया रेलवे स्टेशन के पास एक हाइवा और पिकअप वैन की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर जिला के बिहिया नगर परिषद इलाके में 4 दीवारी गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाकये के वक्त दोनों बच्चे दीवार के पास खेल रहे थे। बेगूसराय जिला के मुख्तलिफ स्कूलों में 1 पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत शजरकारी की मुहिम चलाई जा रही है। इस दौरान अब तक 1,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। मुंगेर जिला में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मुख्तलिफ मकामात पर कैंप लगाकर टीबी की जांच की जा रही है। मालूमात के मुताबिक इस दौरान मुमकिना अलामात वाले 30 अफराद की शनाख्त की गई है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं रोजगार सूचना।

श्रोताओं, रोजगार सूचना में आज लेखा परीक्षक प्रशिक्षक और सहायक 2026, कुल पद 1829, आवेदन शुरू होने की तिथि 14/7/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 3/8/2026 तक है। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाके प्राप्त कर सकते हैं। जेके एसएसबी 2026 कुल पद 130, आवेदन शुरू होने की तिथि 22/6/2026 से लेके आवेदन की अंतिम तिथि 21/7/2026 तक। अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिक जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाके प्राप्त कर सकते हैं।

बैंक ऑफ इंडिया, कुल पद 779, आवेदन होने शुरू होने की तिथि 30/6/2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 20/7/2026, न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाके प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे RRB टेक्नीशियन एग्जामिनेशन 2026, कुल पद 6557, आवेदन शुरू होने की तिथि है 30 जून 2026 से आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 तक। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम वर्ष 30 वर्ष टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए और 33 वर्ष टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए। तो श्रोताओं, आज रोजगार सूचना में आज इतना ही। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में।

0: सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
3: Congratulations in space for facilitating
1: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
3: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी।
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के

0: बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और

0: आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत के नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
2: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
2: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
2: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2,030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को

0: सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ है अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं एक बार फिर से फिल्म संगीत का।

फिल्म माँ का ये गीत अभी आप सुन रहे थे पूर्णिमा की आवाज़ में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म किसन कन्हैया से, अमित कुमार और साधना सरगम की आवाज़ में।

फिल्म बेताब का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म बरसात से कुमार शानू और अलका याग्निक के गाए हुए इस गीत को।

कोई शिकवा ना करेंगे, ना आजमाएंगे। तुम जहां पाव रखोगे ये दिल बिछाएंगे। हम तुम्हारी वफा की दुनिया में

शान और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म बर्दाश्त का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। अब समय हो रहा है हमारे प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं अजय कड़कड़े के स्वर में मराठी गीत।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। यहीं समाप्त होती है आज की हमारी पहली सभा। हम अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना जो धरती फिल्म से है। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सुकोडा रोडा गोला से गजानन कुम्हार, पद्मावती, विशाल, ज्योति और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा बड़वाहा से अयांश रावल, पुष्पेंद्र और इंदिरा रावल, चांदूर बिस्वा से राम भाऊ, लक्ष्मण भाऊ, भारत, शत्रुघ्न नारायण, पंच गवहाण तेलहारा से साहेब राव, अमोल खालिक और इनके साथी, शेगांव से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद रिजवान। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। हसर जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: इसी के साथ अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम खत्म होता है।
1: मनचाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: आपका फोन आएगा।
1: हाँ अच्छा अच्छा जल्दी बता वो आया कि नहीं।
0: अरे रुकिए मैं खिड़की के पास ही जा रही हूँ, खिड़की तो खोलने दीजिए। हाँ अब बोलिए नानी, आपकी टाइम की सेंस बड़ी परफेक्ट है।
1: नानी किसकी हूँ?
0: आपका फोन आया, मैंने खिड़की खोली और मैं नीचे देख रही हूँ कि भूरे भी अपने ठिकाने पहुँच गया है।
1: अरे गुड़िया तो खिड़की पर आ भी गई फिर भी सामने वाले फ्लाईओवर का शोर नहीं सुनाई दे रहा।
0: ओ फोन नानी आप भूल गई लगता है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरा सन्नाटा पसरा है, शोर कैसे आएगा।
1: अरे बेटा मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भूरे का डिनर हुआ कि नहीं।
0: आप भी ना नानी, डिनर तो हम करेंगे थोड़ी देर में। उफ, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, भूरे भी तो डिनर ही करेगा ना रात में, अब भले दूध भात खाए या रोटी।
1: आज क्या मिल रहा है उसे, क्या लाया बेरा, दूध भात कि ब्रेड?
0: आप उसे बेरा क्यों कह रही है, अरे वो तो उजला फरिश्ता है, रोज शाम अपने साथ भूरे के लिए पानी और खाना लाता है।
1: देखो गुड़िया खाना जो बनाए वो खानसामा और जो खाना परोसे वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता तो उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है?
0: अरे नानी वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
1: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी है।
0: हाँ और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है उसका मन भी उजला है, तभी तो हर रोज भूरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी बारिश हो तो भी आता है, और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा मेरी बातों की दादी, अब ये बता आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता?
0: अभी तक तो नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
2: अरे गुड़िया बेटा गुड़िया आ जाओ बेटा, तुम लोग सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गया, खाना टाइम हो गया।
0: ओके ओके मम्मा। अच्छा नानी नीचे भूरा खाने की वेट कर रहा है और यहाँ हमारे डिनर की भी कॉल आ गई, तो आपको बाकी रिपोर्टिंग में खाना खाने के बाद दूंगी। ओके बाय।
1: बाय बेटा।
2: आ जाओ सब लोग, आ गए सब लोग।
0: वाओ रायता माय फेवरेट। मम्मी और ये इतने बड़े डोंगे में आपने क्या ढक के रखा है, मैं देख लूं खोल के?
2: हाँ हाँ देखो देखो।
0: उफ, ये क्या, ये तो चावल दिख रहे हैं
2: जी,
0: और कैरेट, कैप्सिकम भी, ओ नो बीट रूट, और वो भी इतने चिपके चिपके से। मम्मी ये बिरयानी है या खिचड़ी, वो भी बीट रूट वाली, या कौन खाएगा।
2: गुड़िया लॉकडाउन में खाना मिल रहा है शुक्र मनाओ।
3: वाह ये चावल तो मेरे हिसाब से बने हैं, चबाने की जरूरत नहीं है।
4: लाइए भाई हम भी तो चखले थोड़ा सा।
0: मम्मी आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी?
2: जिसने बनाया है ना उन्हीं से पूछो तुम।
0: ओ नो दैट मींस आज कुकिंग फिर पापा ने की है।
2: यस
3: जिससे जो आता है वही तो करेगा, तेरे बाप से झाड़ू पोछा नहीं लगता, न ये कपड़े धो पाता है न बर्तन, अब तेरी माँ भला कितना खटेगी, बेचारा खाना बना देता है, वरना मर्दों को सिर्फ हुक्म देने की आदत होती है। हाँ
4: अम्मा एक तुम ही हो मेरी पार्टी में बस। हाँ। ये गुड़िया तो विरोधी पार्टी में चली गई लगती है, इससे तो सिर्फ गलतियाँ निकालना आता है।
0: क्या पापा
2: आप बस करिए ना गुड़िया बेटा, लाओ मैं तुम्हारे लिए पराठा बना लेती हूँ। आज बेटा
4: वाह वाह वाह वाह क्या बात है, विरोधियों और असंतुष्टों को अपनी तरफ करने का अच्छा पैतरा है।
2: जी हाँ वो तो है,
4: खाओ खाओ पराठे खाओ वजन बढ़ाओ, हमें क्या है, बाद में मत कहना कि पापा सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा है।
2: तो पापा शुरू बस करिए है, नहीं तो एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता।
4: अच्छा सच में?
2: हाँ
4: तो एक हमारे लिए भी बना दो।
2: अम्मा अम्मा देख लीजिए आप देख रही है ना।
3: हाँ।
2: अपने लाडले से अपना खुद का बनाया खाया नहीं जा रहा है खाना, और आप उन्हीं की साइड ले।
3: अरे बहू हम सब एक ही साइड में है, तू फिकर मत कर। अरे गुड़िया ए गुड़िया तू ये बता तेरी नानी क्या कह रही थी रे?
0: अरे दादी पता है उनको भूरे की इतनी फिकर होती है, इतनी फिकर होती है ना कि रोज शाम को जब तक उसके खाने की पूरी रिपोर्ट नहीं ले लेती उन्हें चैन ही नहीं पड़ता।
3: अच्छा तो तू उन्हें पूरी खबर देते है?
0: और नहीं तो क्या, भूरे की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
3: अच्छा कैसे, लेकिन
0: आपको पता तो है सारी कहानी नानी।
3: अरे

0: पर मैं भूल जाती हूँ ना रे, तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना, वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
1: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
0: खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की से कैसे भला आया?
1: ओहो दादी, आपको कहानी सुननी है ना?
0: हाँ हाँ सुना सुना सुना।
1: तो खिड़की के नीचे, ठीक नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना,
0: हाँ,
1: वहाँ वो रोज शाम को आता है। दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, रात को कहाँ सोता है ये भी नहीं पता।
0: अरे तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की?
1: ओहो दादी, लॉकडाउन में नीचे उतरना अलाउड नहीं है, तो फाइंड आउट कैसे करूंगी? हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
0: अरे इसमें खुश होने की क्या बात है?
2: अम्मा, अम्मा आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
0: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
1: हाँ तो शाम को जब डॉगी फ्लाई ओवर पर पहुँच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन आता है, वही आपका उजला फरिश्ता।
0: हाँ।
1: और भूरे को कुछ खाने को देता है
0: रोज,
1: और नहीं तो क्या।
0: अच्छा
1: हम तो डेली देखते हैं और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
3: अम्मा इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था, अब देखा क्या था, मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी अम्मा।
1: हाँ रहता हमसे दूर है लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
0: हाँ हाँ कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं।
3: गुड़िया याद करो यार, वो रात कैसी थी है?
2: हाँ।
3: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आसपास वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता, खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए थे।
2: हाँ, बस इसी समय की तो बात है।
3: दहशत फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था कि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।
2: हाँ ये बात तो है, लेकिन कितने डरावने दिन थे। दुकान बंद, दफ्तर बंद, लोगों का आना जाना बंद, और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा किचन कैसे चलेगा। और हाँ देखिए आप भी तो जानते ही हैं, हम लोग कभी राशन तो जमा करके हमने रखा ही नहीं था, तो चिंता लगी।
1: ओ मम्मा भूरे की बात बताइए ना।
2: हाँ हाँ अब खिड़की से देखते देखते अम्मा कई घंटे बीत गए। एक तो ऐसी ये सुनसान जगह, पैदल कोई आता जाता नहीं, और दोनों तरफ इतने बड़े दानवादार टावर, और बीच में इतना चौड़ा 4 लेन वाला फ्लाईओवर। इतने बड़े महानगर के इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ के टावरों में अम्मा 1000-2000 फ्लैट तो होंगे, पर इनके ठीक नाक के नीचे सूखी नदी जैसा फ्लाईओवर, जहां न आदम चाट। और पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा पिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया, और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहां जाए, कैसे करें और कैसे बस्ती में पहुंचे।
0: ए बहू तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
2: हाँ अम्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जरा सोचिए सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर्वत खड़े हैं धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है, इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती, बस काम से काम रखते हैं इसमें रहने वाले। अम्मा
0: बहू हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
2: हाँ तो अम्मा हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो सिमटे रहते हैं।
0: हाँ।
2: पर उस दिन, हाँ माँ उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
3: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो, पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी तो घंटों देखते रह गए थे।
2: हाँ वो तो है, लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारे बचाए और कैसे लेके आए, और याद है ना यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
3: हाँ।
2: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता है, इतनी दूर था।
3: तब अम्मा हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया।
0: क्या घर लाने का?
3: नहीं अम्मा घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया, क्यों याद है ना तुम्हें।
2: हाँ,
3: गुड़िया उस रात क्या हुआ था याद है?

0: अरे क्या है बेटा, क्या हो गया?
1: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए तो।
2: अरे क्या है बताओ
1: पापा,
2: तो
1: पापा देखिए ना वो नीचे बेचारा कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। आई थिंक ही इज लॉस्ट।
2: हाँ भूखा और परेशान है, लगता कहीं से भटक के आ गया।
1: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, वी मस्ट डू समथिंग।
2: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई?
1: पापा क्या हम उस बेचारे पपी को कुछ खाने को दे आए प्लीज पापा,
2: इस समय लॉकडाउन में?
1: प्लीज पापा।
2: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं जा नहीं सकते।
1: अरे पापा ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
2: देखते हैं भूखा तो है, सोचने दो।
3: हाँ।
2: अच्छा काम करते हैं, अब मैं चला जाता हूँ। हाँ, कुछ दे आऊंगा। ठीक है, तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
3: हाँ हाँ मैं बिल्कुल देती हूँ। मैं ऐसा करते हैं कि पानी भी दे ले जाइए और ये बिस्किट भी ले जाइए, है ना?
2: हाँ।
3: और लेकिन रुके रुके रुके, ऐसा करती हूँ मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट। है लीजिए ये सामान, हमने सब थैले में रख दिया। ठीक है, ये देखिए पानी है ना और रोटी, दोनों चीजें हैं। और ये सामान रख दिया, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा। और मास्क कहाँ है आपका?
2: अरे हाँ लगा लिया है।
3: सैनिटाइजर रखिए भाई।
2: अरे रखा है भाई।
1: अरे रुकिए रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से लेना है।
3: तुम वहाँ क्या करोगे?
2: अरे कह रही है तो जाने दो ना यार,
3: कमाल है आप तो।
2: तुम डरोगी तो नहीं ना?
1: नहीं पापा बिल्कुल नहीं।
2: हाँ चल चल चल,
3: मतलब डरोगी नहीं, ये क्या है
1: मम्मा प्लीज।
2: चलो चलो चलो, लिफ्ट बुलाओ और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
1: हाँ हाँ पापा आइए।
4: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
2: अच्छा ठीक है, दरवाजा ठीक से बंद करना।
3: ठीक है, ध्यान रखना अपना।
4: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
3: अम्मा ये लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए सोने के पहले वाली, और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
1: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है, बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी बहू?
3: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा आप दूध पी के सो जाइए
1: इतनी रात को। लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
3: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे।
1: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।
3: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुंचे कि नहीं वो लोग। हाँ तो पेड़ बीच में आ रहा है, लगता है अभी पहुंचे नहीं। क्या करूँ, बड़ी चिंता। मैं सोचती फोन कर लेती हूँ। हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया।
1: हेलो हाँ मम्मा,
3: तुम लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं।
1: अरे मम्मा उड़कर थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। चा? और पता है मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
3: क्यों भला?
1: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है।
3: हवा?
1: और सड़क पर बहुत सारे डॉग्स हैं मम्मी, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए, आप खिड़की पर ही है ना?
3: हाँ हाँ मैं यही हूँ।
1: हाँ तो हम पहुंचेंगे तो आपको दिखी जाएंगे, आप बस वेट करिए।
3: अच्छा
5: बहू बहू आ गए वो लोग क्या?
3: अरे अम्मा आप यहाँ आ गई, अम्मा आप फिक्र क्यों कर रही हैं, वो लोग आ जाएंगे, आप आराम कीजिए।
5: अरे आराम कहाँ से होगा बहू, इस कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। इतना डर तो आजादी मिलने के दिनों में भी नहीं लगा था।
3: आजादी? अम्मा आजादी मिलने पर डर क्यों भला लगा, और मतलब आप तो उधर से आई भी नहीं थी फिर।
5: आजादी मिलने का नहीं, हाँ? जो मारकाट मची थी उस वक्त उसका डर, हम कहीं से उजड़ कर नहीं आए थे। पर आतंक ऐसा था कि अब हम क्या कहें।
3: अम्मा आपकी उम्र क्या थी उस समय?
5: अरे वही 5-6 साल की रही होंगी। हम बच्चों को घर में बंद कर दिया गया था, सबको डर था कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं। पर आज का वक्त ये तो बहुत ही डरावना है, किसी को हम छू नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सैर करने तक हम नहीं जा सकते।
3: अरे अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या, आप तो पहले भी कहीं सैर वैर करने नहीं जाती थी भाई।
5: पर डर का साया तो 2400 घंटे है ना, और ऊपर से ये मुआ टीवी मरीजों की गिनती, मरने वालों की गिनती ऐसे बताता रहता है जैसे मौत का खेल चल रहा।

0: हो, इतने बीमार पड़ गए, इतने मारे गए।
1: अरे अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा आप घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रहिए।
0: हाँ।
1: मैं खिड़की से देखती हूँ कि हाँ, वो लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, है ना।
0: हाँ हाँ देख देख,
1: ठीक है,
0: आ जाए तो जरा मुझे बता देना।
1: हाँ उठाती हूँ। गुड़िया गुड़िया पहुँच गए तुम लोग? हाँ हाँ मैं खिड़की की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ लो मैं आगे खिड़की पर, अब रुको। हेलो, अरे फोन मत बंद करना। हाँ हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। अरे पर आवाज तो बेटा फोन पे ही सुनाई देगी ना। अरे अम्मा आप, हाँ लो दादी भी तेरी यहीं आ गई। अम्मा देख रही हैं, ये लोग नीचे ही खड़े हैं, पहुंच गए उस बेजुबान प्राणी के पास।
0: हाँ बहू एक मिनट, मुझे भी तो आगे आने देना, खिड़की के पास आने दे जरा।
1: हाँ अम्मा ये हम कुर्सी यहाँ रख देते हैं, आप यहीं बैठिए, आइए आइए बैठिए। हाँ मैं फोन को भी स्पीकर पर ऑन कर देती हूँ ताकि अम्मा आप लोग को भी ना इन लोगों की आवाज सुनाई दे, सब बातें पता चल जाए। गुड़िया गुड़िया सुन, पहले उसे पानी पिला।
2: हाँ हाँ मम्मा। मम्मा आप देख रहे हो?
1: हाँ?
2: हम जो कटोरा लाए थे ना, मैंने हाँ? उसमें पानी डाल दिया। मम्मी देखो ना कैसे पूंछ हिला रहा है और डर भी रहा है। आ गया आ गया, पानी के कटोरे के पास आ गया वो।
0: अरे लग रहा है रोटी भी खिला रहे हैं।
1: अब पर अम्मा रोटी सूंघ के तो पीछे हट गया।
0: अरे डर रहा होगा ना शायद।
2: मम्मा इसे ना बहुत प्यास लगी है, आप देख रहे हो कितने तेज तेज पानी पी रहा है।
1: पता नहीं कब से प्यासा था। और गुड़िया मेरा तो मन कर रहा है कि उसे पुचकारूं, प्यार करूं, छोना सा तो है।
3: पुचकारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है मैडम, तुम लोग आसमान में टंगे हो।
2: आसमान नहीं स्वर्ग में बैठे हैं।
0: बड़ा स्वर्ग, स्वर्ग में बैठे हैं। अरे कैदी है कैदी माचिस की डिबिया में। हाँ।
3: खुद को खुशकिस्मत समझो अम्मा, लाखों करोड़ों में मिलती है ये माचिस की डिबिया।
1: भाई कमाल है, इतनी दूर खड़े हैं फिर भी चैन नहीं है, बस बहस करा लो इनसे जब चाहो तब।
3: बहस नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
1: अच्छा पहले आप उस जो बेजुबान प्राणी के लिए गए ना उसकी सेवा करिए, और जरा फिर ये बताइए इतनी देर कहाँ भटक रहे थे आप दोनों? 15 मिनट का रास्ता, पूरे 2 घंटे लगाए आप लोगों ने।
3: जमीन आसमान का फर्क यही होता है मैडम, समझे आप? मतलब हम समझा दें आपको जमीन आसमान का मतलब, यहां जहां हम खड़े हैं वहां पहुंचने के 2 बड़े मोड़ हैं
1: जी।
3: जब हम चलने लगे तो पहले सुनसान रास्ता आया, डरावना अंधेरा, तेज हवा चल रही थी, कागजों प्लास्टिक और तमाम चीजों का कचरा उड़ने लगा, गलियों से कुत्ते निकलकर भौंकने लगे, छीना झपटी करने लगे, अजीब सा अंधड़ चलने लगा, कूड़े कचरे की बारिश होने लगी, रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था।
1: क्या कह रहे हैं आप, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न हवा न बारिश।
3: कह तो रहा हूं जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं।
1: अरे क्या ऐसा है बोले जा रहे हैं, आप गुड़िया को फोन दीजिए।
0: अरे बहू क्यों गुस्सा कर रही हो?
1: अरे अम्मा आप रुकिए, गुड़िया गुड़िया ये पापा तुम्हारे क्या कहे जा रहे हैं?
2: हाँ मम्मा सच में बहुत डरावना एक्सपीरियंस था।
1: हाँ?
2: सुनिए तो, फिर पहला मोड़ आया तो वहाँ बहुत लोग थे। लोग क्या थे, प्रोसेशन जैसा ही था, एक जुलूस, लोग बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सिर पर गठरियां उठाकर चले जा रहे थे, पैदल साइकिलों पे साइकिल रिक्शा पे किसी भी तरह बस चले जा रहे थे। रदर दे वर रनिंग, यू नो रनिंग अवे फ्रॉम सिटीज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट मम्मा टू देयर नेटिव प्लेसेस। मम्मा दे वर एस्केपिंग माइग्रेटिंग।
1: अरे ये सब तो टीवी पर आता है, प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं और क्या।
2: हाँ टीवी जैसा ही पर एकदम रियल लाइव जिंदा। एक बच्चा सिर पर बैग उठाकर चला जा रहा था।
1: अच्छा
2: मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, भाग गया। पता है मम्मी एक अंकल थे बूढ़े से नंगे पैर मम्मा।
1: अच्छा
2: और उनके पैरों में चोट लगी थी। पता है मम्मा कितना ब्लड आ रहा था, और पापा को इतना वरिड मैंने कभी नहीं देखा मम्मी।
1: अच्छा
2: जितने वो सीन को देखकर हुए। एंड यू नो
1: क्या,
2: यू नो पापा ने क्या किया?
1: क्या
2: पापा ने अपने स्लीपर्स उन अंकल को दे दिए मम्मा।
1: अच्छा
2: अब देख सकते हो पापा उसके बाद नंगे पैर चल रहे हैं।
1: हैं? हाँ हाँ हरम सच में नंगे पैर ही हैं। अरे अम्मा

0: देखी तो जरा सा इन्होंने तो
1: हुआ?
0: अरे अम्मा ये देखिए तो इन्होंने स्लीपर अपनी दे दी किसी को।
1: अरे
0: हाँ इनके पैर दुख रहे होंगे गुड़िया।
1: कोई बात नहीं कोई बात
0: अरे गुड़िया गुड़िया पापा को फोन दो। हेलो हेलो
2: हाँ हाँ बोलो क्या हुआ।
0: अरे आप नंगे पैर हैं सड़क चुभ रही होगी आपको।
2: नहीं नहीं आज तो जमीन को फील कर पा रहा हूँ। जानती हो जिंदगी को इस तरह कभी नहीं देखा। जिंदा बच्चा रहने की इच्छा का परम रूप चरम रूप जिजीविषा शायद इसी को कहते होंगे। ये लोग इस अंधेरे वक्त में दिखे इन्हें एहसास हो गया कि इन्हें कोई नहीं बचाएगा। न साहूकार न सेठ न सरकार न अमीर न गरीब खुद ही खुद को बचाना होगा। अपने ही पैरों पर भरोसा करना होगा। ये लोग न जाने कब से चल रहे हैं और इन लोगों को न जाने कब तक चलते रहना है।
3: ये कौन लोग हैं?
2: यही तो विडंबना है। ये लोग हमारे ही शहरों में थे। हमारे शहर इनके ही बनाए हुए थे। ये शहर इनके चलाए ही चल रहे थे पर ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे लिए इनका अस्तित्व ही नहीं था। ये हमारी ही तरह हाड़ मांस के जिंदा इंसान है।
3: आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगता है आपने कोई सपना देख लिया है और वो भी जागते हुए।
2: ये हमारे जैसे लोगों के लिए सपना ही है। कल्पना से भी परे पर हकीकत जमीन पर उतर कर ही इसे जाना जा सकता है। अरे जानती हो हमारा डर तो दाल रोटी के साथ सब्जी न मिलने का डर है। काम वाली नहीं आएगी तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा इसका डर है। पर पता है
3: क्या?
2: इनका डर भूखों मर जाने का डर है। इन्हें यही डर है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। इन लोगों ने इसे भोगा है। मैंने नहीं भोगा सिर्फ करीब से देखा है और तहल गया हूं अंदर तक तहल गया हूं।
4: सच पापा बड़ी वियर्ड रात थी वो। ओ माय गॉड आज भी याद करके गूज़बम्स हो जाते हैं।
1: क्या गूज हो जाते हैं? क्या बक रही है?
5: अरे अम्मा रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में गूज बम्प कहते हैं। अरे अम्मा तुम इसे कभी कभी अपनी भाषा भी समझाया करो यार।
1: हाँ हाँ
4: पापा लेकिन उस रात पप्पी को जो पानी पिलाने का एक्सपीरियंस था ना वो मेरी लाइफ का दी बेस्ट एक्सपीरियंस था।
1: हाँ तभी तो तुमने ढिंढोरा पीट दिया। हाय हाय अनाथ कुत्ता है मर जाएगा।
4: अरे नहीं दादी मैंने तो बस सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मुझे डर लग रहा था कि हम इतनी दूर रोज रोज थोड़ी ना जाएंगे उसे खाना खिलाने।
1: हाँ तो इसीलिए तो आ गया ना तुम्हारी मदद करने के लिए वो उजला फरिश्ता।
4: सच्ची और तब से देखो वो पपी अरे जिसे आप भूरे कहती हैं
1: हाँ
4: दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है लेकिन रोज शाम को फ्लाईओवर पर आ जाता है ठीक हमारी खिड़की के नीचे।
1: हाँ।
4: और आपको पता है एक लेन जो खाली रहती है ना वहीं पर और वो पर्सन वहीं आकर जॉगिंग करता है। पहले भूरे को खाना खिलाता है फिर अपना मोबाइल चेक करता है फिर 10 चक्कर यहाँ से वहाँ लगाता है। और पता है ये भूरे लाल उसके आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं। पता है दादी बारिश हो जाए ना तो भी इन दोनों की रूटीन नहीं टूटती।
0: अरे अम्मा जब से ये भूरे को इन्होंने क्या देख लिया उसकी सेवा क्या करने लगी बस सोते जागते बस भूरे की कहानी दादी को सुनाएंगी फिर नानी को सुनाएंगी। भाई
5: अरे तुमको याद नहीं उस दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद जब तुम वापस आई तो तुम्हारे साथ सहेलियां भी आई थी तुम्हारी।
0: बिल्कुल
5: उनको दिखाने बैठ गई उनको बताने लगी उनको ले गई अपने साथ कि चलो हाँ। हमारे साथ हमारे भूरे को देखो
0: और वो तो उसके संग संग उजले फरिश्ते को भी देखो। भाई ठीक है बेजुबान प्राणी की सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए।
5: हाँ बिल्कुल सही बात है प्राणी की सेवा करना परम धर्म है और ये जो इस समय कोरोना का समय हाँ। चल रहा है इसमें ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये बेजुबान जानवर आखिर हमारे ही तो भरोसे हैं तो ये करना बहुत जरूरी।
0: बस बस बस शुरू हो गया ये इनको मौका मिला गुड़िया और तुमने मौका दिया और पापा शुरू हो गए। अच्छा सब लोग बस करो और गुड़िया चलो आओ सलो पराठे खा लो आ जाओ।
4: क्या मम्मी पापा आप भी ना। अरे भूरे तो हमारा हीरो है आप लोग भी ना। हाँ ओ नो देखो ना बातों में तो मैं भूल ही गई आज भी आ गया होगा अब तक और नानी भी मेरा वेट

0: कर रही होंगी। अरे मुझे उन्हें रिपोर्ट देनी है ना भाई, मैं तो जा रही हूँ खिड़की पर। हेलो हेलो नानी।
1: गुड़िया,
0: अरे आप जाग रही हैं?
1: हाँ बेटा, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ।
0: इज इट? क्या बात है,
1: जल्दी जल्दी बता, क्या वो आया? क्या क्या कर रहा?
0: हाँ हाँ नानी, अब सुनिए तो इत्मीनान से, मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग दूंगी, पूरी गुड़िया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खिड़की, आप बस सुनते जाइए। हाँ तो नानी, मैं देख रही हूँ कि उजला फरिश्ता आ चुका है, उसने अपने बैग से कुछ निकाला। अब वो रोटी है या ब्रेड ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, लेकिन भूरे लाल भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं इतना दिख रहा है। अब खाना खत्म भूरे लाल का और भूरे की मस्ती शुरू। उजला फरिश्ता अब तेजी से सैर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और ये भूरे लाल कभी उसके आगे कभी उसके पीछे उछल कूद कर रहे हैं। नानी आप बस सुनती चलिए। और ये मैं क्या देख रही हूँ? ओहो, भूरे ने उछल कर फरिश्ते की पैंट पकड़ ली और पैंट छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उजला फरिश्ता। ओह, मैं कह सकती हूँ नानी कि भूरे बड़ा खुश है, और नानी भूरा खुश है तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो नानी आप खुश हैं, है कि नहीं?
1: बिल्कुल खुश।
0: तो नानी आज की रिपोर्टिंग के बाद अब तो आपको नींद आएगी ना?
1: हाँ बेटा जरूर आएगी।
0: तो ठीक है, आज आप सो जाइए आराम से इत्मीनान से, मैं कल शाम को आपको फिर कॉल करके रिपोर्ट करूंगी। ओके गुड नाइट नानी, बाय बाय।
2: गुड नाइट गुड़िया, बंद करो बेटा फोन अपना, इधर आओ, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तुम्हें खिचड़ी टाइप बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी ना?
0: हाँ।
2: तो जानती हो मैंने क्या किया?
0: क्या बताया पापा?
2: दूध लाया।
0: हाँ?
2: दूध तो मिल रहा है लॉकडाउन में,
3: लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता।
2: मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने उसका छेना बनाया।
0: क्या बात है!
2: और छेने के बाद उसके संदेश बनाए।
0: इज इट
2: बंगाली संदेश?
0: ओ वाओ पापा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
2: तो मीठे मीठे संदेश खाओ, और हाँ अपनी मम्मी को भी खिला देना, हमेशा कहती ना कि यही खाते रहते हैं हमेशा।
0: वाओ यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट।

अभी आप सुन रहे और धे अनूप सेठी का लिखा नाटक जमीन आसमान। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार था। माँ रेणु चतुर्वेदी, गुड़िया आकांक्षा सिंह, दादी ममता सिंह, नानी अनुश्री पाठक और पापा अमरकांत दुबे। संगीत संयोजन और तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: Silence! Lights! Sound! Camera! Action!
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।

0: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूं और आप लोगों से रूबरू हूं।
0: जी, आपने थिएटर किया, दूरदर्शन की दुनिया भर के सीरियल्स बनाए, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्में बनाई, आपने फिल्में भी बनाई। फिल्में बनाने का विचार कैसे आया?
1: देखिए, क्या है, कला एक नदी है
0: जी।
1: तो नदी जब अपने स्रोत से शुरू होती तो बहुत छोटी होती है, फिर आते आते धीरे धीरे धीरे और उसका जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, वो समुद्र होता है। तो फिल्म जो है ना, समुद्र है
0: जी।
1: तो वहां आना ही था। मुश्किल होता है क्योंकि फिल्म में बहुत पैसे की जरूरत होती है। फिल्म का जो कैनवास है हर तरह से बड़ा होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिल गया फिल्म बनाने का। और उससे ज्यादा सौभाग्यशाली ये रही कि मेरी तरह का सिनेमा जो ऑफ बीट है, एक नई तरह का, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट मेरी पहली फिल्म थी, उसमें मैंने शारदा वाला कैरेक्टर तो लिया ही है, जो वो एक गांव की लड़की है जो बिक रही है, और उसके साथ मैंने एक कैरेक्टर लिया है जो पास्ट की लड़की, बुद्ध पीरियड की लड़की है, उससे पहले की लड़की है, जो तब की है जब भी बिकती थी महिलाएं, स्त्री। तो वो उसकी आत्मा इससे मिलती है, पास्ट और प्रेजेंट को मैंने दोनों
0: को मिलाया है।
1: और वो कहती है मैं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक तू मुक्त नहीं होगी, तू अपनी मुक्ति देख। तो वो उसको वो प्रेरणा देती रहती है। तो इस तरह का सिनेमा बनाने का सौभाग्य मिला मुझे और काफी इंटरनेशनल इसको अप्रिसिएशन भी मिला फिल्म को,
0: काफी चर्चा हुई इन फिल्मों की। और इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि मिस्टर कबाड़ी और द वीकली बाजार जैसी ऑफ बीट फिल्मों का आपने निर्देशन किया, तो क्या अनुभव रही फिल्में बनाने के?
1: हार्ट द वीकली बाजार का तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सारे कलाकार बहुत मन से काम कर रहे थे। दिव्या दत्ता थी, अर्चना पूरन सिंह थी, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, ये सब लोग थे। और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, अशोक चक्रधर ने गीत लिखे थे, अली गनी जो है पद्मश्री हैं अभी, उन्होंने संगीत दिया था। तो वो तो बहुत ही अच्छा रहा। मिस्टर कबाड़ी जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी
0: जी।
1: लेकिन एक गरीब आदमी जब अमीर हो जाता है तो उसकी क्या त्रासदी होती है। गरीब जब तक रहता है तो कोई दुख नहीं है, अमीर होते ही सारे दुख शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उन अमीरों में शामिल देखना चाहता है। और जो अमीर है वो अपनी क्लास कॉन्शियस है, इलीट क्लास वालों में रहना चाहता है, वो क्लब में जाना चाहता है, और वो लोग उसको मुंह नहीं लगाते, पैसा है। लेकिन उसमें भी ये कहने की कोशिश की है कि मतलब आप जिस क्लास से हैं, पैसा आ जाए तो उसको सुविधा के लिए होता है पैसा, और उससे कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं वहां बहुत खुश हैं।
0: सबसे बड़ा संदेश,
1: सबसे बड़ा जी।
0: तो ये बड़ा अच्छा आपने कंट्रास्ट इस तरह का उस फिल्म में लिया था। तो मुख्य धारा की मसाला फिल्मों से अलग ही फिल्में थी, दशकों तक कहां तक पहुंची होंगी फिल्में, आप क्या सोचती एक निर्देशक होने के नाते?
1: अब तो ओटीटी आ गया है और ओटीटी पे है तो काफी लोगों ने देखा उसको, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत बड़े वाले स्टार नहीं थे, इसलिए जब सिनेमा में आई तो उतना नहीं हो पाया, छोटे बजट की फिल्म थी। आजकल क्या है कि आपको फिल्म के प्रमोशन के लिए 10-15 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है छोटी से छोटी फिल्म का, तब लोगों तक पहुंचता है। हमारे पास तो उतना था नहीं, प्रोड्यूसर के पास उतना नहीं था। पहली फिल्म NFDC की थी, उनके पास भी उतना तो प्रमोशन के लिए नहीं था। लेकिन अब जब OTT पे आई है तो अब वो बहुत लाखों लोगों ने देखी है,
0: जन जन तक पहुंची है
1: OTT की मेहरबानी से।
0: लेकिन इसमें कलाकार तो बहुत अच्छे थे और
1: नहीं, कलाकार अच्छे हो, फिल्म भी अच्छी हो, लेकिन लोगों को पता कैसे चले कि एक अच्छी फिल्म आ रही है, उसके लिए आपको प्रमोशन की जरूरत होती है। प्रमोशन के लिए पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं,
0: एक मार्केटिंग बहुत,
1: मार्केटिंग के लिए जी जी।
0: तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सीमा जी को किस तरह का सिनेमा पसंद है तो क्या कहेंगी आप? आपको व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का सिनेमा पसंद है?
1: मुझे अलग अलग तरह का, मूड के हिसाब से। मैं वेस्टर्न सिनेमा देखती हूँ बहुत, और मुझे कभी रोमांटिक फिल्में पसंद आती हैं, कभी मुझे बहुत गंभीर फिल्में देखना

0: का दिल होता है। ऑल टाइम हिट जो फिल्में हैं जैसे डॉक्टर जिवागो और बहुत सारी ऐसी फिल्में, थ्रिलर हैं, हर तरह का सिनेमा मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त है कि वो क्लासिक और अच्छा होना चाहिए। और फिर आपके मूड पे भी है, कभी कभी बचपन याद करने के लिए राजेश खन्ना जी का फिल्म देखने का मन करता है कि वो फिल्में, वो याद, वो दौर है ना
1: जी।
0: बाकी मुझे सत्यजीत रे का सिनेमा, ऋतिक घटक का सिनेमा, इंडियन में अपना ऋषिकेश मुखर्जी, ये इन लोगों का देख के आपको मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और बहुत सहज इनका फिल्म मेकिंग रही है, बहुत सहज रहा है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे शॉट ले रहे हैं, वैसे शॉट ले रहे हैं,
1: लेकिन लाउड सिनेमा नहीं,
0: बिल्कुल नहीं। और आप और हमारे इर्द गिर्द की कहानी, हमारे आसपास ही किरदार, आपको लगता है कि हाँ ये वो है हमारे अपने, ऐसा सिनेमा जिसे आज रियलिस्टिक सिनेमा बोलते हैं वो मुझे पसंद है।
1: चलिए तो आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं, फिर जरूर बात को आगे बढ़ाते हैं।
0: कल्याण जी आनंद जी का फिल्म मेरे हमसफर का, किसी राह पे किसी मोड़ पे,
1: आइए सुनते हैं, बहुत ही सुंदर।

0: सीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहानी?
1: ज्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं, जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है, वो चूंकि इतिहास है तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने, तब से लेके विक्रमादित्य तक, तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे। एक मैं अभी एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को कहते हैं वामा
0: जी, जी।
1: तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थी उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह की जो कि वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपा मुद्रा और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं
0: जी। तो कहाँ तक पहुँचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
1: लेखन तक है अभी, और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
0: क्या लगता है आपको, इस तरह का जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
1: देखिए, स्त्री होने के नाते, मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको केयरने में मुझे लगता है कि मैं काफी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे फिर उसको पढ़ना और गढ़ना उस कैरेक्टर को आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माताजी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे उसकी संवेदनाएं। और कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर, रेणु, टॉलस्टॉय ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत खूबसूरती से स्त्री का, सबसे ज्यादा आपके शरदचंद, उन्होंने तो स्त्री का ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है।
0: जिस तरह से उन्होंने लिखा, लगता ही नहीं है कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है, स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा। तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही है तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां स्त्री को पहुंचना चाहिए।
1: जी, कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुंच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियां हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं, ढेर सारी समस्याएं, तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशियस रहती हूँ, सचेत रहती हूँ कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि स्त्री के पक्ष में हूं मैं, लेकिन मैं पुरुष के विपक्ष में नहीं, नहीं। हूं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, क्योंकि संसार दोनों से चलता है
0: जी।
1: है ना, आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर

0: गेम है ये, पुरुष के हाथ में जब पुरुष सत्ता थी या है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था, लेकिन वही हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मेरी माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नजरों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मोजी बोलते थे, वो
1: जी
0: कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मोजी आप ये कर दीजिए आप जनाब। तो हमने तो वो लोग देखे हैं जो स्त्री को इतना सम्मान देते थे।
1: आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद का
0: जी।

0: आज की लेखिकाएं भी स्त्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की जरूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
0: बिल्कुल,
1: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है कि अब स्त्री को नए परिप्रेक्ष्य में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए
0: जी।
1: स्त्री का या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि स्त्री अभी जो स्वतंत्रता के नाम पे उच्छृंखलता जो हो रही है ना, वो स्त्री को और गुलाम कर रही है।
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा। और स्वच्छंदता शब्द तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर ये सही नहीं बैठता
1: है, दोनों के लिए गलत है। तो स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं ना। ये स्वतंत्रता नहीं। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए
0: जी,
1: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो, ये होना
0: वहां
1: चाहिए।
0: उसे स्वतंत्रता
1: जी
0: मिलनी चाहिए
1: जी।
0: अपने निर्णयों को लेना सीखे कि जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात करें, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहां तक सहमत है? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है या वहां कहीं ना कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आ रही है?
1: देखिए, समाज में मुझे क्या लगता है कि जब से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है, तब से हास होने लगा है
0: जी।
1: अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मद्यपान कर रही है या ये कर रही है वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज बोलना चाह रहे हैं आपके? मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज? इसके तो मैं खिलाफ हूं। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है तो भी गलत है, है ना। तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीजें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज्यादा आप हाईलाइट करके और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूं मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब। तो अब पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहां पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पूरी साहब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है, ये तो पूरी साहब करेंगे। पूरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा काय का एड है? बोले सिगरेट का। तो पूरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं, पूरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पूरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करूंगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग? मैंने कहा पूरी साहब, अगर आपके कहने से नहीं पिएंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं, और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो 1000 लोग देखेंगे, 2 लोग तो पिएंगे, है ना। अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हों या ना हों, आप सेलिब्रिटी हैं,

0: आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है, आपको हीरो मानता है वो या हीरोइन मानता है, आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो है आपने स्टेक पे लगा दी है।
1: बिल्कुल।
0: तो पुरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड। तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए।
1: जी, आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती।
0: जी
1: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा और आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए।
0: जी, मेरी पसंद का गीत

0: प्रतिमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज साहनी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी,
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की, है ना, और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने
0: शुरुआत की, बहुत सारी फिल्में। ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब
1: जंपिंग जैक के नाम से जाने जाते थे,
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उनका एक अलग रूप देखने को मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिका है?
1: नायिकाओं में मुझे वो बेचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं। लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी,
0: मधुबाला
1: उनकी सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहाँ कॉमेडी कहाँ सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, वो उनका एक स्टाइल था, और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर है अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज्यादा अच्छा हो।
0: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी लेकिन उनकी खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
1: जी जी,
0: तो कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए,
1: जैसे अभी ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है, परफॉर्मर अच्छी है, मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी है, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करी वो सब, जबकि देखिए ना, मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या, उनकी अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी,
0: बहुत सुंदर
1: जी,
0: आंखें बोलती थी उनके
1: जी,
0: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका,
1: परफॉर्मर मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं, वो निर्देशक के कलाकार होते हैं। निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
0: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा,
1: निर्देशक कितना स्ट्रांग है अपने काम में।
0: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
1: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अनुभया के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते थे। बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला।
0: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार,
1: बहुत अच्छी।

0: बहुत ही संचिता कलाकार हैं
1: जी। हाँ। और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका और मेहनत करती है, चीजों को बार बार पूछना सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना गांव के क्या है, वो आप निर्देशक या राइटर से पूछते हैं
0: जी,
1: वो गांव में तो नहीं रहे हुए होते, तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई एक कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है, तो वो ख्याल रखना वो निर्देशक का भी जरूरी है, कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए थोड़ा कमजोर हो जाए तो निर्देशक का वो बनता है। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने
0: स्टैब्लिश कलाकार हैं, अच्छे और परिपक्व कलाकार हैं, जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें, जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर कि ये क्या एक्टिंग कर,
1: कमजोर नहीं पड़े ये अपने अपने किरदार में,
0: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
1: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, मैं लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं,
0: बहुत सुंदर गाना है। चलिए तो सुनते हैं यही गीत।

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया, और इससे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है।
1: जी।
0: आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में।
1: हाँ।
0: बहुत ही सुंदर उसका शीर्षक है,
1: यूं गुजरी है अब तलक। जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पुरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड।
0: जी।
1: तो उसमें मेरे भाई, मेरी माता जी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन।
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक ना एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा, और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावा नल चलता रहता था, आपको एक कोना चाहिए जहां आप रो सकें, जहां आप कथार्सिस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे, उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूँ, और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
0: जी।
1: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको, फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया।
0: जी।
1: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे थिएटर कंपनी के बाबूजी की, जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थी, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थी, स्टेज पे कमाती थी, लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो। तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया, और ऐसे मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीजें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं, और वही चंदा हैं, और वही शरीफ भाई हैं, और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं, वो उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष के इतने अमीर माता पिता की संतान होके आज देखिए जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई, भुखमरी आ गई,
0: जी
1: है ना, सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने, सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का, ये मैंने उसमें लिया, और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया।
0: काफी चर्चित रही ये किताब, और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक किताब रही ये, यूं गुजरी अब तलक। और उसमें मुझे लगता है कि हम
1: साहित्य तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10 में बुक में लिया,
0: शामिल किया, और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना।

0: पहचान, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी आगे भी आप यूं लिखती रहें, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही हैं। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का
1: जी।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

जी हाँ दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और उपस्थित है युवा श्रोताओं के साथ कार्यक्रम युवानी को लेकर के। अभी से लेकर के शाम के 5:40 तक हम आपके साथ बने रहेंगे दोस्तों इस कार्यक्रम में। और अन्य दिनों की भांति आज भी आप सुनेंगे कुछ लोकगीत और साथ ही साथ आपसे एक हमारी बातचीत भी होगी और एक विशेष कार्यक्रम भी आपसे हम आपको सुनवाएंगे। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, इसे आप सुनेंगे 5:10 से। तो देर न करते हुए कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत।

अभी आप अरविंद कुमार झा के स्वर में ये लोकगीत सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: माता की कहानी।
1: और इसी विषय को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारे सहयोगी आकाश राज ने स्टार्टअप और उद्यमिता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर राणा मयूर से खास बातचीत की है।
2: तो आइए बिना देर किए सुनते हैं आकाश राज और राणा मयूरेश के बीच यह विशेष बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, युवाओं की वाणी युववाणी सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आकाश। श्रोताओं आज के समय में यह बात हम तो सभी जानते हैं कि नौकरियां सीमित हैं, ऐसे में हमें जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनने पर अधिक बल देने की जरूरत है। लेकिन क्या हर कोई जॉब क्रिएटर बन सकता है, यानी अपना उद्यम शुरू कर सकता है, और एक सफल उद्यमी की सोच और आदतें कैसी होती हैं? इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा उद्यमी राणा मयूरेश। राणा जी

0: छोटा फैमिली रहा है, तो घर में पढ़ाई को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट मेरी माँ रही है, लेकिन उन्हें बहुत जल्द ही समझ में आ गया कि इसका जो मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है वो किस सेक्टर में है, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे मेरी चीजों को समझा और फिर पिताजी को भी प्रेरित किया कि इसका इंटरेस्ट किस सेक्टर में ज्यादा जा रहा है, तो इसे उसी में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए।
1: तो क्या आपके कभी माता पिता ने, जैसा कि आपने बताया आपकी माँ पढ़ाई को लेकर के काफी सख्त रही हैं, सीरियस रही हैं, तो कभी नौकरी को लेकर जोर नहीं दिया कि आपको सरकारी नौकरी की तलाश करनी है, उसकी तैयारी करनी है, इस बारे में क्या कहेंगे आप?
0: ये बात 2013 की है, जब माँ ने इच्छा जताई थी कि तुम एक बार कोशिश करके देखो, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे ये देखना, हमारा साथ तो हमेशा रहेगा ही, तुम्हें जिस चीज में इच्छा है तुम वो कर सकते हो। तो मैंने कोशिश की थी, फिर मुझे पता चला कि मैं इसमें टिक नहीं पाऊंगा, और मुझे अपना लेवल भी पता चला कि बाकियों से मेरा लेवल कहाँ पे है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट जो था उसी को मैंने फिर आगे कैरी फॉरवर्ड किया।
1: तो अभी राणा जी आप बताएं कि क्या आप अभी फ्लाई एश का जो निर्माण कर रहे हैं उसकी शुरुआत आपने कब की, और जो आपने क्लाउड किचन की बात कही, ये क्या है क्लाउड किचन और इसका स्कोप क्या है?
0: ये फ्लाई एश ब्रिक का मेरा शुरुआत बहुत ही छोटे सेक्टर से, मतलब पैच करिएगा इसको, फ्लाई एश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का शुरुआत मैंने सन 2019 में किया था, क्योंकि मेरे पिताजी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही जुड़े हुए कार्य में थे, और है भी अभी भी, फिलहाल अभी भी हैं। हाँ, तो उनसे ये इंस्पिरेशन था मेरे को कि जब पिताजी जब रिटायर होके जब वापस आएंगे तो फिर हम दोनों मिलके फिर इसको और बड़ा करने की कोशिश करेंगे।
1: और आपने जो क्लाउड किचन की चर्चा की, क्या है ये क्लाउड किचन और में आपको कितना मुनाफा हो रहा है, कैसे आप इसका स्कोप देखते हैं?
0: क्लाउड किचन का शुरुआत मैं अपने एक हमारे मित्र हैं, बहुत ही पुराने मित्र हैं हमारे, हम उनके साथ एक बार कैलकटा गए थे घूमने के लिए, तो वो ऑलरेडी फ्रेंचाइज इंडिया के मेंबर थे, तो उन्होंने हमें बताया कि हम दोनों मिलके एक पटना में छोटा सा किचन सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि तब नया नया जोमेटो स्विगी पटना में मतलब बूम पे था, नया ही आया था, तो हमने सोचा कि हम अपना रेस्टोरेंट ना खोल के हम बस एक छोटा सा किचन सेटअप कर सकते हैं, और हमारी सारी डिलीवरी ऑनलाइन ही स्विगी जोमेटो और कॉल के माध्यम से रहेगा। ये क्लाउड किचन को करते हुए हमें लगभग लगभग 6 साल होने आ रहे हैं, 2020 के अंतिम में हमने शुरुआत की थी, लगभग 2020 के दिसंबर महीने में, उस वक्त कोविड का समय चल रहा था, तो धीरे धीरे धीरे शुरुआत किया था हमने, और इसका जो पेस जो पकड़ा क्लाउड किचन का वो 21 दिसंबर के बाद से पकड़ा, मतलब आप समझ सकते हैं 2022 की शुरुआती दौर से ये क्लाउड किचन का हमारा बिजनेस पेस पे आया।
2: जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हमारे अपने लोग और उनसे जुड़ी यादें होती हैं। यही रिश्ते हर मुश्किल समय में हमें सहारा देते हैं। इन्हीं भावनाओं को समेटे सुनते हैं ये अगला गीत, जुबीन नौटियाल की खूबसूरत आवाज में।

विभा सिन्हा के स्वर में ये लोकगीत सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं बुध नारायण सिंह के स्वर में।

अभी आप युवानी कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब श्रोताओं, हम आपको सुनवाते हैं कुछ नए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं फिल्म कनेक्ट का यह गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे फिल्म कनेक्ट का यह गीत। गायक कलाकार थे बेनी दयाल, हानिया नफीसा। गीतकार थे आकांक्षा सेठी और संगीत निर्देशन पृथ्वी चंद्र शेखर का था। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म बंदूक और गुलाब का यह गीत सुनिए। तान दीवान राजा सिन्हा की आवाज़ में, बोल हैं दिलीप बर्मन के और संगीत निर्देशन शशि कुमार का है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800420223 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी

0: चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: संदेश से पूर्व आप कनेक्ट फिल्म का गीत सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
4: भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
5: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
4: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है।

0: इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछा स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को परात 41 डिग्री चया मगावर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। गांव घर संध्या 6:30 पर प्रसारित किए जाएंगे और खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7:00। 7:52 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 8:00 सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। विज्ञान कार्यक्रम रात्रि 8:15 पर प्रसारित किए जाएंगे और रात्रि 9:10 पर आप श्रोताओं क्षमा करेंगे, रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे चित्र भारती कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। रात्रि 10:00 सुनिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

अब जानकारी प्राप्त कीजिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कल प्रातः 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन। विषय होगा मैथिल कोकिल। आलेख एवं वाचन सुरेंद्र झा का होगा। कृषि चर्चा आप सुनेंगे 5:55 पर और 6:05

मिनट पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा, विषय होगा उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनते हैं प्रातः 6:10 पर। नमस्कार मिथिला कार्यक्रम 7:05 पर प्रसारित किए जाएंगे। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन आप सुनेंगे दिन में 9:10 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। दिन में 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। बच्चों के लिए हमारा कार्यक्रम होगा फुलवारी, जिसे हम दिन में 10:30 पर प्रसारित करेंगे। हेलो जिंदगी कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11:00। विषय होगा हेपेटाइटिस एवं लीवर संबंधी अन्य समस्याएं और सावधानियां। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुमित कुमार सुमन। सखी बहिन कार्यक्रम दोपहर 12:00 प्रसारित किए जाएंगे। मैथिली नाटक आप सुनेंगे 12:30 पर। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे दोपहर 1:10 पर। 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। रोजगार सूचना आप सुनेंगे दोपहर 2:10 पर। 3:00 आप सुनेंगे विद्यापति गीत। संध्या 5:00 समय होगा गजल का। विद्यापति गीत शाम 6:10 पर प्रसारित किए जाएंगे और गांव घर 6:30 पर प्रसारित किए जाएंगे। खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7:00। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत। कलाकार हैं सियाराम तिवारी।

विद्यापति गीत सुट रहे थे, कलाकार थे पंडित सियाराम तिवारी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं विनय कुमार झा के स्वर में ये विद्यापति गीत।

0: विनय कुमार झा के स्वर में ये विद्यापति गीत सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आई मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म आ एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 अंतर्गत पटना जाय राइड सेवाक शुभारंभ कयलनि। ओतहि मुख्यमंत्री बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालयक तृतीय दीक्षांत समारोह मे सेहो सम्मिलित भेलाह। समारोह मे विश्वविद्यालयक सफल विद्यार्थी लोकनि लेल उपाधि आ टॉपर छात्र छात्रा लोकनि के स्वर्ण पदक प्रदान कयलनि। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कहलनि अछि जे नव परिसीमनक आधार पर पंचायत चुनाव कराओल जायत। आकाशवाणी समाचार सँ विशेष गपशप मे श्री प्रकाश स्पष्ट कयलनि जे विभाग चुनाव के टारबाक कोनो निर्णय नहि कयलक अछि। ओ कहलनि जे परिसीमनक काज पूरा होइतहि चुनावक प्रक्रिया शुरू कऽ देल जायत। श्री प्रकाश कहलनि जे परिसीमनक काज चुनाव आयोगक निर्देशन मे होयत। ओ कहलनि जे एहि लेल विभागीय तैयारी पूरा कयल गेल। योजना आ विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा विधायक आ विधान पार्षद लोकनि के पत्र लिख कऽ विकास काज में तेजी आनबाक अपील कयलनि अछि। श्री कुशवाहा विधानमंडलक सदस्य सभ सँ क्षेत्रीय विकास योजनाक अंतर्गत अपन अपन क्षेत्रक योजना सभ लेल अनुशंसा प्रस्ताव पठेबाक लेल कहलनि अछि, ताकि योजना सभक क्रियान्वयन शीघ्र कयल जाय। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलासक अध्यक्ष आ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहलनि अछि जे हुनक पार्टी एनडीएक एक महत्वपूर्ण घटक अछि, मुदा संगठन विस्तार लेल पार्टी उत्तर प्रदेश, पंजाब आ उत्तराखंड मे चुनाव मैदान मे उतरत। दिल्ली मे पत्रकार लोकनि सँ गपशप मे ओ कहलनि जे गठबंधनक स्वरूप आ आन विषय के लऽ कऽ चर्चा कयल जा रहल अछि। भारतीय जनता पार्टीक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आइ पटना पहुँचलाह। श्री नवीन पार्टीक बूथ स्तरक कार्यकर्ता लोकनि संग पैसार कऽ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लऽ कऽ रणनीति पर चर्चा करताह। भाजपा अध्यक्ष, विभिन्न मंडलक अध्यक्ष आ पार्टीक वरिष्ठ पदाधिकारी लोकनि संग सेहो हुनक बैसार होयत। विदित अछि जे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र मे उपचुनाव के लऽ कऽ प्रचारक शोर बढ़ि गेल अछि। प्रदेशक अधिकांश भाग में मानसूनक सक्रियता सँ बरखा भऽ रहल अछि। मौसम विभाग अगिला 24 घंटा में बेगूसराय, गया, जमुई आ नवादा जिला में कतेको ठाम अत्यधिक बरखा के लऽ कऽ ऑरेंज अलर्ट जारी कयलक अछि। ओतहि पटना, अरवल, बक्सर, भोजपुर, किशनगंज, नालंदा, रोहतास आ शेखपुरा जिला में भारी बरखा हेबाक संभावना बनल अछि। पछिला 24 घंटा में गया, औरंगाबाद आ पूर्णिया जिला में

0: एक दू ठाम भारी वर्षा दर्ज कयल गेल। गया जिलाक डोभी मे सबसँ बेसी 96.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज कयल गेल। मैथिलीक प्रसिद्ध संस्था चेतना समिति आइ अपन 73वां स्थापना दिवस मना रहल अछि। पटनाक विद्यापति भवन मे आयोजित कार्यक्रम मे मैथिली भाषा, संस्कृति आ परम्परा के संरक्षण देवा पर जोर देल जा रहल अछि। एहि अवसर पर आयोजित कार्यक्रम मे एखन दरभंगा घरानाक राष्ट्रपति पुरस्कार सँ सम्मानित कलाकार उदय कुमार मल्लिक शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करताह। चेतना समितिक अध्यक्ष विवेकानंद झा जनौलनि समिति मिथिला आ मैथिलीक विकास लेल प्रतिबद्ध अछि। राज्य सरकार दुपहिया आ द्विपहिया वाहन सभ पर मोटर वाहन कर मे वृद्धि कऽ देलक अछि। नव व्यवस्थाक अंतर्गत 1,00,000 टाकाक मूल्य वाला दुपहिया वाहन सभ पर 12 वर्षक लेल 9% आ 1,00,000 टाका सँ बेसी मूल्य वाला दुपहिया वाहन पर 10% टैक्स लेल जायत। अधिसूचनाक अनुसार दुपहिया वाहन सभ पर टैक्सक दर मे 1% वृद्धि कयल गेल अछि। दरभंगा जिलाक फेकला थाना क्षेत्रक तेलिया पोखरि लग सड़क दुर्घटना मे मोटरसाइकिल सवार 2 युवकक मृत्यु भऽ गेलनि। भागलपुर जिला मे मुंगेर मिर्जापुर चौकी फोरलेन पर गनगनिया रेलवे स्टेशन लग एक हाइवा आ पिकअप वैनक टक्कर मे 2 गोटेक मृत्यु भऽ गेलनि। बेगूसराय जिलाक विभिन्न स्कूल सभ मे एक पेड़ माँ के नाम अभियानक अंतर्गत पौधारोपण अभियान चलाओल जा रहल अछि। एहि क्रम मे एखन धरि 1,00,000 सँ बेसी पौधा लगाओल जा चुकल अछि। मुंगेर जिला मे टीबी मुक्त भारत अभियानक अंतर्गत विभिन्न स्थान पर शिविर लगा कऽ टीबीक जांच कयल गेल। प्राप्त जनतबक अनुसार एहि शिविर मे संभावित लक्षण वाला 30 व्यक्ति के चिन्हित कयल गेल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गाम घर।

0: गाम घर सुननिहार सुधीर श्रोता लोकन के विजय कुमार सिन्हा के नमस्कार। श्रोतागण, आई गाम घर के दलान पर अनिल भाई बैसल छत, त अनिल भाई अहूँ के नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार विजय भाई, देखियो आई शनि दिन है, आजुक दिन गाम घरक दलान पर हम सब सुनै छी कार्यक्रम झरोखा, तो सबसे पहिने श्रोता लोकन के कह दियो जे आजुक जे झरोखा कार्यक्रम है ओकर मुख्य आकर्षण की है। आई हम सब गप करब सबसे पहिने मिथिलांचल के प्रमुख धार्मिक आ ऐतिहासिक जे दर्शनीय स्थल है ओकर संदर्भ में, एकर उपरांत जे छै से एक बहुत नीक उपयोगी भेंटवार्ता सुनब हम सब, स्वच्छता अपनाओ आ रोग भगाओ। भेंटवार्ता का रहता अमित कुमार दास आ हिनका संग गप करता अनिल कुमार कर्ण। मुदा ताहिसँ पूर्व हम सब मिथिलांचल के जे प्रमुख दर्शनीय स्थल है ओहि सन्दर्भमे किछु गप करी।
0: अनिल भाई, देखियौ जे मिथिलांचल अपन समृद्ध संस्कृति, इतिहास आ धार्मिक स्थलक लेल प्रसिद्ध अछि। एहिठामक प्रमुख आकर्षणमे सीतामढ़ी माता सीताके जन्मस्थली जानकी मन्दिर, दरभंगाके राज किला, मधुबनीक राजनगर पैलेस शामिल अछि। एकर अलावे एहिठामक विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग सेहो पर्यटक लोकनिके आकर्षित करैत अछि। मिथिलांचलक प्रमुख दर्शनीय स्थल जेना अछि दरभंगा किला आ राज परिसर, ई भव्य महलक एकटा समूह अछि जाहिमे नरगौना पैलेस, आनंद बाग भवन आ बेला पैलेस शामिल अछि। तकर बाद भेल श्यामा मंदिर। अनिल भाई, ई राज परिवार द्वारा बनवाओल गेल ई एक सबसँ प्रसिद्ध आ प्राचीन

0: मंदिर थिक। एकर बाद कुशेश्वर स्थानक पक्षी अभयारण्य प्रवासी पक्षी के देखबाक लेल सबसे नीक ऐतिहासिक जगह है, खास कर सर्दी के मौसम में।
1: एकर अतिरिक्त देखियो मिथिलांचल अपन सभक जे सभ्यता एहिठामक संस्कृति ओ विश्व प्रसिद्ध है। एकर अतिरिक्त जँ गप करी तो मधुबनी पेंटिंग्स और सीताराम सर्किट में बहुत रास जगह एखनो अछि, जेना जनकपुर धाम मंदिर भेल, ओ पहिने मिथिलांचल के क्षेत्र छल। एकर अतिरिक्त अपने चर्च के लिए पुनौरा धाम के दरभंगा से लगले सटल अछि अहिल्या स्थान, कपिलेश्वर स्थान।
0: कपिलेश्वर स्थान मधुबनी जिला में स्थित एकटा भगवान शिवक एकटा अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर अछि। तकर बाद मिथिला हाट ई बिहार पर्यटन विभाग द्वारा विकसित एकटा सांस्कृतिक केंद्र छै, जतय अपने लोकन स्थानीय व्यंजन आ हस्तशिल्पक आनंद लअ सकै छी।
1: तऽ हम सब गप करब छोट सन विराम।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: तो विजय भाई, हम सब गप कर रहल छलहुँ मिथिलांचलक जे प्रमुख दर्शनीय स्थल है ओहि संदर्भ में, तो किछ जे आरो बाँचल सब है ओक संदर्भ में कहल जाए।
0: देखियो अनिल भाई, तो बिस्फी जे है मधुबनी जिला स्थित बिस्फी कवि कोकिल विद्यापति के जन्मस्थल थिक। कहल गेल अछि कि विद्यापति के भक्तिभाव से अभिभूत भ कऽ भगवान शंकर उगना बनि कऽ हुनका ओतय आयल छलाह। तो और अहाँके अहिल्या स्थान कहलिए अपने, ओ दरभंगा जिलाक जाले प्रखंड में अहिल्या स्थान स्थित अछि। आ ई मानल जाइत अछि कि अपन पति गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर बनि गेल रहथि, तैं अतय भगवान राम के चरण स्पर्श से हुनका उद्धार भेल छल। तऽ रामचरित मानस में तुलसीदास आ रामायण में वाल्मीकि जी एहि भूमि के बड़ बेसी पावन बतौलनि। एहिठाम से किछु दूर स्थित ब्रह्मपुर गौतम ऋषि से जुड़ल स्थान अछि। तकरा बाद भेल उच्चैठ भगवती मंदिर मधुबनी। अनिल भाई, मधुबनी जिलाक बेनीपट्टी गाम में सिद्धपीठ उच्चैठ भगवतीक मंदिर स्थित अछि। ई एकर ऐतिहासिक महत्व अछि।
1: एहन कहल जाइ छै जे कालिदास के एहिठाम ज्ञान प्राप्त भेल छलनि, बड्ड सिद्धपीठ अछि, प्रसिद्ध मंदिर अछि।
0: हाँ, एकर अलावा भेल अहाँके उग्रतारा स्थान। अनिल भाई, ई सहरसा जिला में स्थित अछि। सहरसा जिला महिषी में स्थित अछि उग्रतारा स्थान। ई प्रमुख शक्ति पीठ में से एक अछि। आ एहन मानल गेल अछि कि भगवान सतीक बायां नेत्र अतः गिरल छल। ई स्थान तंत्र साधना के लेल विख्यात अछि।
1: आरो हम सब गप करब एहि संदर्भ में, मुदा छोट सन विराम।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।

0: तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: भैया अखन साँझक बेर अइ, अखन हरेक आंगन में भगवतीक मंदिर में पूजा अर्चना भऽ रहल अछि। आ तऽ किएक ने हमहूँ सब गामक दलान पर, जे गाम घर के दलान अइ, ओहि पर सुनी हमसब एकटा सुंदर सन ई भगवती गीत।
4: सुनल जाए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: हाँ विजय भाई, आई संदेश सब पहिने हम सब गीत सुनित रहूँ। गीता कलाकार छली विभा झा। देखियो, एहन सब गोटे जने छी जे स्वच्छता में भगवानक पास हुई है, साफ सुथरा चिकन चुनमुन सब गोटे के निक लगे। जो अपने स्वच्छ रहे छी, साफ सुथरा रहे छी, तो बहुत तरहक जे रोग व्याधि आवा वाला हुई है वही सब बचल जा सकैया। तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहबा में स्वच्छता के बड़ बेसी योगदान है। तो आइ हम सब एहने विषय से संबंधित एक भेंट वार्ता सुनै छी, स्वच्छता अपनाओ और रोग भगाओ। भेंट वार्ताकार छथि अमित कुमार दास,
4: हुनका सा भेंट कर रहल छथि अनिल कुमार कर्ण। तो सुनी हमार लोकन ई भेंट वार्ता।
5: श्रोता लोकन, गाम घरक दलान पर अपने सब गोटे के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। कार्यक्रम में एक युवा कर्मठ आ मेहनती अतिथि उपस्थित छथि, ओ छथि अमित कुमार दास। अपने शिक्षक छी आ शिक्षण काज में लागल छी। अपने के कार्यक्रम में स्वागत, संगे अपने के नमस्कार। आई हम सब गप करब जे स्वच्छता अपनाओ आ रोग भगाओ। तो अमित कुमार दास जी, हम अपने से जानना चाहब जे स्वच्छता शब्द से की तात्पर्य है, इस संबंध में विस्तार से कहल जाए।
6: धन्यवाद अनिल कुमार कर्ण जी, अहाँ हमरा एहि कार्यक्रम में दू शब्द बाजे के अवसर दलौं, ताहि हेतु अपने के हृदय से आभार व्यक्त करे छी। और खास कर स्वच्छता जे अछि तेकर संबंध स्वास्थ्य से अछि, चूंकि अगर केओ भी व्यक्ति स्वस्थ रह चाहे छै, अगर स्वस्थ रहता तखने उनका धन वैभव सुख शांति समृद्धि एहि चीज के कामना होय। अस्वस्थ व्यक्ति कखनो कोनो चीज के सही ढंग से

0: निर्णय नहि लऽ सकैत छथि, चूँकि कहल गेल अछि जे एकटा स्वस्थ भिखारी एकटा अस्वस्थ राजासँ ज्यादा धनवान होइत छथि। ताहि दुआरे हम निवेदन करब सब व्यक्तिसँ सबसँ पहिले अपन शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता आओर व्यक्तिगत रूपसँ जे हमसब अभिव्यक्ति करै छी, बाजै छी, तहूमे स्वच्छ भाषाके उपयोग करी, ई बहुत ही नीक हैत। शारीरिक स्वच्छतासँ सम्बन्ध अछि शरीरक स्वच्छता। तऽ हर व्यक्ति सबसँ पहिले तऽ स्वस्थ तखने रहब जखन हम अपन शरीरके स्वस्थ राखब। स्वस्थ तखन रहब जखन अपन सही ढङ्गसँ अपन क्रियाकलाप सही ढङ्गसँ शरीरके स्वच्छ राखब, प्रतिदिन स्नान करब, नाखूनके काटब, दाँत साफ करब, या जाहि तरहसँ अपना आपके स्वस्थ राखि सकै छी, अगर हम प्रतिदिन अपना आपके स्वस्थ राखब तऽ हमर शरीर स्वस्थ रहत। अगर हमर शरीर स्वस्थ रहत तऽ हमर मन प्रसन्न रहत, आओर जखन मन प्रसन्न रहत तखन हम सही ढङ्गसँ कोनो चीजके निर्णय लऽ सकै छी।
1: देखियौ, एहन कहल जाइ छै जे स्वच्छतामे भगवानक वास होइए, आ जतऽ भगवान विराजमान रहै छै तऽ सब काज अनेरे नीक जकाँ होबऽ लगैए। संगे स्वच्छता बड्ड बेसी आवश्यक अछि, स्वच्छतासँ हमर शरीर स्वस्थ रहैए। कोनो व्यक्ति अस्वस्थ आ रोगी नहि रहऽ चाहै छै तऽ स्वच्छताके अपना कऽ हम स्वस्थ रहि सकै छी, मुदा बेसी लोक ई काजके करै छै, मुदा किछु व्यक्ति एखनो एहिसँ दूर छै, तऽ हुनका लेल की कहऽ चाहबै?
0: सरकारके एकटा महत्वपूर्ण योजना अछि जे अहाँके 2 अक्टूबर 2014 भारतके यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संचालित भेल, महात्मा गांधी के 145वीं जयंती के शुभ अवसर पर ई अभियान, स्वच्छ भारत अभियान जे छे से दिल्ली के राजघाट सँ संचालित भेल। ई तो सरकार के द्वारा भेल, लेकिन जावत तक जन जन में एहि चीज के जागरूकता नहीं हेते, सबसे पहले तो हम अपना घर आंगन अगल बगल साफ राखी, और तत्पश्चात हमर जे पड़ोसी छथि, हमर जे समाज छथि, हुनको एक प्रति हम प्रेरित करिए जे अहाँ स्वच्छ राखू, अगल बगल के साफ राखू। चूँकि जा तक कूड़ा के प्रबंधन नहीं हैत, कचरा के प्रबंधन सही ढंग से नहीं हैत, ता तक जे छे से हम अगर अपन घर में स्वच्छ रहब और अगल बगल गंदगी में रहत तो ओइसे हमर स्वयं प्रभावित भ सकै छी। हम देखै छी अक्सर या तो मेला ठेला या दुकान दौरे बाट हाट में देखै छी जे जतेक खाई पीबे के जे सामान अछि से ओहिना उघारे रहैत अछि, जे पर जे छै कई तरह के रोगक कीटाणु बैसैत अछि, और वएह हम सब खाइ छी और जे छै से हम रोग के शिकार भ जाइ छी।
1: खूब सुंदर नीक गप अपने कह रहल छी। कोनो काज जे आरंभ होइए ने घरे सँ आरंभ होइए, अपन विचार में स्वच्छता, व्यवहार में स्वच्छता, एहि काज के खास कऽ जे युवा वर्ग लोक सब छथि ओ एहि काज में कोना सहयोग कऽ सकै छथि? किया युवा वर्ग के लोक सब में प्रकृतिक दिस सँ बेसी ऊर्जा प्रदान कयल जाइए, एहि संबंध में अहाँ की कहऽ चाहबै?
0: हम युवा साथी सँ ई आग्रह करबनि जे चूँकि अहाँ मे ज्यादा ऊर्जा अछि और ऊर्जावान छी, तै हेतु अपने तो पहले स्वस्थ रही, अपने घर के स्वास्थ्य के अनुकूल बनाबी, संगहि संग जतेक मित्र मंडली छथि हुनका एकटा ग्रुप बना लिय, एकटा मेंबर शिप सब से लो लिया, और हर वार्ड में हर मोहल्ला में जाके हर लोग से भेंट कर के स्वास्थ्य के प्रति और स्वच्छता के प्रति जागरूक करू। और अगर हर व्यक्ति जागरूक भ जाए तो हमरा दृष्टिकोण से जे छै से रोग मुक्त भ सकै छी, और हर परिवार जे छै अगर स्वच्छता के अपना लै छै संगहि संग ओ जतेक हमर कर्मठ सहयोगी युवा छथि हुनका से आग्रह जे हर घर से हर व्यक्ति से समन्वय स्थापित कऽ के हुनका एहि तरफ जे छै से अपन विचार से अवगत कराबैत जे स्वच्छता से की अभिप्राय छै, किया हम स्वच्छ रहऽ चाहै छी। चूँकि स्वच्छता जावत नहि रहते, जावत केओ व्यक्ति स्वच्छ नहि रहता तऽ हुनकर जे छै से मन स्थिति जे छै से ठीक नहि रहतनि, और मन स्थिति ठीक नहि रहतनि तऽ घर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हेतनि, शारीरिक और मानसिक कष्ट हेतनि। तै हेतु सब युवा से आग्रह जे अपन मित्र मंडली आ टोली बना के अपन समाज में, अपन गांव में, अपन वार्ड में अगर एहि तरह के कार्यक्रम चलाबी जे हमरा सप्ताह में एक दिन, महीना में, या जेना अहाँ के अपन हुए ओहि तरह से एकटा समय सुनिश्चित कऽ के हर व्यक्ति के प्रति जागरूक करी, जैसे हमर जे अभियान अछि ओहिसँ हम सफल भ सकै छी।

0: स्वच्छता जखने अपनाएब तो हमरा से रोग दूर हैत। धन्यवाद।
1: अमित कुमार दास जी अपने खूब बढ़िया आ नीक जानकारी दऽ रहल छी। एकटा घटना कहू, बच्चा में प्राय सब गोटे संगे एहन भेल है जे गाम में रहत रही भट्ठा से वा चिमनी से ईटा अगल बगल में खसत रहे, कोनो व्यक्ति मंगवत रहे तो धियापुता या हमहू सब ओकरा की करत रही जे ईटा सब के ठार कऽ दैत रही, कनेक कनेक दूरी पर ठार आ एकटा ईटा के खसवत रही तो सबटा ईटा खसि पड़ित रहे। तो ई देख कऽ मन में उत्साह होत रहे जे ऊर्जा जे छे एक स्थान से दोसर स्थान स्थानांतरित होइए चलिए जाइए। एहने सन काज ई अछि स्वच्छता। अहाँ लोक सब के अंत में की संदेश देव चाहबे जे एक व्यक्ति जो एकरा अपना लेता तो अपन सबक जे देशक आबादी है, अपन देशक जे जनसंख्या है, सनय सनय ई जन आंदोलन के रूप लो ले जे सब गोटे स्वच्छ रहब तो सब गोटे स्वस्थ रह सके छी। तो मूल शब्द में जो गप करी अहाँ से स्वच्छता के संबंध में हमरा कनेक शब्द में एक जानकारी दिया जी, ऐ संबंध में अहां लोग सब के की संदेश देवो चाहबें, की कहो चाहबें।
0: धन्यवाद अनिल कुमार कर्ण जी, अपने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिलिए जे बच्चा में हम सब गोटे ईट के खड़ा कर के जे छे से एकटा के गिराबे छलो तो संग है सबटा ईटा गिर पड़े छल, ओइसे काफी हम सब ऊर्जावान होइत रहौ, बड़ा खुशी होइत रहे, हृदय गदगद भ जाइत रहे। ई एक बहुत पैघ उदाहरण है। अगर हम एकरा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखे छे, अगर हम स्वस्थ भ गेलौ दोसर के कहलियन, तेसर के कहलियन, चारिम के कहलियन, ऐ तरहे हमर पूरा समाज स्वस्थ भ जाता, गांव स्वस्थ भ जात, गांव स्वस्थ हैत, प्रखंड स्वस्थ हैत, जिला स्वस्थ हैत, राज्य स्वस्थ हैत और हमर देशक हर एक व्यक्ति स्वस्थ भ जाता। ओना ही अगर एकर हम अवहेलना करे छी तो हमर रोग के जे कीटाणु अछि वो एक व्यक्ति से दोसर व्यक्ति में, दोसर व्यक्ति से तेसर व्यक्ति में और एना ही हम सब आदमी संक्रमित भ जाएब। जेना पहले हो छल जे बाढ़ आबे छल तो बाढ़ आबे छल तो लोग जे छै से जत तत के पानी पीबे छलैत और ओइसे हैजा, टाइफाइड, मलेरिया कई तरह के बीमारी के लोग शिकार भ जाए छलैत हन। लेकिन आब धीरे धीरे लोग के इस संज्ञान में आबि गेल छन जे नहीं, हम दूषित पानी नहीं पीबी, हम बाहरक खाना नहीं खाए, जे ढकल खाना छे तेकरे खाए और सही दिशा में अगर लोग के जानकारी भ जाए जे वस्तुतः हमरा जे उघार वस्तु छे ओकरा नहीं खेबाक चाही, अगर उघार पानी छे ओकरा नहीं पीबाक चाही, तो अपन स्वास्थ्य के प्रति सजगता जे छे सबसे पैघ लोग के आगू बढ़ा सके छे और रोग से मुक्त कर सके छे। तै दुआरे सबसे पहले हम सब आदमी से निवेदन करब जे पहले अगर हम सजग हैब तखने दोसर आदमी के सजग करब, हम रोग मुक्त हैब तखने दोसर आदमी मुक्त हैब। तही हेतु अगर हर आदमी ई दृढ़ संकल्पित भ जाए आई के दिन में जो हम रोग मुक्त भ जाए और स्वच्छता के हर एक नियम के अपनाएब तो हर व्यक्ति हमर देश स्वच्छ भ सकत और रोग मुक्त भ सकत।
1: अमित कुमार दास जी देखियो अहाँ निक गप कह रहल छे जे स्वच्छता हमर अहाँ संस्कार, हमर अहाँ संस्कृति में रचल बसल है। मुदा पहिने ई होइ छल जे कोनो गाम में किनको एहिठाम कोनो अतिथि अबैत रहित त दलान पर बैसैत सबसे पहिने हुनका एक लोटा पानि देल जाइ छल, तौनी देल जाइ छल जे पैर धो आ ओकरा पैर के पोछू। मुदा वर्तमान काल में अहाँ देखब जे आधुनिकता के लेप में आधुनिकता से हम सब बेसी प्रभावित भ रहल छी, खास कर नवतुरिया धियापुता जे छे ठारे ठार भोजन करता, कतौ खा लेता, सड़क के कात में बिको वाला जे वस्तु हुई है ओकरा ग्रहण कर लेता, जाहि से रोगग्रस्त भ जाय छे, रोगी भ जाय छे, अपन शरीर में कष्ट होय छे। त अइ संबंध में एक से दू शब्द में की कह चाहबे अहाँ?
0: सबसे पहिल बात छे जे हम सजग रही और अगर सजग रहब तो हम अपन स्वास्थ्य के, अगर स्वास्थ्य हमर धन है, अगर हमर पहले हम कहने रहूं जे मनुष्य के सबसे पैघ जे धन छे वो स्वास्थ्य छे, अगर हमरा अपना स्वास्थ्य के प्रति प्रेम है तो हम स्वच्छता के नियम के अपनाएब और ई सबसे पैघ मूल मंत्र छे रोग मुक्त होय के लेल जे स्वच्छता के नियम के अपना कर हम रोग मुक्त भ सके छे।
1: अमित कुमार दास जी अपने गाम घर कार्यक्रम में स्वच्छता के संबंध में जे हमर नारा है जे स्वच्छता अपनाओ आ रोग भगाओ, इस संबंध में श्रोता लोकन के नीक जानकारी दिलियन, ताहि लेल

0: अपनेका धन्यवाद।
1: धन्यवाद अनिल कुमार करण जी, एहि कार्यक्रम में हमरा बाजे के अवसर देलौं, ताहि हेतु अहाँ के हृदय से धन्यवाद।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: विजय भाई, एहि संदेश सँ पहिने हम सब भेंट वार्ता सुनै छलहुँ जे बड उपयोगी भेंट वार्ता छल, स्वच्छता अपनाऊ आ रोग भगाओ। भेंट वार्ता कर छला अमित कुमार दास आ हुनका संग गप कर रहल छला
4: अनिल कुमार कर,
3: तो नीक जानकारी भेटल। देखियो, सब गोटे अधिकारक चर्च करै छी, मुदा अधिकारक संग कर्तव्य लागल रहैए। तो अहाँ के अधिकार अइ जे सड़क पर चलू, मुदा संगे संग कर्तव्य अइ जे बाम भाग सँ चली। एहि संगे आप विजय भाई, आप जे छै आजुक जरोखा कार्यक्रम के समय सम्पन्न हेबा पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में सब किसान भाई लोकनि के स्वागत, संगे सब गोटे के नमस्कार। आइ खेती गृहस्थी में हम सब जे जाहि विषय पर चर्च करब, ओ हरेक किसान भाई लोकनि के मन में ई गप रहै छनि जे हमर जे खेत अइ, हमर जे खेत के रकबा अइ, ओहि सँ बेसी से बेसी उपजा केना लेल जाय, संगे गुणवत्तापूर्ण आ नीक फसिल केना लेल जाय। एहि लेल आवश्यक अछि जे मृदा के स्वास्थ्य, माटिक संरचना, एहिपर बेस ध्यान देब। संगे विजय भाई, हम इहो कहब जे खेत के माटि हमर सभक जीवन के अनमोल धरोहर अछि। माटि एकटा जीवित धरोहर अछि, ई निर्जीव पिंड नहि अछि, ई अनेक छोट आ नम्हर जीव के वास स्थान अछि। एहिसँ मानव आ अन्य जीव जन्तु के भोजन, वस्त्र, आवास, संगे दैनिक क्रियाकलाप के अनगिनत आवश्यकता के पूर्ति हुई है। माटिक निर्माण कोनो प्रयोगशाला में नहीं होते, एक इंच माटि के परत के निर्माण में लगभग 800 से 1000 वर्ष धरि का समय लगते। माटिक बिना एहि पृथ्वी पर जीवन असंभव है। अतेक जे बहुमूल्य माटि ओकर रक्षा करब हमर सभक धर्म है।
4: अवश्य के ना, देखियो नीक गप कहलिए अनिल भाई। आ ई माटि जाँचक एहिसँ जे मुख्य लाभ अछि, ओ जेना एकर सही मात्रा में उर्वरक, तऽ अनावश्यक रासायनिक खर्च बचैत अछि एहिसँ, आ जमीन उर्वरता बनल रहैत अछि। एकर बीमारी सँ बचाव, तऽ माटि के कमी के पता चलबा पर पौधा के रोग सँ एकरा बचाओल जा सकैत अछि, एकरा बुझलिए न। और जे छै माटिक नमूना लेबाक सही विधि, एकर स्थानक चुनाव करबाक चाही हमरा लोकनि के। खेत के 8 से 10 अलग अलग स्थान पर माटि ली, एकर आड़ि, गाछ के नीचा या खाद के गड्ढा वाला जगह सब माटि नहीं ली। एकर गहराई जे ओ भी आकार के 15 सेंटीमीटर, लगभग 6 इंच गहीर एकर गड्ढा खोदी।
3: देखियो, ई तो गप भेल जे माटि के जांच के लेल नमूना कोना ली, मुदा गप करी फसिल के गाछ सभक उचित विकास के लेल 17 टा जे आवश्यक पोषक तत्व सब अइ, ओ संतुलित मात्रा में सही स्रोत सँ, सही स्थान आ सही समय पर उपलब्ध रहब आवश्यक अछि। रासायनिक खाद के बेसी अनर्गल व्यवहार सँ मृदा के स्वास्थ्य आ फसिल के गुणवत्ता खराब भऽ रहल अछि। फसिल लगेबा सँ पहिने खेत के माटिक जांच अनिवार्य अछि।

0: जाहिसँ एहि गपके पता लागि सकय जे खेतक माटिमे कोन पोषक तत्वसभ केहन स्थितिमे अछि। सभ किसान भाइ लोकनिसँ आग्रह जे एकटा निश्चित समय अन्तरालपर अपन खेतक माटिक जाँच करा ली, ई नीक उपजाके मूल मंत्र अछि। एकर बाद जे कृषि वैज्ञानिक लोकनि अनुशंसा करै छथि ताहि अनुरूपे खाद आ उर्वरकके व्यवहार करक चाही। एहिसँ दू तीन टा लाभ होइए। पहिल गप जे खर्चामे कमी होइए आओर उपजा अपने बेसी लऽ सकै छी। अपन खेतके माटिक जाँचक लेल जिला स्तरपर माटि जाँचके प्रयोगशाला अइ, ओहिठाम जाँच करा सकै छी। एकर अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र स्थानीय कृषि विश्वविद्यालयमे सेहो एकर व्यवस्था अछि।
1: देखियौ अनिल भाई, माटि परीक्षण जे अछि माटिक जाँचसँ माटिक उर्वरता आ ओहिमे मौजूद पोषक तत्वक जानकारी मिलैत अछि। एहिसँ किसान भाई लोकनिके ई तय करबामे मदद मिलैत अछि कि फसिल लेल कतेक आ कोन खादक उपयोग केनाइ अछि, जाहिसँ फसिलके पैदावार बढ़ैत अछि आ लागत कम होइत अछि। आ माटि परीक्षण किया करबाक चाही तऽ एकर मुख्य कारण अछि पैदावारमे बढ़ोतरी, उपजमे बढ़ोतरी। अपने जे कहलियै तऽ खेतमे आवश्यक पोषक तत्व जेना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासक एकर सटीक मात्राके पता चललासँ फसिलके नीक विकास होयत अछि आ उपजमे सेहो वृद्धि होइत अछि।
0: देखियौ, प्रयोगशालाके जे जाँच रिपोर्ट होइए, अपने खेतके मृदा जाँचके उपरान्त खेतके माटिक पीएच मान अर्थात अम्लीयता वा क्षारीयताक सम्बन्धमे जानकारी भेटैए। एकर अतिरिक्त अपन खेतके माटिमे कोन पोषक तत्व सभक मात्रा कम अछि वा बेसी अछि, एहि सम्बन्धमे विस्तारसँ जानकारी भेटैत अछि। मूल रूपसँ जँ ई कहल जा सकैत अछि जे अपने खेतसँ नीक उपजा लेबऽ चाहै छी तऽ एकटा निश्चित अन्तरालपर खेतक माटिक जाँच जरूर करा ली। तऽ आब जे छै से बेर भऽ चलल अइ प्रायोजित कार्यक्रमके, तऽ सुनी प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान
1: सुना जाए।
2: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं अनकर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, हमेशा की तरह आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें। तो श्रोताओं, हमारा नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827। और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एडिक्शन पर। जी हाँ, जिसे हम नशा भी कहते हैं।
3: मुझे पीने का शौक।
2: जी हाँ श्रोताओं, कभी शौक के नाम पर तो कभी दोस्ती की आड़ में, कभी दुनिया के दुखों का बहाना करके तो कभी कोई मजबूरी बताकर, कभी टेंशन तो कभी बोरियत दूर करने के लिए लोग शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि अनेक प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। लेकिन नशा कब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नशा ऐसी बीमारी है जो हमें, हमारे समाज को, हमारे देश को तेजी से निगलती जा रही है। युवा पीढ़ी के लिए कोई सबसे खतरनाक बीमारी है तो वो है नशे के जाल में फंसना। जी हाँ श्रोताओं, इस विषय पर मुझे एक अमीर आदमी की कहानी याद आती है जो अपने बेटे की किसी बुरी आदत से बहुत ज्यादा परेशान था, और जब भी वो अपने बेटे से बुरी आदतों को छोड़ने की बात करता तो उसे बस एक ही जवाब मिलता, अरे पापा अभी तो मैं इतना छोटा हूँ, धीरे धीरे ये आदत छोड़ दूंगा। और वो अमीर आदमी का बेटा कभी भी उस बुरी आदत को छोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो ऐसा हुआ, उन्हीं दिनों एक महात्मा जी गांव में पधारे हुए थे। जब उस अमीर आदमी को उनकी खयाती के बारे में पता चला तो वह तुरंत उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने लगा। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आइए, वहीं मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगली सुबह पिता और पुत्र दोनों बगीचे में पहुंचे। महात्मा जी ने बेटे से बोला, आइए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते ही महात्मा जी अचानक रुके और बेटे से कहा, बेटे क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो?

बेटे ने कहा, जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसे कहते हुए बेटे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो। बेटे को तो मानो इन सब में कितना मजा आ रहा हो, वह तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। इस बार उसे थोड़ी मेहनत लगी, पर काफी प्रयत्न के बाद उसने इसे भी उखाड़ दिया। वे फिर आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद पुनः महात्मा जी ने गुलहड़ के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बेटे से इसे उखाड़ने के लिए कहा। बेटे ने पेड़ का तना पकड़ा और इसे जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ तो बेटा बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत पेड़ है, इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है गुरुजी। महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ठीक ऐसे ही बुरी आदतों के साथ भी होता है, जब वे नहीं होती हैं तो उन्हें उखाड़ना आसान होता है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं उन्हें छोड़ना मुश्किल होता जाता है। बेटा उनकी बात समझ गया और उसने मन ही मन आज से ही बुरी आदतों को छोड़ने का निश्चय किया। जी हाँ श्रोताओं, कुछ ऐसा ही हाल है हमारे युवाओं का। कुछ लोग शराब पीने के पक्ष में ये तर्क देते हैं कि अरे दो पैक पीने के लिए तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं, लेकिन दोस्तों कितने लोग हैं जो काफी समय बाद भी दो पैक पीने पर ही सीमित रहते हैं। हकीकत तो ये है कि कब दो पैक चार पैक में, चार पैक क्वार्टर में और क्वार्टर बोतल में परिवर्तित हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। वैसे लोग शराब का सेवन कई प्रकार से करते हैं, कुछ लोग नियंत्रित मात्रा में उचित तरीके से पीते हैं और इनके शराब पीने से किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए शराब जिंदगी की बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। शराब पर उनका नियंत्रण नहीं होता, बल्कि शराब का उनकी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण होता है। इनकी जिंदगी में शराब ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु बन जाती है। शराब की वजह से उनकी जिंदगी में अनेक पारिवारिक, शारीरिक तथा मानसिक परेशानियां खड़ी हो जाती है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद व्यक्ति शराब नहीं छोड़ पाता है। यही शराब का सबसे बड़ा दुर्गुण है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कौन कमबख्त पीता है मजा लेने के लिए, हम तो पीते हैं क्योंकि पीनी पड़ती है। शराब पीने की आदत के कारण शर्मिंदगी महसूस करना, शराब के विषय में दूसरे लोगों के द्वारा टोके जाने पर गुस्सा होना, या सुबह की शुरुआत शराब के साथ करना, और कई बार ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति रात के हैंगओवर को दूर करने के लिए बिना कुल्ला मंजन किए ही शराब पीना शुरू कर देता है। और श्रोताओं ये अत्यंत ही घातक स्थिति है। श्रोताओं नशे की लत ने बसे बसाए कई परिवारों को उजाड़ दिया। माना भी जाता है कि एक बार जो नशे की गिरफ्त में फंस गया उसका बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है। मेडिकल साइंस भी कहती है कि लगभग 100 से 80 लोग नशा छोड़ने के बाद दोबारा इसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति हो तो उसके सामने कोई भी नशा नहीं टिकता। श्रोताओं ऐसे ही कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी बताती है जो नशे के शिकंजे में फंस गए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया नशे को ठोकर मार कर आगे बढ़े और खुशहाल जिंदगी की नई शुरुआत की। जी हाँ श्रोताओं, चंडीगढ़ के जितेंद्र सिंह 12वीं के छात्र थे। इस दौरान दोस्तों की संगति में आकर पहली बार सिगरेट का कश लगाया और फिर धीरे धीरे नशे के दलदल में फंसते चले गए। हेरोइन चरस तक का नशा आम लगने लगा। शुरुआत के दिनों में दोस्तों ने अपने पैसों से नशा खरीद कर दिया। कुछ दिनों में जब वो नशे के शिकंजे में बुरी तरह से फंस गए तो अपनी ही लत को पूरी करने के लिए घर में चोरियां करने लगे। हर जगह उन्हें दुत्कार व घर में पिटाई तक होने लगी, लेकिन परिजनों ने यह सोचकर शादी करवा दी कि शायद उनका बेटा सही राह में चल पड़े। श्रोताओं लेकिन यह कोशिश भी बेकार गई। जितेंद्र का एक बेटा हुआ, वो कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी के 18 साल बर्बाद करने के बाद एक दिन

उनके बेटे ने कहा कि पापा प्लीज नशा करना छोड़ दो। मासूम बेटे की आवाज ने जितेंद्र को अंदर तक झकझोर दिया और उसके बाद वो अपनी ही इच्छा से बरवाला के एक नशा केंद्र में पहुंचे और इलाज कराया। जब सब ठीक हो गया तो नौकरी की तलाश शुरू की और अब वे चंडीगढ़ स्थित एक सरकारी विभाग में आईटी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं। श्रोताओ, ऐसा ही कुछ हाल सेक्टर 41 में रहने वाले विजय ने बताया कि साल 2013 को उनकी मुलाकात चंडीगढ़ के डिस्को में एक शख्स से हुई। धीरे धीरे दोस्ती हो गई और उसकी संगति में आकर वो नशे के आदी हो गए। नशे के चक्रव्यूह में फंसकर वे हीरोइन, चरस, गांजा, अफीम का नशा करने लगे। अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उन्हें रोज कम से कम 4 से 5 हजार रुपए की आवश्यकता पड़ती थी। शुरुआत में पैसे आसानी से मिल जाते थे, लेकिन जब घर वालों को पता चला कि पैसों को वो नशे में उड़ा रहे हैं, तो परिजनों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब भाई घर में रोजाना लड़ाई होने लगी और एक दिन ऐसा हुआ कि विजय के पिता ने उनको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकल कर भी वह अपना शौक पूरा कर रहे थे, मगर जब एक दिन बाहर से भी कुछ नहीं मिला तो अपनी घर की याद आई। जी हाँ, किसी ने नशा केंद्र के बारे में बताया तो खुद ही सेक्टर 18 के नशा केंद्र में भर्ती हो गए। करीब 3 महीने के इलाज के बाद नशा छूट गया। तो श्रोताओं, माता पिता तो माता पिता होते हैं। विजय के पिता ने अपना बिजनेस दोबारा संभालने के लिए विजय को दे दिया। विजय की नई पारी अब खुशियों से भरी है। ऐसे ही नया गांव के रहने वाले 32 वर्षीय शुभम बताते हैं कि वह साल 2009 से चोरी छिपे, जी हाँ चोरी छिपे नशीले कैप्सूल का सेवन करते थे। इस कैप्सूल ने उन्हें अपना इतना आदि बना दिया था कि घर में चोरी करना उनके लिए जैसे आम बात हो गई थी। वह शहर के एक इलाके में नशीली गोली खरीद कर दिन में 2 से 3 बार सेवन करते थे। नशे की वजह से वो दिन भर घर में सोते रहते थे। ये देख एक दिन परिवार वालों को शक हो गया। उन्होंने जांच की तो पता चला कि वो नशे की गोलियां खाते हैं, तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर वाले जबरदस्ती उन्हें PGI नशा मुक्ति केंद्र ले गए और उनका इलाज कराया। श्रोताओं, करीब 3 महीने के इलाज के बाद सेहत में काफी सुधार आ गया। शुभम के रिश्तेदारों ने बताया कि अब वो किसी बिल्डर के साथ मिलकर अच्छी खासी नौकरी कर वो अपना परिवार चला रहे हैं। तो श्रोताओं, अगर जितेंद्र, विजय, शुभम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं। जी हाँ श्रोताओं, अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। मित्रों, आज वक्त है और वक्त रहते ही विचार करें कि आपके लिए, आपका परिवार, बच्चे, करियर और स्वास्थ्य, आपके नशा करने से इन चीजों पर कितना असर हो रहा है। थोड़ा रुक कर, बैठ कर गंभीरता से विचार करें। शराब छोड़ने का पक्का निश्चय करें। उन परिस्थितियों एवं ऐसे दोस्तों की संगति से बचे रहें जो शराब सेवन को बढ़ावा देते हैं। शराब की खाली बोतलें, केन आदि घर से बाहर फेंके। जब ड्रिंक करने की संभावना लगे तो समय पहले ही खाना खा लें या फिर पानी एवं तरल पदार्थों का भरपूर मात्रा से सेवन करें। हेल्दी खाना एवं जीवन शैली को अपनाएं। अपने रूटीन को बदलें। यदि काम खत्म करने के बाद शाम को शराब पीने की आदत है तो काम खत्म करने के बाद माता पिता, भाइयों एवं ऐसे लोगों से मिलने जाए जहां शराब पीकर नहीं जा सकते, या हो सके तो अपने इष्ट के दर्शन करने या धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। श्रोताओ, हार ना माने। यदि इतने उपाय करने के बाद भी नशा छोड़ने में आप सफल ना हो तो विशेषज्ञ एवं नशा मुक्ति केंद्र से राय लेने में देर ना करें। श्रोताओ, शराब, धूम्रपान, तम्बाकू ये सब सेहत के दुश्मन है। किसी भी स्थिति में नशे की लत से बचें। यदि आप नशे से बचे हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, किंतु यदि कोई नशा करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके नशे से दूरी बना ले, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो एक साथ कई परिवारों को बर्बाद कर देती है तथा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के नाश का कारण बनती है। इसलिए नशे से बचना ही बेहतर उपाय है। और श्रोताओं, ईश्वर ने हमारे लिए सारी चीजें उचित बनाई है, परंतु सारी वस्तुएं मनुष्य के लाभ की नहीं है और हम किसी बात के अधीन नहीं है। और ये शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर इसमें वास करते हैं। तो आइए इस मन के मंदिर को, जो कि हमारा शरीर है, इज्जत करें और इसे बर्बाद होने से बचाएं।

तो श्रोताओं, बहुत से श्रोता हैं जो कार्यक्रम को सुनते हैं और अपने विचार सुझाव, यहाँ तक कि क्या परिवर्तन उनकी जिंदगी में आया है, उसे हमसे साझा करते हैं। और हम सच में धन्यवादित हैं, क्योंकि आपके विचार, आपके सुझाव ही हमें अच्छा कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमारे श्रोताओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं: सूरज कुमार पालीगंज पटना से, सावित्री कुमारी समस्तीपुर बिहार से, अवधेश सीतामढ़ी बिहार से, कमल सीतापुर से, दुर्गा प्रसाद गोंडा यूपी से, छोटू कुमार मुजफ्फरपुर से, अब्दुल्ला महाराजगंज बिहार से, शत्रुघ्न लाल बाराबंकी यूपी से, राधेश्याम हरदोई यूपी से, ज्योति हरदोई मथुरा पासवान झारखंड से, राम नरेश शर्मा सीतामढ़ी बिहार से, आर्यन सिंह रामपुर यूपी से, सुरेंद्र सिंह बाराबंकी यूपी से, नवल किशोर जी सीतापुर यूपी से और नरेश चंद्र यादव अरावल बिहार से। जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अब हमें बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, और अगर आप नशे से संबंधित अपने एक्सपीरियंसेस या अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं को हमसे बांटना चाहते हैं ताकि रेडियो के माध्यम से दूसरों की जिंदगी बदल सके, या फिर आप भी कहानियाँ या कविताएं लिखने का शौक रखते हैं, तो हमें जरूर बताएं। अगले कार्यक्रम में आपके नाम के साथ हम उसे साझा करेंगे। तो श्रोताओं, हमें अपने विचार और सुझाव भेजने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल करें, या आप मिस कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8860088827। जी हाँ, 8860088827। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 01। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 01। अब मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें, और हाँ, नशे से दूर रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।

उड़ान एखन हमसब ई प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहल छलहुँ। अब बेर भऽ चलल अइ मौसम सम्बन्धी सूचनाके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र सँ 18 सँ 22 जुलाई 2026 धरिके जे मौसम पूर्वानुमान प्राप्त भेल ओ एहि तरहे अछि। एहि पूर्वानुमानित अवधिमे उत्तर बिहारके जिला सबमे जेना बेगूसराय, समस्तीपुर, सिवान, सारण, वैशाली, पूर्वी आ पश्चिमी चंपारण जिला सबमे 19 आ 20 माने आइ आ काल्हि मेघ गर्जन के संग वज्रपात आ तेज बरसात के संग वर्षा भ सकैत अछि। एहि जिला सब मे किछु मध्यम वर्षा सेहो भ सकैत अछि, कतौ कतौ भारी वर्षा हेबाक सेहो संभावना अछि। आन जिला सब मे हल्लुक सँ मध्यम वर्षा भ सकैत अछि। एकर अतिरिक्त माने आइ आ काल्हि 19 आ 20 जुलाई के छोड़ि कऽ पूर्व अनुमानित अवधि मे आन दिन जकाँ हल्लुक मेघ लागल रहत। संगे एहि अवधिमे तापमान अधिकतम जे छै 30 सँ 35 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 25 सँ 28 डिग्री सेंटीग्रेड के। भिनसरमे सापेक्ष आर्द्रता 80 सँ 85% आ बेरुपहर 65 सँ 70% धरि रहबाक संभावना अछि। लोकनि के लेल समसामयिक सुझाव सेहो देल गेल अछि। धान एहि पूर्व अनुमानित अवधि मे मध्यम सँ भारी वर्षा के संभावना के देखैत किसान भाई लोकनि के सलाह देल जाइए जे वर्षा जल के लाभ उठबैत धान के रोपनी वाला काज जल्दी सँ जल्दी कऽ लेबाक चाही। रोपा सँ पहिने प्रति हेक्टेयर जे छै 25 सँ 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास आ 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट सामान्य रूप सँ व्यवहार करक चाही। मिलेट, मोट अन्न वा श्री अन्न नीक जल निकास वाला उचास वाला खेत मे अपने जे छै से मोटका अनाजक खेती कऽ सकै छी, जेना मरुआ भेल, रागी जकरा कहै छियै, एकर जे उन्नत प्रभेद अछि राजेंद्र मरुआ, RAU 8, RAU 3, कौनी, फॉक्सटेल मिलेट, राजेंद्र कौनी 1, उत्तर बिहार के लेल ई सब अनुशंसा कयल गेल अछि।

संगे किसान भाई लोकन सूर्यमुखी के वर्तमान समय में उचास वाला संकर सूर्यमुखी के लेल KVS 1 KVS 44 KVSH 53 और DRSH 1 किस्म के अपने एकरा लगा सके छी। खेतक तैयारी के समय में प्रति हेक्टेयर 100 क्विंटल गोबर के खाद, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 30 से 40 किलोग्राम सल्फर का व्यवहार सामान्य रूपे अपने के करक चाहिए।

0: जे छै से थिरम्बा कैप्टनसँ उपचारित करक चाही। एहि संग आब आजुक खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समय सम्पन्न हेबा पर किसान भाई लोकनिसँ चलबाक आज्ञा लेल जाय। नमस्कार विजय भाई।
1: नमस्कार अनिल भाई।

ये था खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: मेरा वोटर आई कार्ड घर पर रह गया, अब क्या मैं मतदान नहीं कर पाऊंगा?
1: क्यों नहीं, पहचान के और भी कई मान्य विकल्प है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, एमपीआर स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, एमएलसी की आधिकारिक पहचान पत्र, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा यूडीआईडी कार्ड दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।
0: मतलब वोट जरूर दे सकता हूँ?
2: बिल्कुल, पहचान पत्र की वजह से आपका वोट नहीं छूटना चाहिए।
3: 182 बांकीपुर विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 में मतदान तिथि है 30 जुलाई 2026। मतदान के दिन मान्य पहचान दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
4: कोई मतदाता ना छूटे।
5: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
6: जी नमस्कार, मैं सम्राट चौधरी बोल रहा हूँ। राज्य में अग्नि कांडों से होने वाली जान माल की क्षति अत्यंत दुखद और अपूर्णीय है। यदि हम सभी सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियों का पालन करें तो इन घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। बिहार अग्निशमन सेवा जनहित में निरंतर जन जागरूकता अभियान के माध्यम से आप सभी के अग्नि सुरक्षा एवं निवारण के प्रति जागरूक कर रही है। यह सेवा राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा किया जा रहा सुझाव का पालन करें। आपकी सजगता और सहयोग से हम राज्य में अग्निकांडों को रोक सकते हैं और जान माल की क्षति को न्यूनतम कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित बिहार का निर्माण करें। जय बिहार।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
8: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
7: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार हेली टूरिज्म सेवा आम लोगों के लिए आज से शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जॉय राइड का शुभारंभ किया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, पंचायत चुनाव टाला नहीं गया, नए परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे चुनाव। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर बढ़ा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए प्रत्याशी के लिए किया जनसंपर्क। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, गया, जमुई और नवादा जिले में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 के तहत पटना जॉय राइड का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में पर्यटक अब हेली टूरिज्म का आनंद ले सकेंगे, इसकी शुरुआत हो गई है। योजना के तहत मात्र 2100 रुपए में हेलीकॉप्टर से 10 मिनट तक पटना शहर का हवाई भ्रमण कराया जा रहा है। पटना जॉय राइड के दौरान उन्हें राजधानी का मनमोहक बर्ड्स आई व्यू देखने का अवसर मिलेगा। यह सुविधा फिलहाल प्रत्येक शनिवार और रविवार को उपलब्ध होगी। वहीं बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना के तहत पटना से राजगीर, पटना से वाल्मीकि नगर और पटना से कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर तक भी हेलीकॉप्टर राइड उपलब्ध कराई जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: इधर मुख्यमंत्री श्री चौधरी बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय के सफल विद्यार्थियों को उपाधियां और टॉपर छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि नए परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि विभाग ने चुनाव टालने का कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि परिसीमन का कार्य पूरा होते ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
2: पंचायत चुनाव को टालने के लिए कोई अभी निर्णय नहीं हुआ है। अभी बस निर्णय हुआ है कि परिसीमन कराया जाएगा पंचायतों का 2011 की जनगणना के आधार पर, और उसके उपरांत फिर चुनाव कराए जाएंगे। परिसीमन का काम पहले करना है, अगर समय पर परिसीमन का काम हो पाता है तो पूरी कोशिश की जाएगी कि चुनाव भी सही समय पर कराए जाए।
0: श्री प्रकाश ने कहा कि परिसीमन का कार्य चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभागीय तैयारी पूरी कर ली गई है।
2: जो भी काम परिसीमन से संबंधित हो, तमाम काम निर्वाचन आयोग के निर्देशन में किया जाता है। अभी जो बिहार पंचायत राज अधिनियम में जो मानक तय किए गए हैं, 5000 की जनसंख्या पे पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ जिला परिषद के लिए 50000 की जनसंख्या पे किया जाता है, ग्राम पंचायत के लिए 7000 और ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 500 की जनसंख्या पे क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि पिछले परिसीमन का काम 1991 की जनगणना के हिसाब से हुआ था, तो इन 20 वर्षों में जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है, इस कारण से परिसीमन करने की जरूरत है। तो परिसीमन का काम किया जाएगा, परिसीमन के उपरांत निर्वाचन आयोग के द्वारा आरक्षण के रोस्टर के ऊपर काम किया जाएगा और फाइनली फिर उसके बाद चुनाव कराए जाएंगे।
0: योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने सभी विधायकों और विधान पार्षदों को पत्र लिखकर विकास कार्यों में तेजी लाने की अपील की है। श्री कुशवाहा ने विधानमंडल सदस्यों से क्षेत्रीय विकास योजनाओं के तहत अपने अपने जिले की योजनाओं

0: लेकर अनुशंसा प्रस्ताव भेजने को कहा है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और सभी जिलों को राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि सदस्यों से अनुशंसा शीघ्र प्राप्त होने पर योजनाओं का क्रियान्वयन भी जल्द हो सकेगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर जोर पकड़ रहा है। एनडीए, राजद और जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी, नेता और समर्थक लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। एनडीए की ओर से आज कदमकुआं स्थित साहित्य सम्मेलन परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सांसद रविशंकर प्रसाद, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत एनडीए घटक दलों के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आज पटना पहुंचने के बाद जनसंपर्क में जुट गए। श्री नवीन पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उपचुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष श्री नवीन मंडल अध्यक्षों और पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में पार्टी के कई नेता प्रचार कार्य में जुटे हुए हैं। इधर जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर चुनाव चिन्ह स्कूल बस्ता मिलने के बाद ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में लग गए हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने दावा किया है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बदले जाने के बावजूद जनता का समर्थन एनडीए के साथ है। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के काम पर भरोसा है।
1: देखिए, प्रत्याशी बदल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता जो हमारे नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है ना, उनके गारंटी पर विश्वास करती है। और ये बांकीपुर विधानसभा हमारे जो केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय नितिन नवीन जी, उनका ये जमीन है और ये इनका जमीन उतना मजबूत है कि इन पर किसी के भी दाल गलने वाली नहीं है। अगर कोई दावा करते हैं तो ये हवा हवा ही दावा करते हैं।
0: लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन संगठन विस्तार के लिए पार्टी उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव मैदान में उतरेगी। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि गठबंधन के स्वरूप और अन्य विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है।
2: देखिए, मेरा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं एनडीए का एक मजबूत हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पर है। हम लोगों ने देश भर के चुनाव एक साथ लड़े, जहां से मैंने बिहार में 5 सीटों पे मैंने चुनाव लड़ा। बिहार विधानसभा का चुनाव हम लोगों ने साथ मिलकर लड़ा। मैं जब पार्टी के विस्तार की सोच रखता हूं, मेरे नेता, मेरे पिता झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार को हमेशा एक सांस में उन्होंने देखने का काम किया। ऐसे में दर्शाता है कि उनके लिए उत्तर प्रदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण था। और आज की तारीख में जब मेरी पार्टी के विस्तार की सोच रखती है, अलग अलग राज्यों में जब हम लोग अपने फुटप्रिंट्स को गहराने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोग के लिए हो जाता है।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। भारत का आर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज दोपहर 12:05 पर प्रक्षेपित

0: किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए स्काई रूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का भी निमंत्रण दिया है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैज्ञानिक और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की वैज्ञानिक क्षमता, नवाचार और निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती शक्ति का सशक्त प्रमाण है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने आज लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्य के खिलाड़ियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले कई खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने कहा कि अनुशासन और समर्पण कामयाबी की कुंजी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 26 जुलाई को आयोजित होने वाली एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी। मधेपुरा जिले के गमहरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जीवजपुर में जागीर टोला उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से लगभग 35 बच्चे बीमार पड़ गए। इन सभी को सिंहेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पश्चिम चंपारण जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 3 नए ग्रिड की स्थापना की जाएगी। स्थानीय सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक संजय जायसवाल ने बताया कि ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को सहमति मिली है।
3: आज यहाँ विद्युत उपभोक्ताओं को लेकर के बैठक थी। हम लोगों ने 3 नए ग्रिड के लिए भी अनुशंसा किया है और इसके साथ जिले के सभी किसानों से हम लोग अनुरोध करेंगे कि कृपया कर किसान अपने बिजली के लिए आवेदन करें। कुल मिला के पूरे चंपारण में केवल 700 लोगों का आवेदन पेंडिंग है, जो कि बताता है कि कहीं न कहीं हम बिजली लेने में पीछे हो रहे हैं। कृपया कर सभी लोग कंप्यूटर पर अप्लाई करें जिससे कि उनको मिल सके।
0: राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, गया, जमुई और नवादा जिले में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में पटना, अरवल, बक्सर, भोजपुर, किशनगंज, नालंदा, रोहतास और शेखपुरा जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है।
4: राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के सभी जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बेगूसराय, गया, जमुई और नवादा जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अरवल, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, नालंदा, पटना, रोहतास एवं शेखपुरा जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: बेगूसराय जिले के विभिन्न स्कूलों में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान अब तक 1,00,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। मुंगेर जिले में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर टीबी की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार इस दौरान संभावित लक्षणों वाले 30 लोगों की पहचान

0: मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के बिशनपुर मकिया स्थित खिरोई नदी में डूबने से एक 14 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। कैमूर जिले में कुदरा और भभुआ थाने की पुलिस ने एक चार पहिया वाहन और पिकअप से 1283 लीटर शराब जब्त की है। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य निषेध विभाग की टीम ने मुंगेर जिले के नवागढ़ी एनएच के पास जांच के दौरान एक पिकअप वाहन से 24 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार हेली टूरिज्म सेवा आम लोगों के लिए आज से शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जॉयराइड का शुभारंभ किया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, पंचायत चुनाव टाला नहीं गया, नए परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे चुनाव। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर बढ़ा, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए प्रत्याशी के लिए किया जनसंपर्क। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, गया, जमुई और नवादा जिले में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अरे वाह, यहाँ ठंडा पानी है
2: और देखिए साफ सुथरा शौचालय भी।
3: मेरे लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। वाह,
4: दिशा सूचक इतने स्पष्ट हैं कि केंद्र ढूंढना बिल्कुल आसान हो गया। हेल्प डेस्क पर हर जानकारी तुरंत मिल रही है।
5: वाह, मोबाइल रखने की व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, शाम तक रोशनी की सुविधा, सब कुछ है।
6: और ये पोल वॉलंटियर्स कितना सहयोग कर रहे हैं।
4: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में आपका मतदान अनुभव होगा सुगम, सहज और सुरक्षित। मतदान केंद्रों पर भूतल पर मतदान केंद्र, ठंडी पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्पष्ट संकेतक, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, प्रकाश व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पोल वॉलंटियर्स और मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 30 जुलाई 2026 को घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
7: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।

0: Akashwadi at 90.
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन।
2: पटना जिले के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शास्त्री नगर स्थित राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय से बिहार स्कूल लाइव क्लासेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए राज्य स्तर के अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा सीधे ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलाई जा रही है। पहले चरण में जिले के 150 सरकारी स्कूलों को इस योजना से जोड़ा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पटना के 10 मॉडल स्कूलों में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क जेईई और नीट कोचिंग की भी शुरुआत। मुख्यमंत्री ने इसे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में नए युग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
3: और अगले कुछ दिनों में आपको दिखेगा कई चीजों का काम सरकार कर रही है, चाहे वो डिग्री कॉलेज खोलने की व्यवस्था हो, 500-3400 ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोलने का काम किया जा रहा है, बिहार लाइव हमारे कोचिंग सेंटर जो हमारे सरकारी स्कूल में चलेंगे उसकी व्यवस्था की जा रही है।
2: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुटे हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस सीट पर आगामी 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के साथ चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। नामांकन वापसी की प्रक्रिया

0: नियुक्ति होने के बाद चुनाव मैदान में कुल 25 प्रत्याशी शेष रह गए। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच माना जा रहा है। वहीं चुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर का विस्तार हो गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के साथ मलाही पकड़ी से भूतनाथ तक मेट्रो यात्रा भी की। उद्घाटन के साथ ही न्यू ISBT, जीरो माइल, भूतनाथ रोड और मलाही पकड़ी स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। इससे प्रायोरिटी कॉरिडोर की परिचालन लंबाई बढ़कर 6.5 किलोमीटर हो गई है। एम्स पटना में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं में संवाद विषय पर राष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी मुख्य अतिथि तथा डॉक्टर अभिजीत सेठ विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। देश भर से 700 से अधिक चिकित्सा शिक्षक, विशेषज्ञ चिकित्सक, स्नातकोत्तर प्रशिक्षु और स्वास्थ्य कर्मी इसमें शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावी संवाद मरीज और चिकित्सक के बीच विश्वास की सबसे मजबूत कड़ी है तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। जिले में खरीफ सीजन के तहत धान की रोपाई का कार्य तेजी से जारी है। हाल के दिनों में सक्रिय मानसून और कुछ दिन के हुई वर्षा के बाद फुलवारी शरीफ, नौबतपुर, संपतचक, पालीगंज और बेटा सहित कई क्षेत्रों में किसानों ने रोपाई का काम तेज कर दिया है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में आयोजित खरीफ सीजन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को किसानों के लिए हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजधानी पटना में गिग वर्कर्स और डिलीवरी कर्मियों की सुविधा के लिए गांधी मैदान और आयकर गोलंबर के पास अत्याधुनिक वातानुकूलित लाउंज तैयार किए गए हैं। इन लाउंज में आरामदायक बैठने की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जिंग सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही पटना देश का तीसरा शहर बन गया है जहां गिग वर्कर्स के लिए इस तरह की विशेष सुविधा विकसित की गई है। आपातकाल की वर्षगांठ पर जिले भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आपातकाल के दौरान पटना से शुरू हुए लोकतांत्रिक आंदोलन को याद किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुए इस संघर्ष में उनका व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है।
1: 5 जून 1974 को मैं भी उसमें शामिल था, मैट्रिक का विद्यार्थी हुआ करता था, मुझे याद है, जब जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और हम सब लोग उस समय की गफूर सरकार को बर्खास्त करने के लिए गवर्नर RD भंडारे को एक ज्ञापन देने के लिए गए थे। वो 5 जून 1974 और वो 18 मार्च 1974, ये दोनों दिन नींव के पत्थर साबित हुए इस आंदोलन को चलाने के लिए, ये हमको समझ।
0: बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित स्पोर्ट्स समर कैंप 2026 का समापन हो गया। शिविर में 775 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, योग, शतरंज, स्केटिंग, खो खो, तीरंदाजी और ताइक्वांडो सहित विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही बच्चों को संतुलित आहार, पोषण और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में भी जानकारी दी गई।
2: अभी आप सुन रहे थे पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष रंजन।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म धूल का फूल का यह गीत। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर एवं लता मंगेशकर।
4: तेरे प्यार का

अभी आप सुन रहे थे फिल्म धूल का फूल का यह गीत महेंद्र कपूर एवं लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
1: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आ गया आप सबों के बीच में। जी हाँ, उड़ान करियर से संबंधित बातें होती हैं, खास करके बीसी और बीबीए के लिए। लगातार लगातार हर साल इसी समय आते हैं और पूरे बिहार के युवाओं को प्रेरित करते हैं एक ऐसा कोर्स चुनने के लिए, हाँ, जिससे उनकी जिंदगी में आगे बढ़ पाना बहुत आसान हो जाए। और ये कोर्स है बीसीए और बीबीए का, और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज। आर्किड बिजनेस कॉलेज 27 वर्षों से जो बीसी और बीबीए के क्षेत्र में लगा हुआ है उनकी तरफ से ये पटना के आर्य कुमार रोड, राजेंद्र नगर पटना में है और सगुना मोड़ पटना में है। पूरे बिहार और बाहर के बच्चे आते हैं, अपना करियर बनाते हैं बीसीए और बीबीए हाँ में और आगे बढ़ जाते हैं। एक नंबर हम आपको बताते हैं, अगर आप बीसीए और बीबीए या करियर की प्लानिंग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कोर्स चुने, तो राजेश की बात मानिए। हम नंबर देते हैं, नंबर नोट कीजिए, नंबर है 7520800800, 7520800800, यानी 7520800800। इस नंबर को डायल कीजिए और बातचीत कीजिए आर्किड बिजनेस कॉलेज से। पिछले एपिसोड में हमने आर्किड विजिट किया था, आर्किड गए थे वहाँ के युवा साथियों से जो बीसी और बीबीए कर रहे हैं, उनसे बातचीत की थी और हमने वो सारी चीजें आपके पास भेजा था इस उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से। जी हाँ, बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया आई है उस प्रोग्राम के बाद। बहुतों ने कहा है, युवाओं ने, कि एक भरोसा बना और हमें अच्छा लगा और हम विचार कर रहे हैं। बहरहाल ये मामला आपके करियर का है, आपकी जिंदगी का है। हम कह सकते हैं, कहते रहेंगे, डिसीजन लेना आपका काम है। और हम बार बार एक ही चीज राजेश कहता है, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इसे भूलने का नहीं। और बीसी और बीबीए की पढ़ाई बहुत ही उम्दा है। आज हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं और डायरेक्टर भी हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज से। एक सीधा सपाट सा सवाल हमने उनसे पूछा जब वो कार्यक्रम में आए। पहले स्वागत है आपका आशीष आदर्श जी हमारे इस कार्यक्रम में। और एक सीधा सा सवाल आपसे है कि आर्किड बिजनेस कॉलेज को कोई भी बिहार का युवा या कहीं का युवा बीसी और बीबीए के लिए क्यों चुने?
2: जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि हमारा संस्थान पहला संस्थान है बिहार का जिसने वोकेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज बिहार में शुरू किया। बीसीए और बीबीए जैसे कोर्सेज को कोई नहीं जानता था उसके पहले। बात 1998 की है, उस समय में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लाया और ला करके पहला संस्थान बना ये बिहार का जिसने बीसीए और बीबीए जैसे संस्थान पाठ्यक्रम शुरू किए। पहले हमारा संस्थान मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत एफिलिएटेड था, संबद्ध था। बाद में 2018 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एक नई बनी और मगध विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज थे जो पटना के, वो सब पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो

0: और हम भी उसी में हैं। और आपको मैं बता दूं, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बिहार का यह एकमात्र ऐसा संस्थान है जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से बीसीए बीबीए पाठ्यक्रमों के लिए स्थायी मान्यता प्राप्त है। आपने कई बार देखा होगा, कई कॉलेजेस हैं पटना के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जहां आए दिन हल्ला हंगामा होता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इन सब बातों को लेकर के एक आर्केड बिजनेस कॉलेज की एक अलग पहचान है, एक अलग विश्वसनीयता है और बिल्कुल अलग तरीके से ये काम करता है। और यही कारण है कि आज हमारे यहाँ 10,000 से अधिक स्टूडेंट सफल।
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहाँ से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है।
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520-800-800। याद रखें 7520-800-800।
4: आपने जो बताया आशीष जी, पूरे बिहार के बच्चों ने सुना कि स्थायी मान्यता प्राप्त एकमात्र संस्थान है आपका बीसीए और बीबीए के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, और लगभग 27 वर्षों से आप लगातार इसमें लगे हुए हैं। लेकिन एक ये भी बात है, किसी भी संस्थान के निदेशक से, लोगों से बात कीजिए तो अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल स्थिति कैसे पता चलेगी आर्केड बिजनेस कॉलेज के बारे में, ये हमें आप बताइए एकदम बेबाकी से।
0: देखिए एक बात बताता हूँ, आप कोई भी संस्थान का विज्ञापन उठा के देखिए, हर संस्थान अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। आपको यह देखना है कि उस संस्थान के जो पहले के जो छात्र हैं उनका क्या मंतव्य है। अगर आपको कोई वैसा स्टूडेंट मिल जाए जो आर्केड बिजनेस कॉलेज से पढ़ा हो, आप जरा उससे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार का स्टूडेंट है, क्या उसको पढ़ाई की कैसी उसको चीजें मिली, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये देखना है कि जिस ध्येय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बीसीए किया या बीबीए किया, उसके बाद आपको जॉब मिलता है कि नहीं मिलता, परसेंटेज कितना है। और हम ये बात आश्वस्त करते हैं हर स्टूडेंट को कि आपके लिए कम से कम 10 कंपनी का हम इन कैंपस इंटरव्यू लेकर के आएंगे, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही। बस आपको अपनी क्लासेस में अपनी जो अटेंडेंस रखनी है और अपने कोर्स के ऊपर में पूरा फोकस करना है, बाकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं।
4: बाकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं, ये कहना है आर्केड बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर आशीष आदर्श जी का। आशीष जी लगातार 27 वर्षों से युवाओं के साथ काम कर रहे हैं और बीसीए और बीबीए को लेकर के, और रोजगार की बात आपने सुन ली ही, कम से कम 10 कंपनियां आती हैं इंटरव्यू के लिए हर एक लड़के के पास। बहरहाल पढ़ाई तो लेकिन आपको करनी होगी, उन्होंने ये भी कहा कि आप क्लास कीजिए, अटेंडेंस पूरा कीजिए। ये भी स्वीकार किया कि हर इंस्टीट्यूशन अपने आप को बढ़ा चढ़ा के करता है, लेकिन हकीकत सीनियर स्टूडेंट से या पढ़ने वाले लड़कों से बातचीत कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए इसी बात को मानते हुए हमसे जब बातचीत चल रही थी, मैं गया था आर्केड बिजनेस कॉलेज आर्य कुमार रोड में और हमने युवाओं से बात की, जिसमें से कुछ युवाओं की बातें हमने पिछले एपिसोड में सुनवाई थी और आज भी हमको सुनवाएंगे। फिलहाल जिन्होंने देर से हाँ इस कार्यक्रम को ट्यून किया है, उनको बता दें कि कार्यक्रम चल रहा है उड़ान। उड़ान कार्यक्रम इसी समय हर वर्ष आर्केड बिजनेस कॉलेज की मदद से राजेश लेकर आता है युवा साथियों को दिशा निर्देशित करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कि भैया आपके लिए ये करियर भी हो सकता है, अगर आप कर लेते हैं तो आपको फायदा ही फायदा होगा। और वो कोर्स है बीसीए और बीबीए का, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते कि आप यही ले लीजिए। बस ज्यादा जानकारी के लिए डायल कर सकते हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज का ये नंबर 7520-800-800 7520-800-800। बीसी और बीबी एक भरोसेमंद कोर्स है। आइए आर्केड बिजनेस कॉलेज में जो एक विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बताइए।
5: नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति रंजन है, मैं बीसीए सेकंड ईयर की छात्रा हूं और मैं आर्केड बिजनेस कॉलेज से बीसीए कर रही हूं। मैं पटना बिहार की हूं, कंकड़बाग मेरा होम टाउन है।
4: वाह कीर्ति, बहुत खूब, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतने से ही हमें पता चल गया, और ऐसा कहा जाता है ये आर्केड के बच्चों में ही आता हो। बहरहाल हमारे सुनने वाले बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आप बीसीए का कोर्स कर रही हैं, आप बीसीए के बारे में पहले थोड़ा सा हमें बताइए।
5: बीसीए एक ऐसा कोर्स है जहां हमें कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में समझाया जाता है, बताया जाता है। इसके फर्स्ट ईयर के अनुभव से मुझे पता चला है कि हमें कंप्यूटर के हर बेसिक्स के बारे में भी बताया गया है और बहुत अच्छे से समझाया गया है यहाँ पे। इसमें आगे चल के हमें बहुत सारे अलग

0: अलग कोडिंग्स, और यहाँ तक कि अगर हमारे पास बहुत सारे अलग ऑप्शंस भी हैं, जैसे अभी बीच में हमारा पाइथन और HTML का एग्जाम्स भी हुआ था, जिसमें हमें सर्टिफिकेट भी मिला था हमारे स्कोर के अकॉर्डिंग।
1: आर्केड बिजनेस कॉलेज में क्या चीजें आपको अच्छी लगती
0: है? हाँ, आर्केड बिजनेस कॉलेज का मुझे सबसे अच्छा चीज ये लगा कि यहाँ के फैकल्टी ना सिर्फ पढ़ाते हैं, ना सिर्फ लेक्चर देते हैं, बल्कि हमें प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ उस चीज का फिजिकल मॉडल्स भी हमें दिखाते हैं, हमें उस चीज से भी गाइड करते हैं कि हमें कैसे क्या करना है और कैसे। यहाँ तक कि अभी बीच में मेरे लैपटॉप में मुझे इश्यूज आ रहे थे, तो यहाँ के फैकल्टीज ने मुझे सामने बैठा के वो चीज सिखाया कि अगर मेरे पीसी में कोई प्रॉब्लम है जो मैं खुद से टैकल कर सकती हूँ, तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ के फैकल्टीज, यहाँ की डायरेक्टर मैम, डायरेक्टर सर और HOD मैम भी हमारी काफी सपोर्टिव हैं।
1: यानी हम कहें कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एकदम कंफर्टेबल माहौल है, एकदम अपनापन है, और दोनों एक दूसरे से मिलजुल करके अपनी पढ़ाई पठन पाठन का कार्य आगे बढ़ाते हैं।
0: यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी फ्रेंडली है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में बिल्कुल भी डर का माहौल नहीं है। टीचर्स से हम फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर हमारे क्लासेस छूट जाते हैं तो टीचर्स हमें अलग से बैठा के वो हमारे छूटे हुए क्लासेस के बारे में समझाते हैं कि उस टाइम में क्या पढ़ाई हुआ, कैसे वो लेक्चर जो हमारा छूटा है उसे कैसे कवर करें, और कैसे हम अपने एग्जाम्स के टाइम में भी अपने आप को शांत रख के अपना एग्जाम अच्छा दे सकते। आर्केड बिजनेस कॉलेज में हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, इसलिए BCA, BBA ये सब करने के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है।
1: धन्यवाद, थैंक यू आपका। तो सुना आप लोगों ने, पूरा बिहार स्टूडेंट में अगर ये कॉन्फिडेंस दे पा रहा है कोई भी इंस्टीट्यूशन, जैसा कि आर्केड बिजनेस कॉलेज दे रहा है, तो सफलता झक मार के भी उस स्टूडेंट, उस युवा के पास आएगी ही आएगी। बहरहाल हम ये कहना चाहते हैं कि BCA और BBA की पढ़ाई बहुत ही उम्दा है। जब करियर चुनिए तो इसको आंख के सामने रखिए, और कहीं कोई समझ में ना आए तो 27 वर्षों से BBA और BBA के कोर्स को लेकर आगे बढ़ रहा है, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है। और ये कार्यक्रम उड़ान जिसकी तरफ से हम लेकर आ रहे हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज, उसका ये नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। 7520800 ये नंबर है, इस पर बातचीत कीजिए।
2: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
3: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
2: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
2: फिर तो आर्केड से ही BCA या BBA करना सेफ है। आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड, पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
1: मिलिए अगले स्टूडेंट से, अपना नाम बताइए और कहां के रहने वाले हैं, क्या कर रहे हैं?
4: मेरा नाम राज गुप्ता है। सो आई एम करेंटली अ सेकेंड ईयर BCA स्टूडेंट आर्केड बिजनेस कॉलेज। सो बेसिकली मैंने कॉलेज बेसिकली इसलिए ज्वाइन किया था, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम द आशीष आदर सर। मैंने उनकी वीडियो देखी थी जो स्टॉक्स में, एंड ही इज अ करियर काउंसलर सिंस फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। तो मुझे उनका जो विजन और पैशन था टूवर्ड्स द एजुकेशन, बच्चों को हर लोगों को एजुकेशन पहुंचाना सिटी और Tier 3, Tier 4 सिटीज में, वो मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड करा।
1: राज, आपने कॉलेज चुन लिया, आशीष आदर जी से इंस्पायर हुए, बहुत कुछ आपने R&D की, सर्च किया, उसके बाद आर्केड बिजनेस कॉलेज को आपने चुना। लेकिन बहुत सारे युवा साथी जो आपके हम उम्र हैं, घर पर बैठे हैं या आपसे कुछ छोटे होंगे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो BCA और BBA का कोर्स राजेश में, जो मैं हूँ, कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा है, आप अपनी तरफ से उनको क्या सजेशन देना चाहिएगा?
4: सो बेसिकली आई थिंक डिसीजन तो ले लेना चाहिए, बट अगर आपने ट्राई सोचा ही है कुछ करने का ही, सो इट्स द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन इट।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी
4: प्लेसमेंट के लिए, सी मेरा तो टेक में मेरे को जाना नहीं है, मेरे को तो नॉन टेक में ही जाना था, बट प्लेसमेंट जो अब तक हुआ है वो काफी बेटर है, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, तो आई थिंक कोई अगर डे वन से अगर लगा रहे सो वो डेफिनेटली अच्छा ही करेगा।
5: मेरा नाम कुमकुम गुप्ता है, मैं पटना बिहार की रहने वाली हूँ, मैं BCA वोकेशनल कोर्स कर रही हूँ। आर्केड बिजनेस कॉलेज का एक परमानेंटली अफिलिएटेड कॉलेज है, और यहाँ के जो टीचर्स फैकल्टीज होती काफ़ी कोऑपरेटिव है, और यहाँ काफ़ी स्किल्स टेक वगैरह ये सब के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस वगैरह ये सब किया जाता है, और पहले से यहाँ पे इंटरव्यू ये सब के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट यदि इफर्ट करेगा तो यहाँ प्लेसमेंट ऑप्शंस भी हैं, काफी कंपनीज भी आती हैं यहाँ, और बच्चा इफर्ट करेगा तो हाँ 100% उसका प्लेसमेंट हो जाएगा।
1: थैंक यू कुमकुम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुभकामना।

0: नाए आप सभी को। तो सुना आपने स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कहते हैं ना कि स्टूडेंट ही आईना होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का। और हमने पिछले एपिसोड में भी और इस एपिसोड में भी हमने जो बातचीत की थी स्टूडेंट से, आर्केड बिजनेस कॉलेज, बीसीए, बीबीए, एनवायरमेंट, प्लेसमेंट, सारी चीज़ों को लेकर वो बातें हमने आप तक रख दी। और आपसे हम यही कहते हैं कि जब भी करियर का चुनाव कीजिए, एक ऐसा करियर चुनिए जिसमें आपको कंफर्टेबली एक जॉब मिल जाए, खड़े होने की जगह मिल जाए। और बीसीए और बीबीए उसी में से एक है, जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम ला रहे हैं। आर्केड बिजनेस कॉलेज बहुत ही उम्दा कॉलेज है, 27 वर्षों से लगा है इसी क्षेत्र में आप युवाओं के लिए। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होना तो आप जरूर बात कर लें 7520800800 पर, 7520800800 ये नंबर है आर्केड बिजनेस कॉलेज का। अगले शनिवार को अगले एपिसोड में जब हम आएंगे तो और भी स्टूडेंट की बातें हमने रखी है, बातचीत जो किया था आप तक पहुंचाएंगे। तब तक करियर को संभल कर चुनने के लिए अपने लोगों से सजेशन लीजिए और हमें इस नंबर पर फोन भी कर सकते हैं 7520800800 पर। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए विज्ञान कार्यक्रम।

श्रोताओं नमस्कार। आज के विज्ञान कार्यक्रम के इस नए अंक के साथ उपस्थित हूँ मैं सुरभि। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आदित्य L1 मिशन, सूर्य के प्रकोप से बचने की तैयारी। साथ ही आप सबों को सुनवाएंगे श्री अभयनाथ झा की वार्ता। वार्ता का विषय होगा वायु और उसके उपयोग। श्रोताओं, आग उगलते सूरज को देखकर तो लगता है कि ताप युग की शुरुआत हो गई है। पिछले एक दशक से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए सूर्य में हो रहे ताप संबंधी बदलाव जिम्मेदार है। प्राकृतिक चेतावनियों से स्पष्ट है कि प्रकृति के साथ मानवता के पुराने मैत्रीपूर्ण रिश्तों में दरार आ गई है। आज प्रकृति और विश्व शांति दोनों ही खतरे में है। बढ़ता वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग और परमाणु परीक्षणों व युद्धों से उत्पन्न होने वाले विकिरण आज मानव अस्तित्व के लिए कहीं ज्यादा बड़े खतरे बन गए हैं। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी व्यापक और शक्तिशाली होती जा रही है। यह सिलसिला आने वाले दशकों में और भी तेजी से जारी रहेगा। सूचना और संचार क्रांति ने भी अपना वर्चस्व कायम कर लिया है, लेकिन यह भी ब्रह्मांडीय खतरों से मुक्त नहीं है। अंतरिक्ष से भी सूरज से आने वाले विकिरण इसे प्रभावित करते हैं। इसलिए अब इस दिशा में भी वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं कि कैसे सूर्य के विकिरणों से बचा जा सके। इन्हीं खतरों को देखते हुए भारत ने अंतरिक्ष में एक और बड़ा कदम उठाया है और अपना पहला सूर्य मिशन भेजा है। श्रोताओं, चांद के बाद भारत ने अपना मिशन लॉन्च कर दिया है। यह हमारे भारत का पहला सूर्य मिशन है। इसे आदित्य L1 मिशन नाम दिया गया है। सूर्य के पर्यायवाची तो अरुण, सूरज, भानु, रवि समेत दर्जनों हैं, लेकिन भारत के सोलर मिशन का नाम आदित्य ही क्यों रखा गया? श्रोताओं, यह भी एक दिलचस्प कहानी है। मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। इस बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट पड़ता है। इसे L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से भी जाना जाता है। L1, L2, L3 अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, लेकिन L4 और L5 अपनी उसी स्थिति में बने रहते हैं। सूर्य तक जाने के लिए पहले पड़ाव का नाम L1 है, जो कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस पूरे मिशन को आदित्य L1 का नाम दिया गया है। इसका प्रक्षेपण PSLV C-57 रॉकेट का उपयोग करके किया गया था। इसरो के इतिहास में यह पहली बार था जब PSLV के चौथे चरण को दो बार प्रक्षेपित किया गया, ताकि अंतरिक्ष यान को उसकी अंडाकार कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया जा सके।

एस्ट्रोसैट वर्ष 2015 के बाद आदित्य L1 भी इसरो का दूसरा खगोल विज्ञान वेधशाला श्रेणी मिशन है। इस मिशन की यात्रा भारत के पिछले मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान की तुलना में काफी छोटी है। आदित्य L1 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की रक्षा में मदद करना है। सूर्य की गतिविधि से उत्पन्न सौर तूफान और द्रव्य उत्सर्जन पृथ्वी के उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आदित्य L1 के सौर निगरानी उपकरण इन खतरों के बारे में हमें चेतावनी देने में मदद कर सकते हैं, जिससे हम उपग्रहों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर सकते हैं या उन्हें बंद कर सकते हैं। आदित्य L1 मिशन हमारे सौर मंडल और पृथ्वी को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करेगा। यह हमें सूर्य के तूफानों और द्रव्य उत्सर्जन के बारे में बेहतर जानकारी देगा। तब हम इन खतरों से कैसे बच सकते हैं? यह मिशन हमें हमारे सौर मंडल और पृथ्वी को सुरक्षित रखने में भी मदद करेगा। आदित्य L1 मिशन में 7 वैज्ञानिक उपकरण हैं, जो सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। इन उपकरणों में शामिल है एक स्पेक्ट्रोग्राफ, जो सूर्य के प्रकाश को अलग अलग तरंग दैर्ध्य में तोड़ देगा और हमें सूर्य के वातावरण के बारे में अधिक जानकारी देगा। एक एक्सरे कैमरा, जो सूर्य से निकलने वाले एक्सरे को देखेगा। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस इमेजर, जो सूर्य से निकलने वाले कणों का पता लगाएगा। चौथा चुंबकीय क्षेत्र मापी, जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। पांचवा कण डिटेक्टर, जो सूर्य से निकलने वाले कणों का पता लगाएगा। छठा सौर क्रोनाग्राफ, जो सूर्य के क्रोना को देखेगा। सातवां सौर गतिशीलता इमेजर, जो सूर्य के वायुमंडल में ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन से प्राप्त परिणाम हमारे सौर मंडल को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करेंगे। वे हमें सूर्य के तूफानों और विस्फोटों को बेहतर ढंग से पूर्वानुमानित करने में सक्षम बनाएंगे और हमें इन खतरों से बचाने के लिए बेहतर तरीके विकसित करने में सक्षम करेंगे। मिशन के परिणाम कई वर्षों तक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए शोध का विषय होगा। इससे सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। श्रोताओं, सूर्य अपने असीम ताप की वजह से हमारे लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है, जहां उन क्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है जिसे धरती पर उत्पन्न करना संभव नहीं है। सूर्य हमारा सबसे नजदीकी तारा है। ये आग का गोला है, जो लाखों डिग्री सेल्सियस गर्म है और पृथ्वी के आकार से लाखों गुना बड़ा है। सूर्य की सतह पर हर वक्त हजारों लाखों विस्फोट होते रहते हैं। विस्फोट की वजह वहाँ मौजूद चार्ज प्लाज्मा, प्रचंड तापमान और मैग्नेटिक फील्ड है। इस विस्फोट की वजह से भयानक तूफान उठता है और अंतरिक्ष में काफी सारा चार्ज प्लाज्मा फैल जाता है। अगर भविष्य में कभी सूर्य का तापमान बढ़ जाए और इसका असर धरती पर पड़ने लगे तो फिर इस पर काबू पाना हमारे हाथ में नहीं होगा। लेकिन आदित्य L1 के अध्ययनों के जरिए पहले से सचेत हुआ जा सकता है, क्योंकि जब कोई उपकरण पहले से ही सूर्य के नजदीक काम करता रहेगा तो वह हमें खतरनाक रेडिएशन और तरंगों को लेकर चेतावनी भेजता रहेगा। सौर ज्वालाएं के माध्यम से आने वाले रेडिएशन और एक्सरे धरती की सबसे ऊपरी वायुमंडल आयनोस्फीयर पर ही रुक जाते हैं, लेकिन कई बार सौर ज्वालाएं का रेडिएशन इतना तेज होता है कि आयनोस्फीयर को भी चार्ज कर देते हैं, जिसके बाद शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम ठप पर जाता है। इसरो के मुताबिक सूर्य की रोशनी के साथ कई तरह की तरंगे और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, लेकिन पृथ्वी की बाहरी परत होने की वजह से कई तरंगे धरती तक नहीं आ पाती है। इस वजह से ही आदित्य L1 मिशन को लैग्रेंज 1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जहां पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए इसरो ने इस मिशन के लिए इस लैग्रेंज पॉइंट को चुना है। इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती आदित्य L1 को लैग्रेंज 1 पॉइंट तक भेजने की है, जिसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है। धरती से चांद करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और वहां तक अपने चंद्रयान को उतारने में भारत को अब जाकर कामयाबी मिली है। भारत ने जब 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने की कोशिश की थी, तब लैंडर से उसका संपर्क टूट गया था। ऐसे में लैग्रेंज 1 की 5 गुना दूरी पर आदित्य L1 के साथ संपर्क बनाए रखना भारतीय अंतरिक्ष संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, इस मिशन में लगने वाला समय भी एक बड़ी चुनौती के रूप में होगा। श्रोताओं,

आज हमारी पूरी दुनिया सूरज के आसपास घूम रही है। सूरज निकलता है तो दिन होता है, सूरज ढल जाता है तो शाम हो जाती है। लेकिन अगर किसी दिन सूरज निकले ही ना तो क्या होगा? अगर सूरज की मौत हो जाए तो क्या ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी? तारों के टूटने के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या कभी ये सुना है कि हमारे सौर मंडल के केंद्र में मौजूद तारा, जिसे सूर्य कहा जाता है, किसी दिन वो भी खत्म हो जाएगा? वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले

0: सौर मंडल के केंद्र में मौजूद तारा जिसे सूर्य कहा जाता है, किसी दिन वो भी खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 5 अरब सालों में सूरज की मौत हो जाएगी, लेकिन अब तक ये बात उनको भी पता नहीं था कि जब ये घटना होगी तो होगा क्या। इसलिए जब तक पृथ्वी पर जीवन है, सूर्य का रहस्य जानना बहुत जरूरी है। हर मिशन दूसरे मिशन से कुछ सीखता है और नया मिशन 100% अलग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि समय के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफी विकास हो जाता है। अगर किसी देश ने 10 साल पहले कोई मिशन भेजा है तो उस समय की तकनीक और आज की तकनीक में काफी का अंतर है। प्रौद्योगिकी के लाभ की नज़र से हर मिशन पिछले मिशन से बेहतर मिशन होता है। सौर विकिरण और सौर वायु उपग्रहों और अंतरिक्ष यान के कामकाज को प्रभावित करते हैं। इन सौर अंतक्रियाओं को समझने से अंतरिक्ष यान को बेहतर ढंग से डिजाइन और संचालन करने में सहायता मिलती है। सूर्य एक प्राकृतिक संलयन रिएक्टर है। इसके मूल और परमाणु प्रतिक्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि पृथ्वी पर स्वच्छ और टिकाऊ संलयन ऊर्जा की हमारी खोज में सहायक हो सकती है। इस मिशन से भारत को काफी अनुभव भी मिलेगा। आदित्य L1 सूर्य को समझने के लिए काफी नहीं है, ये महज एक शुरुआत है। अभी सूर्य को समझने के लिए कई और मिशन भेजने होंगे। वह दिन दूर नहीं जिस दिन भारत सूर्य के बारे में विश्व को नई दिशा दिखाएगा। इसरो डीप स्पेस मिशन के लिए काम ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल करता है और आगे की यात्रा के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का सहारा लेता है। इससे चंद्रमा और मंगल की गंतव्यों तक पहुंचने में समय अधिक लगता है, लेकिन इससे भारी रॉकेट के लिए जो खर्च लगता है वह काफी कम हो जाता है। इसी वजह से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपेक्षाकृत कम बजट में हाल ही में कुछ बड़ी सफलताओं को हासिल किया जो अन्य देश नहीं कर पाए हैं। वर्ष 2014 में मंगल की कक्षा में भारतीय अंतरिक्ष यान भेजने वाला भारत पहला एशियाई देश बना था, और अगले साल पृथ्वी की कक्षा में 3 दिन के एक मानव मिशन को भेजने की योजना बना रहा है। यह भारतीय अंतरिक्ष मिशन की एक और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। श्रोताओं, सभी जीवों को वायु की जरूरत होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से आपने अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खरखराती हैं, या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं, पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज करने लगते हैं। हवा के चलने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है, कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है और छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ा कर ले जाती है। 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है, वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। इसी संदर्भ में सुनते हैं ये वार्ता जिसका विषय है वायु और उसके उपयोग। वार्ताकार है श्री अभय नाथ झा।
1: वायु या हवा, मनुष्य इसके बिना 1 मिनट तक जीवित नहीं रह सकता है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है यहाँ पर वायु की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। हवा से मनुष्य के अलावा पेड़ पौधे पशु पक्षी जीवन जीते हैं, इसलिए मनुष्य भोजन के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकता है, किंतु हवा के बिना 1 दिन भी जीवित नहीं रह सकता। वायु एक भौतिक वस्तु है जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। हवा एक पारदर्शक स्वाधीन रंगहीन एवं गंधहीन गैसों का मिश्रण है। हवा में भार होता है। धरातल के प्रति इकाई क्षेत्र में हवा जो असर डालती है उसे वायु दाब कहा जाता है। वायु के भार की विभिन्नता के कारण वायु एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चलने लगती है। वायु अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ चलती है। मानव को जिंदा रहने के लिए शुद्ध हवा की जरूरत पड़ती है जिससे मानव शरीर सुचारू ढंग से काम करता है। अशुद्ध हवा हमारे शरीर पर दुष्ट प्रभाव डालती है। ज्यादा समय तक अशुद्ध हवा में सांस लेने से दम घुटने लगता है, कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। कोयला लकड़ी आदि जलने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें हवा का संतुलन बिगड़ जाता है और यह अशुद्ध हो जाती है।

प्रकार हवा को शुद्ध करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वायु मनुष्य के जीवन का आधार है, तो मानव का परम कर्तव्य बनता है कि वह हवा को प्रदूषित होने से बचाने का भरपूर प्रयास करे, ताकि वायुमंडल स्वच्छ रहे और हमें शुद्ध हवा मिलती रहे। समस्त प्राकृतिक तत्वों में वायु बहुत सूक्ष्म है। पृथ्वी, जल, अग्नि की अपेक्षा वायु की सूक्ष्मता अधिक है, इसलिए उनका गुण और प्रभाव भी अधिक है। अन्न जल के बिना कुछ समय मनुष्य जीवित रह सकता है, पर वायु के बिना एक क्षण भर काम नहीं चल सकता है। शरीर में अन्य तत्वों के विकार उतने खतरनाक नहीं होते जितने वायु के विकार होते हैं। जिस स्थान पर वायु विकृत होगी वही अंग तीव्र वेदना का अनुभव करेगा और सारी शक्ति खो बैठेगा। वायु प्राण है, इसलिए प्राण वायु पर जीवन निर्भरता मानी जाती है। लोग वायु सेवन के लिए जरूरी काम छोड़कर समय निकालते हैं। जहाँ की वायु खराब हो जाती है वहाँ नाना प्रकार की बीमारियाँ महामारियाँ फैलती हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ की वायु अच्छी हो। प्राणायाम करने वाले जानते हैं कि विधि पूर्वक वायु साधना करने से उन्हें कितना लाभ होता है। निसंदेह वायु का स्वास्थ्य से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है और वायु के प्रयोग द्वारा अपनी बिगड़ी हुई तंदुरुस्ती को ठीक कर सकते हैं। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियां को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। पवन ऊर्जा का आशय वायु में गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिक अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना है। पवन ऊर्जा का उपयोग पहली बार स्कॉटलैंड में 1887 में किया गया था, जिससे विद्युत बनाया गया। इसके बाद इसका उपयोग वहां की एक कंपनी 1888 से 1900 तक किया। तब तक इसे डायनमो के द्वारा विद्युत बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन यह केवल ऊर्जा बनाने के ही कार्य में आता था। इसके उपरांत इसे और भी बड़ा बनाया गया और इसे बैटरी आवेशित कर बाद में उपयोग के लिए बनाया गया था, जिससे रात में इसका उपयोग किया जा सके। और विद्युत की अन्य विधि से भी इसमें लागत कम लगने के कारण ही इसका उपयोग किया जाने लगा। सूर्य प्रति सेकंड 50 लाख टन पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस ऊर्जा का थोड़ा अंश पृथ्वी पर पहुंचता है, वह यहाँ कई रूपों में प्राप्त होता है। सौर विकिरण सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह या भूपृष्ठ द्वारा अवशोषित किया जाता है, तत्पश्चात विभिन्न रूपों में आसपास की वायुमंडल में स्थानांतरित हो जाता है। चूंकि पृथ्वी की सतह एक समान या समतल नहीं है, अतः अवशोषित ऊर्जा की मात्रा भी स्थान व समय के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापक्रम, घनत्व, दबाव संबंधी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, जो फिर ऐसे बलों को उत्पन्न करती है जो वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होने के लिए विवश कर देती है। विस्तारित वायु जो गर्म होने से हल्की हो जाती है ऊपर की ओर उठती है, तथा ऊपर की ठंडी वायु नीचे आकर उसका स्थान लेती है। इसके फलस्वरूप वायुमंडल में अर्ध अस्थायी पैटर्न उत्पन्न हो जाते हैं। वायु का ऊर्जा उत्पादन करने हेतु उपयोग करने में न तो किसी प्रकार की प्रदूषण की समस्या है, न अम्लीय वर्षा की समस्या या खानों के विषाक्त प्रदूषक जैसी कोई समस्या है, और न ही इसके कारण हेक्टरों तक फैली भूमि क्षतिग्रस्त होती है। वास्तव में मनुष्य की पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ण आपूर्ति पवन ऊर्जा रूपांतरण तंत्रों द्वारा हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए उपलब्ध कुछ तकनीकी विकल्पों में पवन ऊर्जा भी एक है। चूंकि इसमें गैसीय प्रदूषकों के उत्सर्जन जैसी कोई समस्या नहीं है जो ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके पर्यावरणीय समस्या को बढ़ाए, अतः विद्युत उत्पादन हेतु पवन ऊर्जा ही सबसे अधिक स्वीकृत स्रोतों में से एक है। चूंकि इसमें गैसीय प्रदूषकों की उत्सर्जन जैसी कोई समस्या नहीं है जो ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाए, अतः विद्युत उत्पादन हेतु पवन ऊर्जा ही सबसे अधिक स्वीकृत स्रोतों में से एक है। यह नवीकरणीय योग ऊर्जा की विश्वव्यापी तथा अम्लीय वर्षा से संघर्ष कर सकती है। पवन सुगमता से उपलब्ध है तथा कभी न समाप्त होने वाली है, जबकि जीवाश्म ईंधन सीमित है। हालांकि और अधिक जीवाश्म ईंधनों की खोज की दिशा में सतत गवेषक कार्य चल रहा है, परंतु विश्व के औद्योगिक तथा विकासशील देशों की निरंतर बढ़ती ईंधनों की आवश्यकता निश्चित रूप से भविष्य में इन उच्च श्रेणी के ईंधन स्रोतों को समाप्त कर देगी। इस समस्या से निपट

के लिए पवन ऊर्जा ही एकमात्र संभावित विकल्प है। जो नवीकृत होता रहता है, सूर्य की विकृत ऊर्जा से पवन ऊर्जा सतत रूप से नवीकृत होती रहती है। इसका दोहन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। पवन निःशुल्क तथा प्रचुरता में उपलब्ध है, सरलता से प्राप्त समाप्त होने वाली नहीं है तथा इसकी आपूर्ति भी निर्बाध है। पवन अथवा वायु पर किसी भी देश का वाणिज्यिक एकाधिकार नहीं है। जैसा कि जीवाश्म ईंधनों तथा तेल गैस या नाभिक ईंधनों जैसे यूरेनियम आदि के साथ हैं, चूंकि ऊर्जा की मांग सतत रूप से बढ़ती जाएगी, इसलिए कच्चे तेल के बढ़ते हुए मूल्यों के साथ निश्चित रूप से पवन ऊर्जा ही एकमात्र आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करती है। पवन ऊर्जा संयंत्रों का परिचालन सुरक्षित है। आधुनिक व उन्नत माइक्रोप्रोसेसर्स के प्रयोग से समस्त संयंत्रों में परिचालन के लिए श्रमिकों की आवश्यकता भी नहीं रह गई है। निर्माण तथा रखरखाव की दृष्टि से भी यह पूर्णतः सुरक्षित है। यह बात तापीय ऊर्जा संयंत्रों अथवा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों पर लागू नहीं होती है। आधुनिक पवन संयंत्रों में प्रयुक्त प्रभावी सुरक्षा यांत्रिकी से यहाँ तक संभव हो गया कि इन्हें सार्वजनिक स्थलों पर थोड़ी सी क्षति अथवा बिना किसी क्षति के स्थापित किया जा सकता है। पवन चलित प्रणाली के लिए तुलनात्मक रूप से कम स्थान की आवश्यकता होती है। इसे हर उस स्थान पर जहाँ की वायु की स्थिति अनुकूल हो लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसे पहाड़ी शिखर, समतल सपाट भू प्रदेश वनों तथा मरुस्थलों तक में लगाया जा सकता है। संयंत्र तटीय क्षेत्रों तथा उछले पानी में भी लगाया जा सकता है। पवन संयंत्र कृषि भूमि में भी लगाया जाता है तो मीनार आधार स्थान तक खेती की जा सकती है। पवन चक्की श्रृंखलाओं में अनेक अपेक्षाकृत छोटी छोटी इकाइयाँ होती है। इन्हें सरलता व शीघ्रता से समूहों में बनाया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप इनकी योजना बनाने में लचीलापन आ जाता है। किसी भी पवन चक्की फार्म के पूरा होने के पहले निवेशित पूंजी शीघ्रता से वापस मिलने लगती है। मांग के बढ़ने के साथ साथ जब भी आवश्यकता अनुभव हो, नई इकाइयां जोड़ी जा सकती है। पवन चालित संयंत्र सरल व परिचालन में आसान होते हैं, अतः अन्य विकल्पों की तुलना में इनके रखरखाव की आवश्यकता कम होती है। चूंकि पवन बिना मूल्य उपलब्ध है, इसलिए इसमें ईंधन के मूल्यों में वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति का कोई जोखिम नहीं है। इस प्रकार पवन ऊर्जा धन तथा ईंधन दोनों ही रूपों में बचत करती है। अतः पवन ऊर्जा मूल प्रभावी है। आज विश्व के कई क्षेत्रों में जहां वायु के स्रोत केंद्रित हैं, वहां पवन ऊर्जा तेल चालित तथा नाभिकीय शक्ति से उत्पादित विद्युत को कड़ी चुनौती दे रही है, क्योंकि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की लागत जहां दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वहीं पवन ऊर्जा की लागत तीव्रता से गिर रही है। वायु चालित टर्बाइनों के दिनों दिन बढ़ती हुई विश्वसनीय से यह सिद्ध हो रहा है कि निकट भविष्य में अधिक से अधिक क्षेत्र ऊर्जा के अन्य रूपों की अपेक्षा पवन ऊर्जा को सबसे कम व्यय वाले आकर्षक विकल्प के रूप में अपनाएंगे। पवन चालित संयंत्र महंगे हैं और केवल वहीं लगाए जा सकते हैं जहां आवश्यक वायु उपलब्ध हो। उच्च पवन गति क्षेत्र पहुंच से बाहर हो सकते हैं अथवा उच्च वोल्ट क्षमता वाली पार्शियल लाइनों से दूर स्थित हो सकते हैं, जिससे पवन ऊर्जा के संचार में समस्या हो सकती है। साथ ही विद्युत की आवश्यकता समय के अनुसार घटती बढ़ती रहती है तथा विद्युत उत्पादन की मांग चक्र के अनुसार समायोजित करना होता है। पवन शक्ति की मात्रा या गति में अचानक परिवर्तन हो सकते हैं, अतः यह भी संभव है कि मांग या आवश्यकता के समय यह उपलब्ध ही न हो। अविश्वसनीय आपूर्ति के कारण पवन ऊर्जा की व्यावहारिक असुविधा ने इसके उपयोग को इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित कर दिया है जहां या तो विद्युत ऊर्जा की सतत आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है या आवश्यकता अनुरूप आपूर्ति हेतु एक अन्य अस्थायी ऊर्जा विकल्प उपलब्ध है। विद्युत ऊर्जा का भंडारण कठिन एवं महंगा भी है, इसलिए पवन ऊर्जा का उपयोग किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा के साथ साथ अथवा गैर विद्युत भंडारण के साथ किया जा सकता है। पवन ऊर्जा का उपयोग जल विद्युत ऊर्जा जनित्रों के साथ करना अधिक लाभप्रद है, क्योंकि जल का उपयोग ऊर्जा भंडारण के स्रोतों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है और भूमिगत संपीड़ित वायु भंडारण का उपयोग एक अन्य विकल्प है। पवन ऊर्जा वास्तव में मील का पत्थर साबित हो चुका है। आज दुनिया में ऊर्जा की मांग बढ़ने के कारण समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उस हालात में यदि पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाए तो यह सबसे सस्ता, प्रदूषणहीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। पवन हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है।

श्रोताओं, अभी आप अभयनाथ झा की वार्ता सुन रहे थे जिसका विषय था वायु और उसके उपयोग। इसी के साथ आज के विज्ञान कार्यक्रम से प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद के साथ मुझे यानी सुरभि को दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप विज्ञान कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: हे कता छी यौ?
3: की बात, की कहै छी?
2: हे ध्यान नै अछि, रेडियो खोलू ने जल्दी, गांव घर कार्यक्रम छूट जायत।
3: ठीके कहलौ, हमरा तऽ हे ध्याने नै छल, गांव घर कार्यक्रम में नीक नीक जानकारी के बात सब भाई बहिन लोकनि सब कहै छथिन। हे हे हे लिया, मोबाइल पर लगा दै छी, सुनैत रहू, अपन काज सेहो करैत रहू।
2: से तऽ हमरा बुझले नै छल जे आकाशवाणी दरभंगा आप मोबाइलो पर सुन सकै छी।
3: हाँ ये रेडियो सेट नहीं है तो आकाशवाणी के ऐप पर जाकर सुन सके छी। हे अकर ऐप नोट करी, न्यूज ऑन AIR, एकरा डाउनलोड करी आ कतौ बैस कर

0: अपन मोबाइल पर आकाशवाणी दरभंगा सुनैत रहू, अपन काज करैत रहू।
1: तो हमहू कहब जे सुनैत रही कार्यक्रम गांव घर।
0: अहे आकाशवाणी हरदम सुनैत रहू गांव घर कार्यक्रम निक निक जानकारी के लेल, बुझलौ ने। अहे अपना संगे संगे आनो के कहब।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोर्गोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
4: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजे, आईडी की तरफ से भेजे या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजे, इट मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन बाली में।
3: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
5: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। बल्कि 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
6: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत

0: स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद के निजी कंपनी स्काई रूट एयरो स्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
3: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
1: हुर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा एचडी कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही PV सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के

0: Article 370, Mammootty for Brahma Yugam and Kartik Aaryan for Chandu Championship Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalist Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton bearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। बहत्तरवीं कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए ममूती और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की जो 20 सरकार ने पार्लियामेंट नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे, उन्हें लोकसभा में अलहदा ग्रुप के तौर पर बैठने के लिए स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है। अब नए हुरमुज के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अहम बुनियादी ढांचे और फौजी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ओलंपिक खेलों में तमगे जीतने वाली मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भारत की परचम बरदार खिलाड़ी होंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला है। आज शाम नई दिल्ली में कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान करते हुए फीचर फिल्म जुमरे की ज्यूरी के चेयरमैन जयराज ने कहा कि ममूती और कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्मों ब्रह्मयुगम और चंदू चैंपियन के लिए बेहतरीन अदाकार के जुमरे में कौमी फिल्म अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि फिल्म 370 में उनकी अदाकारी के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म के ज्यूरी के चेयरमैन असीम कुमार सिन्हा ने कहा कि सुमेरा रॉय की हिदायतकारी में भंगार को बेहतरीन गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेहतरीन मुख्तसर फिल्म मराठी में हमसफर रही। उन्होंने कहा कि बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए आनंद एल राय को दिया जाएगा। बेहतरीन फिल्म क्रिटिक अवार्ड संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा में बेहतरीन तहरीर के लिए के प्रदीप कुमार शेट्टी को उनकी कन्नड़ किताब के लिए अवार्ड दिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सपोर्टिंग रोल के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को बेहतरीन मौसीकार का अवार्ड मिलेगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना कथा कादू को बेहतरीन बच्चों की फिल्म का अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। मजमूई तौर पर तफरीह फराहम करने के लिए कालकी 2898 एडी को बेहतरीन फीचर फिल्म करार दिया गया है। दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के उन 20 बागी अरकान पार्लियामेंट के लिए ऐवान में अलहदा से बैठने को मंजूरी दे दी है जो नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में शामिल हुए थे। जनाब बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 अरकान पार्लियामेंट के महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में जम किए जाने को भी मंजूरी दे दी है। 6 अरकान पार्लियामेंट के शामिल होने के बाद पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में शिवसेना के अरकान की तादाद 7 से बढ़कर 13 हो गई है। सरकार ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से कबल कल सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। ये इजलास पीर से शुरू हो रहा है। कल की मीटिंग के दौरान सरकार दोनों ऐवानों का कामकाज खुशउसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से तआवुन की अपील करेगी। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर तैयार करदा मदार में जाने वाला रॉकेट विक्रम 1 इंजन का आखिरी मरहला मुकम्मल करने के बाद और 450 किलोमीटर

0: कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है, बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: शिमाली रेलवे ने जम्मू डिवीजन में कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन बाजाब्ता तौर पर रखने का ऐलान किया है। इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया कि इस सिलसिले में जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि मस्कुरा स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जो पहले के कोड KTHU की जगह लेगा। दीगर कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल में सिलीगुड़ी में जुमा गाज के मकाम पर सरहदी हिफाजती फोर्स BSF कैंप का दौरा किया और BSF के अहलकारों के साथ गुफ्तगू की। जनाब अमित शाह ने पौधे भी लगाए और प्रहारी सम्मेलन में शिरकत की। सरहदी इलाकों को मुस्तहकम करने, पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन, नीज अमन कानून की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज

0: अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्म स्मृति शेष ने नमन फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
1: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, यह सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जानी माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार के भाग्यराज।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की कृतियों को चुनते रहे हैं। उनकी कृतियों पर बनी फिल्मों की बातें हम आगे करेंगे, पर पहले एक दिलचस्प बात। मुंशी प्रेमचंद स्वयं भी मुंबई सिनेमा जगत से जुड़े रहे थे। असल में हंस और जागरण पत्रिकाओं के संपादन की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ, उसके बाद उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने और कमाई करने का मन बनाया था। सन 1934 में आर्थिक तंगी के चलते वे बंबई आए और फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानू भाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी, जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थी राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर।

सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी ने प्रेमचंद के उपन्यास गबन पर इसी नाम की फिल्म बनाई थी। कलाकार थे सुनील दत्त, साधना, मीनू मुमताज, लीला मिश्रा और कन्हैया लाल वगैरह। संगीत शंकर जयकिशन का था।

0: के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे। उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थी। सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते। मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सई जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह।
1: प्यारे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है। लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ कीजिएगा। तो सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नीला घोड़ा, मीठी रुख।
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म। इस फिल्म में ओम पुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था।
3: बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइड सगन विचार करें।
4: क्या खड़ा हो गया यार? भाग यहाँ से। मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो।
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है। बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा। इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था। भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कलजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थी। मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन। ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में। और अब स्मृति शेष। स्मृति शेष। स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं। सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली। बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक, दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन। अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक। इसकी निर्देशक थी विजया मेहता। एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में। तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, एके हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से। विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं, पिस्टन जी, राव साहब और हमीदा बाई की कोठी वगैरह। उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद निहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती रानी की उनकी भूमिका सबको याद है। उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी

0: उपन्यास पर आधारित थी। इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था। इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1988 में विजया मेहता ने पेस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
1: तूने जरू की सूरत देखी है, उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष के अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने। बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, अभी तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है। पन खुदा सब देखता है, याद रख दे।
0: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर
2: से दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, यह सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का 4 जून को निधन हो गया। पहलाज निहलानी की कहानी संघर्ष की दास्तान है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज निहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज निहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज निहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982।

बड़ी कामयाब रही और पहलाज निहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज निहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की। 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखी, पहलाज निहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994। पहलाज निहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी

0: से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहाँ भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनिले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथिरंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी।
1: Come on.

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भाग्यराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

0: कामयाब फिल्में हैं चिन्ना वीडू और इधू नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म उरू कैथीन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।
1: गोरी का साजन, साजन की गोरी, रोजी शुरू हो गई लव स्टोरी, रम पम पम हो जा रही है मेरी हीरोइन, हीरो का दिल करके चोरी।
0: अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भाग्यराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूब

गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथने मुदुचू पर आधारित थी। 27 जून 2026 को भारतीय सिनेमा का ये चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। विनम्र

के भाग्यराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रही। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्लीनगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नसामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा, आउटडोर में ना अच्छी लाइटिंग होती है ना आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत

के बेताज बादशाह के भागीराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और

0: सन 1980 में भारतीय राजा ने अपनी फिल्म सिंगापुर रोजाकल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौट।
0: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म

1984 में आई कानून क्या करेगा। सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।

राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियो

0: विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र आईसीसीआर के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, बीएचयू कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ट जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड यूएसए से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय देवव्रत मिश्रा। बोर्न इनटू डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिक घराना ऑफ वाराणसी, देवव्रत मिश्रा रिसीव्ड इनिशियल म्यूजिक ट्रेनिंग फ्रॉम हिज मदर प्रमिला मिश्रा and underwent formal training in the sitar under the guidance of his father, Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashvani, Devvrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras Gharana from his grandfather, the great Thumri exponent Pandit Mahadev Prasad Mishra. An influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devvrat Mishra is also an empaneled artist of ICCR. He has delivered successful sitar performances on numerous prestigious platforms, both in India and abroad. Notable among these are the तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह एंड द इंटरनेशनल ध्रुपद मेला। ही हैज कैप्टिवेटेड ऑडियंसेस विद हिज सितार रिसाइटल्स इन मेनी कंट्रीज सच एज यूएसए, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी। देवव्रत मिश्रा हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर, बीएचयू कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ट जैज क्रिटिक अवार्ड एंड द वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड यूएसए। इन टुनाइट्स प्रोग्राम अकंपनीइंग हिम ऑन तबला इज प्रशांत मिश्रा एन ए ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। देवव्रत मिश्रा इज बिगनिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ राग जोग विलंबित एंड ध्रुतगत सेट टू तीन ताल।

आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार by Devbrat Mishra. In tonight's national program of music, accompanying him on tabla was Prashant Mishra. Earlier recorded at Akashwani Varanasi, this program came to you from Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन दिल्ली में।
0: ब्रह्मयुगम

0: के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातादर रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
1: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी बसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अडप्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।